सुप्रभात। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आज दिन है गुरुवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 मई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 20 सेकंड हो चुके हैं। हम उपस्थित हैं अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए, सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सानिका,
1: आज
0: इसमें आपको जानकारी मिलेगी पशुओं की देखरेख। जानकारी दे रही हैं अनीता तिर्की।
2: पशुओं की बीमारियों का तुरंत इलाज करना चाहिए, क्योंकि आज टीकाकरण के लिए वैक्सीन, एंटीबायोटिक, कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इन दवाओं के प्रयोग से पशु तो स्वस्थ हो जाते हैं, किंतु बीमारी का नाश नहीं हो पाता है। प्रतिकूल वातावरण और शारीरिक प्रतिरोधी क्षमता कम होने पर यह पुनः अपना असर दिखाने लगता है। ऐसी परिस्थिति में पशुओं को बीमार होने से पहले वैक्सीन टीकाकरण की आवश्यकता होती है। इसके लिए टीका देना चाहिए। इसके बाद यदि पशु बीमार होता है तो दवा का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई अक्सर अपने पशुओं में प्रायः खुरहा और चपका, थनैल, चेचक, लंगड़ा बुखार, गलघोटू आदि बीमारियों से परेशान रहते हैं। इसके कारण पशु उत्पादन में काफी नुकसान हो जाता है, तो कुछ बातों पर ध्यान देनी है जिससे कि रोग ना हो। किसानों को रोग का रोकथाम के लिए पशु और उसके आवास को साफ सुथरा रखना है। आवास की बनावट और जमीन का ढलान इस तरह से होना चाहिए कि पशुओं के मूत्र बह जाएं और गोबर तुरंत हटा दें। गंदगी ना रखें। गंदगी से बचने के लिए रोज पानी से सफाई करें, अन्यथा मच्छर पैदा होंगे और विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी, साथ ही उसके शिकार पशु भी होंगे। थनैल एक बहुत ही भयानक बीमारी है। गाय के थन में यह रोग हो जाता है। गाय और भैंस को दूध दुहने से पहले थन है उसमें लाल पोटास के घोल से आप अच्छी तरह धो लें। इसके बाद आप अच्छी तरह से

0: थन जब सूख जाए उसके बाद दूध दुहें। इससे इस रोग की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। दूध दुहने के बाद पुनः पोटास से थन को साफ कर लें और साफ तौलिए से पोंछ दें। गलघोटू भी एक खतरनाक बीमारी है। जैसे ही इस बीमारी का पता चलता है अपने नजदीक के पशु चिकित्सक से जरूर दिखवाएं। इसमें पशुओं में तेज बुखार, कंठ के पास सूजन होने लगता है। सूजन होने से सांस की नली पर दबाव पड़ने लगता है जिसके कारण पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, पतला दस्त होता है और इलाज में यदि देर होती है तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। लंगड़ा बीमारी, इसमें भी तेज बुखार, शरीर के मांसल भाग जैसे गर्दन या जांग पर सूजन हो जाता है। यह दर्द करता जिसके कारण पशु चल नहीं पाता है और यदि आप सूजन के स्थान पर दबाते हैं तो कड़ कड़ की आवाज होती है। इसका इलाज नहीं करने से 6 से 7 दिनों के अंदर पशु मर जाता है। मुंह और नाक से झाग आने लगता है, झाग के साथ खून के धब्बे भी दिखने लगते हैं, दस्त के रास्ते से खून बहने लगता है, खुरहा चपका यह भी देखा जाता है अक्सर, और यह दुधारू गाय और भैंस दोनों में होता है। इसके कारण पशु जो है दूध देना कम कर देती है। इसमें पशुओं के खुर फटे होते हैं, बुखार आता है, जीभ और खुर में फफोले पड़ जाते हैं, पशु के मुंह से लार गिरने लग जाता है। इसे निजात पाने के लिए वैक्सीन करना अति आवश्यक हो जाता है। पशुओं में बीमारी से पहले टीकाकरण करना चाहिए ताकि बीमारी कम हो, और बीमारी का इलाज करना एकदम जरूरी है। रोगों के निदान की रणनीति पहले बनानी चाहिए, विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य और रख रखाव को ध्यान देना है।
1: पशुओं की देखरेख, इस विषय पर जानकारी दे रही थी अनीता तिर्की। इसी के साथ खेती किसानी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन, संकलन एवं वाचन है दिनेश कुमार लाल का।

0: इन दिनों माता के साथ पिता को भी वृद्धाश्रम में भेज दिए जाने की घटनाएं खूब देखी सुनी जा रही हैं। प्रायः ये भी देखा जाता है कि घर में बूढ़े अशक्त और बीमार माता पिता को बच्चे किसी न किसी बात पर झिड़क देते हैं, उनको अपमानित करते हैं। इस तरह के आचरण से माता पिता की उपेक्षा करने की बातें प्रायः सामने आती ही रहती हैं। ऐसे मामलों पर गौर किया जाए तो धर्म ग्रंथों के अनुसार ये पूर्णतया अनुचित है, क्योंकि माता पिता को प्रथम देवता माना गया है। ऐसी स्थिति में देवी देवताओं के दर्शन पूजन और चढ़ावा से मनोवांछित भौतिक कामनाएं किसी भी सूरत में पूरी नहीं होंगी। माँ की महत्ता के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण में प्रसंग में आता है, नन्हे कृष्ण द्वारा चोरी से माखन खाने की शिकायत पर माँ यशोदा स्नेह से ही सही डांटती नहीं बल्कि एक डंडा लेकर उन्हें मारने की धमकी भी देती हैं। कृष्ण आकाश की ओर देखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें बचाने आए। जब भी कृष्ण आकाश की ओर देखते थे तब आकाश में बहुसंख्य देवता उनकी बाल लीला देखने के लिए प्रकट हो जाते थे, लेकिन माँ द्वारा स्नेहपूर्ण प्रताड़ना के वक्त कोई देवता नहीं प्रकट हुआ। कृष्ण को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंत में कृष्ण के मन में विचार आया, संकट की घड़ी हो, कोई कष्ट दे रहा हो या मारपीट रहा हो, तब सच्चे मन से इष्ट देव को याद करने पर ईश्वरीय मदद तो मिल सकती है, लेकिन जब माँ ही दंड दे रही हो तो ब्रह्मांड में बचाने वाला कोई नहीं प्रकट हो सकता। धर्म ग्रंथों में ये कथन उद्धृत है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। माँ को जब कष्ट दिया जाता है एवं उपेक्षा की जाती है तब उसके अंतर्मन को पीड़ा पहुँचती है। उसी अंतर्मन में स्थित देवी देवताओं को भी खिन्नता होती है। ऐसी संतानों की उन्नति और प्रगति के रास्ते अवरुद्ध होने लगते हैं।
1: देवतुल्य माता पिता, इस विषय पे प्रेरणादायक बातें भी आप सुन रहे थे दिनेश कुमार लाल से। इसी के साथ चिंतन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम आराधना का। आराधना में हमेशा की तरह सबसे पहले सुनेंगे हम देशभक्ति गीत फिल्म जागृति से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, आदिनाथ मंगेशकर और साथियों ने। गीत के बोल हैं प्रदीप के और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

आराधना कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुछ भक्ति गीत। कहते हैं सुबह सुबह ईश्वर को याद करने से मन में एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार होता है।

ईश्वर हमें जीवन में सही राह, धैर्य और सकारात्मकता देते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि वो हर पल हमारे साथ हैं। उनको याद करके ही मन में शांति, नई ऊर्जा और खुशियां भर जाती हैं।

कहते हैं मुश्किल समय में भगवान पर विश्वास व्यक्ति को टूटने से बचाता है और साहस हिम्मत देता है। जब चारों तरफ अंधेरा हो तब यह आस्था ही हमें उम्मीद की किरण दिखाती है और हमें यकीन होता है कि प्रभु पर विश्वास कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए जरूर निकालेगा।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना। मैया यशोदा का दुलारा, मैया यशोदा का दुलारा, वो गोकुल का ग्वाला नटखट नंदलाल, जिसने सारे जग को अपना दीवाना बना डाला। कभी चुराए माखन तो कभी तोड़े गोपियों के मटके, भोली सूरत वाले कन्हैया के आगे सारे जहां के सुख पीखे पड़े। हमारे नटखट खान का ना जैसा प्यारा कोई और नहीं।

भगवद्गीता का यह अटल सत्य है कि कर्म ही धर्म है। भगवान कहते हैं कि तुम अपना कर्तव्य पूरे समर्पण के साथ करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। जब भी आप मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो भगवान की कृपा और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। जब जीवन में परिस्थितियां कठिन हो जाएं, तब यह विश्वास रखें कि ईश्वर हमें कोई परीक्षा दे रहे हैं और वे हमें मुश्किल से निकालने का रास्ता भी ज़रूर दिखाएंगे। उनका समय हमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। ईश्वर का संदेश हर जगह है। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को ना तो भोजन संग्रह करना पड़ता है, ना ही वे चिंता करते हैं, फिर भी प्रकृति उनका पेट भरती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अत्यधिक चिंता करने के बजाय आज में जीना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और हर अच्छे काम की शुरुआत ईश्वर के नाम के साथ करनी चाहिए।

0: वीर, सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का ही पाठ पड़ेगा, जिसके गुरु हैं परम सत्य श्री हरि। प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर भी श्री हरि में विश्वास ना करें, श्री हरि से प्रेम ना करें, ये जीव का दुर्भाग्य ही है। भगवान तभी बसते हैं जब हृदय निर्मल होता है। हृदय हरि के भजन कीर्तन से निर्मल होता है।
1: हम हरि भजन करेंगे,
2: हरि कीर्तन करेंगे।

ईश्वर हमेशा हमें जीवन में आशा, धैर्य और उद्देश्य प्रदान करते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने मात्र से मन को शांति मिलती है, कठिन परिस्थितियों में साहस बढ़ता है और जीवन एक सही दिशा की ओर अग्रसर होता है। असीम प्रेम और करुणा का प्रतीक ईश्वर को माना जाता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि कोई सर्वोच्च शक्ति है जो हमेशा हमें सही राह दिखाती है और हमारी रक्षा करती है। इन्हीं बातों के साथ आज का आराधना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

बेटी की विदाई का दृश्य जितने आनंद और संतोष का अवसर होता है, उतना ही करुण और मार्मिक भी। विवाह के हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के मांगलिक समापन के बाद विदाई की घड़ी आ ही पहुंचती है। श्री राम भाइयों सहित वधुओं की विदाई के लिए राजा जनक के महल में पधारे हैं। उन्हें देखने के लिए नगर के अगणित नर नारी दौड़ पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं न्योछावर हुई जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गईं माताएं, पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगीं। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो।

आकाशवाणी का एक ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, आइए आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें कि आज हमारे केंद्र से कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 7:05 का वक्त होता है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का, जिसमें आज आपको जानकारी मिलेगी बच्चों में टीकाकरण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भुवन कुमार सिंह और उनसे बातें करेंगे संजीव कुमार लाल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम 7:15 पर सुबह सुरेले। खुला आकाश ये कार्यक्रम का वक्त होता है 7:45 पर। इसमें आज आप वार्ता सुनेंगे आदिवासी संस्कृति और वाणी की। वार्ताकार होंगे नीलम कुमार। 9:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम रसरंजन लेकर आते हैं और 8:45 का वक्त होता है लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग का। आज इसमें आप सुनेंगे खोटा भाषा में लोकगीत। कलाकार होंगे रीता कुमारी और साथी। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे पंडित मनोज कुमार केडिया से सरोद पर राग बिलास खानी तोड़ी। आलाप और जोड़ के बाद दो गतें प्रस्तुत होंगी, मध्य लय की गत झप ताल में और द्रुत लय की गत तीन ताल में निबद्ध होगी। तबले पर साथ देंगे श्रीजीत चैटर्जी। साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान जगत का वक्त होगा 10:00, जिसमें आज चर्चा होगी रासायनिक पदार्थों से तैयार फलों को खाने से बचे। भेंटवार्ता आप सुनेंगे तंबाकू सेवन से होने वाले खतरे एवं बचाव के उपाय। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर अभिजीत सिंह। भेंटकर्ता होंगे बसंत कुमार। जीवन परिचय में आज आपको जानकारी मिलेगी हेनरी कैवेंडिश के बारे में। खोज और आविष्कार में आप जान पाएंगे सोलर पैनल के बारे में। वाचन एवं सहयोग है बसंत कुमार का, प्रस्तुति प्रभु शरण की। जोहार राज्य का वक्त होता है 10:30 पर। आपकी पसंद के फिल्मी गीत आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद में 11:30 पर। महिलाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गृहलक्ष्मी

के 12 बजे प्रसारित किया जाता है, जिसमें आज चर्चा होगी ऊर्जा बचाएं भविष्य सजाएं। भेंटवार्ता आप सुनेंगे महिला पर्यटकों के लिए कैसे सुरक्षित हो पर्यटन, जानकारी मिलेगी महिला ई हार्ट योजना के बारे में, कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी नूतन प्रसाद के। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का वक्त होता है 12:30 पर। उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम मनोरंजनी प्रसारित किया जाता है 1:20 पर। हमारी आज की कलाकार हैं श्रीमती शिप्रा बोस। सुगम संगीत 1:45 पर आप सुनेंगे। एक बार फिर विज्ञान जगत आप सुनेंगे 4:02 पर। सांझ सरगम का वक्त होगा 4:35 पर। 5:02 पर युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम आप सुनते हैं युववाणी। आज चर्चा होगी गर्मी के मौसम में खान पान का रखे ध्यान, गर्मी से राहत देते देसी पेय पदार्थ, आम पन्ना सत्तू शरबत आदि। इतिहास में आज का दिन आपको जानकारी मिलेगी, करंट अफेयर्स पर भी जानकारी होगी। आज की कंपेयर होंगी निकिता और अंकिता, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे गौरव कुमार पांडे। श्रमिक लोक का प्रसारण होता है 5:30 पर। इसमें चर्चा होगी खुशियों का साझा सफर, समाज में एकता और सहानुभूति जगाती बकरीद, आकाशवाणी 9 दशक के अनगिनत यादें, संस्मरणों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। वीर सावरकर का संदेश, समाज के हर वर्ग का सम्मान और समानता जयंती, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे प्रशांत गौरव। श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। बाकी की जानकारी भी समय समय पर हम आपको देते रहेंगे और थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम् 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् एकपञ्चाशत्तमे प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबन्धन सम्बद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां सप्त महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुम् ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौर योजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्मानमिदं प्राप्तुं देशस्य 15वं राज्यं तथा उत्तर पूर्व क्षेत्रस्य 3वं राज्यं अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षिबलस्य असाधारण सेवायाः सुदृढ़ अनुशासनस्य राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्मानं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा सीबीएसई इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तन्त्रज्ञान संस्थायै कोइम्प्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबन्ध आवंटनस्य विषये आरोपाः

0: निराकृतः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटलीय सन्देशे सीबीएसई इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः, भ्रमात्मकः, तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबन्ध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,2000 बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः आरएफपी इति गतवर्षस्य अगस्तमासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति ईष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासम् आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृतास्ति। राज्यसर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षिप्रमुखाणां कृते सञ्चेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतन परम्परायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां, आईपीएल क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44,200 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितमासीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96,100 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सीएसआर पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वेयर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का, जिसमें आज आपको जानकारी मिलेगी बच्चों में टीकाकरण के बारे में, और जानकारी देंगे विशेषज्ञ डॉक्टर भुवन कुमार सिंह, उनसे बातें करेंगे संजीव कुमार लाल।
4: मित्रों जोहार, नमस्कार। मित्रों, छोटे छोटे बच्चे हमारे राष्ट्र की तकदीर हैं। यही छोटे छोटे बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो एक राष्ट्र को नई ऊंचाई तक ले जाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, तब से लेकर बड़े होने तक समय समय पर टीकाकरण शुरू किया जाता है, बच्चों में टीका लगाया जाता है। तो सभी बच्चों में टीकाकरण सही समय पर लग जाए, ताकि बच्चा रोग मुक्त रहे और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो। बच्चा स्वस्थ रहेगा और वो सही तरीके से पलवित और पुष्पित होगा और बड़ा होगा और देश के विकास में अग्रणी योगदान देगा। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि बच्चों में टीकाकरण कब कब लगाया जाता है, कितने दिनों पर लगाया जाता है और कौन कौन से टीका लगाया जाता है। भारत सरकार की ओर से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा देशव्यापी प्रोग्राम है ये, इसके तहत बच्चों को टीकाकरण लगाया जाता है। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भुवन कुमार सिंह। डॉक्टर साहब स्वागत है।
5: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब। बच्चों में टीकाकरण कितना ज़रूरी है?
5: टीकाकरण आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आज जिन बीमारियों से लाखों बच्चों की जान बच रही है, उनमें टीकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक समय था जब पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया और काली खांसी जैसी बीमारियां बच्चों की जान ले लेती थी या उन्हें जीवन भर के लिए विकलांग बना देती थी, लेकिन आज टीकाकरण की वजह से इन बीमारियों पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है।
4: बहुत पहले जब बच्चा जन्म लेता था तो बहुत सारी बीमारियां उसे घेर लेती थी और बच्चे की जान भी चली जाती थी। तो जब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, तब से कौन कौन सा टीका लगाया जाता है?
5: जन्म के समय बच्चों में ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी का टीका दिया जाता है। 1.5 माह पर बच्चों में ओपीवी, पेंटावैक, रोटावायरस, न्यूमोकोकल वैक्सीन और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन का टीका दिया जाता है।

0: यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत 2.5 महीने पे ओपीवी का टीका, पेंटावैक और रोटा वायरस का टीका दिया जाता है। 3.5 महीने पे बच्चों में ओरल पोलियो वैक्सीन, पेंटावैलेंट, रोटा वायरस, न्यूमोकोकल वैक्सीन और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन का भी टीका दिया जाता है। 9 महीने पे बच्चों में एमआर यानी मम्स और रूबेला, जैपनीज एनकेफेलाइटिस, विटामिन ए और पीसीवी बूस्टर का टीका दिया जाता है। 16 से 24 माह यानी कि 1.5 साल से 2 साल के बीच में बच्चों में डीपीटी का टीका, विटामिन ए, एमआर यानी मीजल्स रूबेला, जैपनीज एनकेफेलाइटिस का टीका जो कि दूसरा उसका डोज होता है और ओपीवी बूस्टर दिया जाता है। इसके बाद 5 से 6 साल के बच्चों में डीपीटी का बूस्टर डोज दिया जाता है, 10 वर्ष पे टेटनस और डिफ्थीरिया और 16 वर्ष पे भी टीडी यानी टेटनस और डिफ्थीरिया का डोज दिया जाता है।
1: ये सारा जो टीका लगता है बच्चों को, ये निःशुल्क लगाया जाता है सरकार की ओर से?
0: जी हाँ, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम में से एक है। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर बच्चों के आवश्यक टीके निःशुल्क उपलब्ध हैं। भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसके अलावा एक IAP शेड्यूल जिसको बोलते हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक शेड्यूल का भी टीकाकरण का प्रोग्राम अलग से उपलब्ध है, जिनमें कुछ अलग जो वैक्सीन्स सरकारी संस्थान पर उपलब्ध नहीं है वहाँ पर दी जाती हैं। उनमें से 5 मुख्य वैक्सीन हैं जो कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उपलब्ध नहीं है और जो कि IAP शेड्यूल में उपलब्ध हैं, जिनके नाम हैं इन्फ्लुएंजा की का वैक्सीन, टाइफॉइड, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, वेरिसेला यानी कि चिकन पॉक्स का वैक्सीन और हेपेटाइटिस ए। तो ये 5 वैक्सीन जो है ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उपलब्ध नहीं है लेकिन इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक शेड्यूल में उपलब्ध हैं।
1: तो ये सारी टीका निःशुल्क सरकार की ओर से लगाई जाती है और कुछ कुछ टीका ऐसे हैं जो आप बाहर से भी लगा सकते हैं जैसा आप बता रहे हैं। बच्चे में टीका लगाने के उपरांत कुछ कुछ रिएक्शंस भी दिखते हैं, तो ऐसे भी माता पिता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या क्या टीका लगाने के उपरांत रिएक्शन होने की संभावना रहती है और माता पिता किस प्रकार ध्यान दें?
0: टीका लगाने के बाद कभी कभी बच्चों में हल्का बुखार, सूजन या चिड़चिड़ापन हो सकता है। यह सामान्य बात है और इस बात का संकेत है कि शरीर में सुरक्षा विकसित हो रही है। ये लक्षण सामान्यतः 1 से 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ होते हैं, जबकि टीकों से मिलने वाला लाभ जीवन भर का सुरक्षा देता है।
1: डॉक्टर साहब, कई बार हमारी माताएं सही समय पर टीका नहीं लगा पाती हैं, दिन भूल जाती हैं कि कब लगाना है, तो जब ध्यान आ जाए तब टीका लगा लिया जाए? भूल जाते हैं किसी कारणवश कि आगामी टीका हमको इस समय पर लगाना था, तो जैसे ही हमें ध्यान आ जाता है कि हमने टीका अपने बच्चों को नहीं लगाया है, तो जल्द से जल्द अपने बच्चों को इम्यूनाइज करवा लें, टीका लगवा लें।
0: मैं सभी माता पिता से विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि टीके समय पर ज़रूर लगवाएं। कई बार लोग सोचते हैं कि कुछ दिन की देरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टीके में देरी होने पर बच्चा उस अवधि में असुरक्षित रह सकता है। इसलिए टीकाकरण कार्ड संभाल कर रखें और डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी द्वारा बताए गए समय पर टीका अवश्य लगवाएं।
1: जी, मतलब आपके जो दैनिक कार्य है उसको छोड़कर अपने बच्चों को समय पर टीका जरूर लगवाएं। टीका लगाने में किसी तरह की कोताही ना करें, टाल मटोल ना करें। एक चार्ट आपको स्वास्थ्य केंद्र पर दिया जाता है कि आगामी टीका कब कब लगाना है, उस दिन उसी समय आप बच्चों को टीका लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
0: जी
1: जी, कई माताएं और पिता भूल जाते हैं, सोचते हैं कि टीका लगाने से क्या होगा, उनको क्या कहेंगे कि टीका लगाना कितना ज़रूरी है?
0: टीकाकरण केवल एक बच्चे की सुरक्षा नहीं करता बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा बनाकर रखता है। जब अधिकतर लोग टीका लगवाते हैं तो बीमारी फैलने की संभावना कम हो जाती है। इसे नवजात शिशु, कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग भी सुरक्षित रहते हैं। इसे सामूहिक प्रतिरक्षा यानी हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। कोविड महामारी में भी हमने यह सीखा कि बीमारी से बचाव इलाज से बेहतर होता है और वैक्सीन ने लाखों लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अच्छे पोषण टीकाकरण का साथ बहुत ज़रूरी है। यदि बच्चे को समय पर टीका मिले, साथ ही सही पोषण, स्तनपान, स्वच्छता और नियमित स्वास्थ्य जांच हो, तो उसका विकास बेहतर होता है।
1: डॉक्टर साहब क्या कहेंगे हमारे माताओं और बहनों को कि अपने बच्चों का

0: समुचित इलाज कराएं, सही समय पर टीका उनका लग जाना चाहिए ताकि बच्चा आपका स्वस्थ हो।
1: अंत में मैं सभी माता पिता से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को का कोई भी टीका ना छोड़ें। टीकाकरण आपके बच्चे के स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा है। स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे, इसलिए टीका अवश्य लगवाएं, समय पर लगवाएं और कोई भी टीका ना छोड़ें। बूस्टर डोज हो या उस टीके का सेकेंड या थर्ड डोज हो तो वो भी ज़रूर से लगवाएं। और जो कार्ड आपको दिया जाता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो प्रोग्राम के तहत जो भी कार्ड आपको मिलता है उसको संभाल कर रखें, और स्वास्थ्य कर्मी द्वारा जो दिया गया डेट होता है जिस डेट पे आपको टीका लगवाना चाहिए उस डेट पे आप ज़रूर से अस्पताल चले जाएं।
0: जी जी, और हर सेंटर पर चाहे वो गांव हो, देहात हो, शहर हो, जो चिकित्सा केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ ये सुविधाएँ निःशुल्क दी जाती हैं डॉक्टर साहब?
1: जी, हर लेवल पे देखा जाए, आंगनवाड़ी के लेवल पे या सरकारी अस्पताल के लेवल पे टीका का सरकार द्वारा खासकर ध्यान रखा जाता है। टीके को सही टेम्परेचर पे रखने का प्रोटोकॉल्स है उसको सही तरीके से फॉलो किया जाता है। इसको अक्सर हम लोग आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर जिसको ILR कहते हैं उसमें रखते हैं, और इसका सही टेम्परेचर मेंटेन हो उसका हम लोग 24 आवर्स जो सरकार द्वारा उसको मॉनिटर किया जाता है, तो टीके की क्षमता कम ना हो इसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो जो व्यवस्था है हर लेवल पे उपलब्ध है, और हर लेवल पे आपको प्रॉपर कार्ड डॉक्यूमेंटेशन या कब आना है ये सब कुछ प्रॉपरली बताया जाता है। तो कहीं पर भी पेशेंट को जो माता पिता हैं उनको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, उनको पता रहेगा, स्वास्थ्य कर्मी द्वारा बताया जाता है कि आपको इस डेट पे आना है, तो बस उनको उस डेट पे उपस्थित रहना है। उस दिन का टीका तो वो करेंगे ही और नेक्स्ट डेट भी वो लोग लिख कर देते हैं। तो काफ़ी कुछ देखा जाए तो सरकार की तरफ से क्लियर कट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है।
0: एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सरकार की ओर से चलाया जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसके तहत सभी बच्चे जन्म से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क टीका लगाया जाता है ताकि वो बच्चे स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, और जब यही बच्चा स्वस्थ रहेगा, आगे बढ़ेगा तो देश के विकास में अपनी महती योगदान देगा, क्योंकि कहते हैं आज के बच्चे कल के देश के भावी कर्णधार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भुवन कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ। बड़ी अच्छी आपने बातचीत की कि बच्चों में टीकाकरण कब कब लगाया जाता है, और टीका लगाने के उपरांत थोड़ी बहुत परेशानियां बच्चों में दिखलाई भी पड़ जाते हैं, जैसे बच्चों में थोड़ी सी बुखार भी आने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसमें माता पिता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये इंगित करता है या संकेत देता है कि टीका सही से कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: बच्चों में टीकाकरण, अभी आप इस विषय पर डॉक्टर भुवन कुमार सिंह से संजीव कुमार लाल की बातचीत सुन रहे थे। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुबह सुरीली का। सुबह सुरीली कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप सभी को सुनीता का प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और साथ ही आप सभी श्रोताओं को धार्मिक सौहार्द, त्याग और खुशी के त्यौहार का प्रतीक ईद उल अजहा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश में यह त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो चलिए हम और आप साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं ईद उल अजहा।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
7: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म

संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म लव इन टोक्यो से। इस गीत को गाया लता मंगेशकर ने, गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

हसरत जयपुरी की शब्द रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, मोहम्मद रफी की खूबसूरत सी आवाज़, फिल्म का नाम एन इवनिंग इन पेरिश।

जानिशार अख्तर की शब्द रचना, ओपी नैयर का संगीत। इस गीत को गाया है आशा भोसले, किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है बाप रे बाप।

नया दौर इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वरों में। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम खुला आकाश का, जिसमें आज आप सुनेंगे वार्ता आदिवासी संस्कृति और वाणी की। वार्ताकार होंगी नीलम कुमारी।
1: पूरी दुनिया में करीब 5,000 अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं और इनकी आबादी लगभग 37 करोड़ है। भारत में 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हमारे संविधान में अधिसूचित हैं। इनकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 10 करोड़ है। यह आबादी देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। झारखंड की बात करें तो यहाँ 32 जनजातियां हैं, जिनकी कुल आबादी लगभग 86.5 लाख यानी लगभग 28% है। 32 जनजातियों में 8 आदिम जनजातियां यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातियां हैं, जिनकी आबादी करीब 1,92,000 है। भारत की जो 5 बड़ी जनजातियां हैं, उनमें से प्रथम 2 जनजातियां संताल और मुंडा झारखंड की मुख्य जनजातियां हैं। दुनिया, देश और झारखंड, इन सभी की सभी जनजातियों में सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, प्रजातीय और नस्लीय भिन्नताएं हैं। इनके पारंपरिक जीवन दर्शन, टोटम, धार्मिक और सामाजिक विश्वास तथा व्यवहार भी भिन्न भिन्न है, किंतु एक बड़ी समानता इन सभी में है और वह है प्रकृति का सानिध्य, प्रकृति और वनों पर निर्भरता, वनों और वृक्षों के प्रति धार्मिक, सांस्कृतिक विश्वास और मान्यताएं। इन सब की मान्यता है कि वृक्ष और वन, इन्हीं दोनों से इनका अस्तित्व सुरक्षित है, इसलिए इनके सांस्कृतिक व्यवहार में वनों की प्रधानता है, जो इनके धार्मिक अनुष्ठानों, लोक गीतों, लोक कथाओं और यहाँ तक कि गांव पहाड़ के नामों से बड़ी स्पष्टता से ध्वनित होती है। झारखंड के सभी जनजातियां प्रकृति पूजक हैं। इनमें मूर्ति पूजन की प्रथा नहीं है। प्रकृति पूजन में बुरु यानी पहाड़, वन और वृक्ष प्रमुख हैं। इनके बोंगा यानी ईश्वर निराकार हैं, जिनका वास वृक्षों में है। इनके ईश्वर और ईश्वरीय शक्ति के प्रतीक वन और वृक्ष हैं, इसलिए इनके पर्व त्योहार में वृक्ष और वन के प्रति विशेष आग्रह है। यही कारण है कि वनों और वृक्षों के संरक्षण और उनके संवर्धन में सांस्कृतिक रूप से आदिवासी समाज की बहुत बड़ी और अहम भूमिका है। दुनिया भर में वनों और पेड़ों की कटाई के विरुद्ध सबसे ज्यादा प्रतिरोध आदिवासी समाज ने किया और सब के मूल में अपने अस्तित्व और अपनी संस्कृति की रक्षा के प्रति उनकी नैसर्गिक चेतना, चिंता और चरित्र है। आदिवासी यह मानते हैं कि अगर जंगल नहीं रहेगा तो आदिवासियत नहीं रहेगी। इसी कारण आदिवासियों के प्रति बाहरी दुनिया की दृष्टि भी वनों से उनके संबंधों के आयामों पर आश्रित है। एक ओर जहां कथित प्रगतिशील और साम्राज्यवादी समाज इन्हें जंगली और वनवासी कहता है।

है तो दूसरी ओर आदिवासी संस्कृति के मूल्यों के प्रति आस्थावान दृष्टि रखने वालों ने इन्हें वन पुत्र, वन रक्षक और वन स्वामी कहा। महाश्वेता देवी ने तो इन्हें जंगल के दावेदार की संज्ञा दी। आदिवासियों की अनुभूतियों, कथाओं, विश्वासों और संस्कारों में वानिकी ऐसा तत्व है जिसके बिना इन सब का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जंगल इनका संसार है, इनकी माँ है, इनका मित्र है, इनका साम्राज्य, इनकी मिल्कियत है। इसी जंगल और इस पर अपने अधिकार के लिए इनके संघर्ष की लंबी गाथाएं हैं। 1767 के चुआड़ आंदोलन से लेकर राजमहल क्षेत्र के पहाड़िया विद्रोह, संथाल हूल और भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान तक सब के मूल में जंगल की यह दावेदारी निहित थी। महाश्वेता देवी को यह संघर्ष इतना उद्वेलित करता है कि वह कहती हैं, कोड़ों की मार से उदड़े काले जिस्म पर लाल लहू ज्यादा लाल ज्यादा गाढ़ा दिखता है। जंगल आदिवासियों की हंसी, इनका नृत्य, इनका गीत और इनकी जीवन धारा है। सच कहें तो इस पृथ्वी पर जंगल अगर बचे हैं तो उन्हें आदिवासियों ने बचाया, उनकी संस्कृति ने बचाया। झारखंड में पिछले 1.5 दशक में वन क्षेत्र बढ़ा है। भारत सरकार की फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2023 के अनुसार झारखंड देश के उन शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है जहां वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। झारखंड में पिछले 2 वर्षों में 287 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, यानी वन क्षेत्र में 1.71% की बढ़ोतरी हुई। अब कुल वन क्षेत्र 23,765.78 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% है। 2011 से अब तक की बात करें तो झारखंड में 1,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जंगल बढ़ गए हैं। वनों का यह विस्तार राज्य के 24 में से 19 जिलों में ज्यादा हुआ है। इस वानिकी विस्तार में आदिवासी समाज की बड़ी भूमिका है जिन्होंने सरकारी प्रयासों को अपना भरपूर सांस्कृतिक समर्थन दिया। आदिवासी समाज के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अस्तित्व का आधार ही जल और जंगल है। पर्यावरण एवं आदिवासी जीवन शैली के ताने बाने को एक दूसरे से अलग करके न तो आदिवासी समाज की अस्तित्व की कल्पना की जा सकती है, न ही वन और पर्यावरण के अस्तित्व की। देश की विकासवादी नीति में अगर जंगल बचा है तो उसे जंगलवादी आदिवासी समाज ने बचाया है। आदिवासी समाज न केवल जंगल पर दावे करता रहा है बल्कि उसके संरक्षण और नियंत्रण में इसने सीधी भूमिका भी निभाई है। जंगल के प्रबंधन और उस पर नियंत्रण के लिए 1878 में वन अधिनियम बना। इस अधिनियम में 1927 को संशोधित किया गया और वनों की सुरक्षा और प्रबंधन का जिम्मा वन विभाग को दिया गया, लेकिन इसके बाद वनों की कटाई तेज हो गई। तब 1988 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई और वन संरक्षण का काम स्थानीय जनता तथा वन विभाग को संयुक्त रूप से दिया गया। इसे संयुक्त वन प्रबंधन के नाम दिया गया। सरकार ने वन भूमि संरक्षण जिम्मा स्थानीय जनता को सौंपा। आदिवासियों ने अपनी जिम्मेदारी ज्यादा ईमानदारी से निभाई। जहां उन्हें लगा कि वन संरक्षण में सरकारी तंत्र सफल हो रहा है वहां आदिवासी सामने आए और जंगल रक्षा समिति जैसे संगठन बनाए। आदिवासी समाज की यह पहल सफल रही है क्योंकि यह वनों को बचाने की न केवल एक संगठनात्मक पहल है बल्कि इसके पीछे इस समाज की सांस्कृतिक ताकत भी थी। झारखंड अलग राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में भी आदिवासी समाज की वन संरक्षण संबंधी अवधारणा बड़ा कारक रही। इस प्रक्रिया का आधार जिन बातों पर निर्भर था उनमें वन और प्रकृति के अनुरूप आदिवासी समाज के जीवन यापन और पर्यावरण संतुलन एवं सुरक्षा के संकल्प अहम थे। हम गहराई से देखें तो झारखंड के आदिवासी समाज के धर्म अनुष्ठान, पर्व त्योहार और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार से वन और वृक्ष का गहरा संबंध है। इनके सभी पर्व त्योहार प्रकृति, उसकी महिमा, उसके प्रति कृतज्ञता, उसकी रक्षा और उसकी पूजा पर केंद्रित है, जिनमें वृक्ष और वन की पूजा प्रमुख है। मुंडा, संताल, असुर आदि जनजातीय समाज के सरहुल, कर्मा, जितिया, मंडा, हरियार, बाहा आदि त्योहारों में वृक्ष और प्रकृति पूजन प्रमुख है। संताल जनजाति की मान्यता है
कि इस पृथ्वी की रचना प्रक्रिया में पौधा मनुष्य से पहले पैदा हुआ।

0: इनकी मितकीय गाथा के अनुसार जब सभी ओर केवल जल ही जल था, तब मारांग बुरु ने अपने कंधे के मैल से पक्षियों के एक जोड़े हंस और हंसनी को बनाया। दोनों आकाश में लंबे समय तक उड़ते रहे। तब जाहिर एरा के कहने पर मारांग बुरु ने अपनी दाढ़ी का केस निकाल कर पानी में फेंके, जिनसे कराम यानी करम का पौधा उत्पन्न हुआ। इसी पर हंस और हंसनी को उन्होंने आश्रय दिया, लेकिन जल की सतह पर होने के कारण पौधा स्थिर नहीं हो पा रहा था। तब मारांग बुरु ने पृथ्वी की रचना करने का विचार किया। उन्होंने पाताल से मिट्टी लाने के लिए पहले केचुआ, फिर मछली और अंत में केकड़े की रचना की। जब मिट्टी जल की सतह पर आ गई, तब उसे अपनी पीठ पर धारण करने के लिए कछुआ बनाया। इस तरह पृथ्वी का निर्माण हुआ और उस पर स्थिर हुए कराम के पौधे पर हंसनी ने दो अंडे दिए। इन्हीं अंडों से एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म हुआ, जो संतालों के आदि माता पिता पिलचू बूढ़ी और पिलचू हड़ाम हैं। इनकी 8 बेटियां और 7 बेटे हुए। फिर एक लंबे कथा अंतराल और घटनाक्रम के बाद यह घटित हुआ कि पिलचू बूढ़ी और पिलचू हड़ाम के इन 7 बेटों ने इन 7 बेटियों से विवाह किया और इन्हीं की संतान संताल है। 8वीं बेटी की मृत्यु हो गई और उसने पौधे के रूप में दोबारा जन्म लिया। इस प्रकार मानव के जन्म के पहले पौधे का जन्म और मृत्यु के बाद पौधे के रूप में उसके पुनर्जन्म की यह अवधारणा संताल समाज को वृक्ष और वन के प्रति मिथकीय रूप से गहराई से जोड़ती है। झारखंड की अन्य कई जनजातियों में भी मानव की उत्पत्ति की मिथकीय अवधारणा थोड़े बहुत अंतर्भेद के साथ यही है। आदिवासी क्षेत्र के स्थानों, गांवों और पहाड़ों के नामों में भी इस समाज के वनों और वृक्षों के प्रति गहरे सांस्कृतिक लगाव ध्वनित होते हैं। जैसे संताल परगना के साहिबगंज जिला मुख्यालय से सटे एक गांव का नाम है तड़बन्ना है। यहाँ ताड़ के पेड़ बहुतायत में हैं। इसी जिले के एक प्रखंड का नाम तालझारी है। यहाँ ताड़ के पेड़ बहुतायत में थे। पाकुड़ जिले के एक प्रखंड का नाम है अमड़ा पाड़ा। यहाँ अमड़ा के पेड़ की प्रचुरता थी। जामताड़ा झारखंड का एक जिला है। जामताड़ा 2 शब्दों के योग से बना है, एक जाम और दूसरा ताड़ा। संताली में जाम का अर्थ जामुन और ताड़ा का अर्थ समूह होता है। कहते हैं कि यहाँ जामुन के पेड़ बहुतायत में थे, जिसके आधार पर इसका नामकरण जामताड़ा हुआ। इसी प्रकार दुमका जिले में आम से आमडही, आम पहाड़ी, काठ से काठीकुंड, कठालडी, महुआ से महुआ गढ़ी, बेर से बेर पानी, कदम से कदमा, कदम सार, कदमदार जैसे गांव पंचायतों और प्रखंडों के नाम हैं। सरुआ का अर्थ होता है सखुआ। यहाँ सखुआ पानी नाम से कई गांव हैं। छोटा नागपुर और संताल परगना के लगभग हर हिस्से में गांवों के नाम के पीछे आदिवासी समाज का वन प्रेम दिखाई देता है। नीम, बांस, करम, कदम, कटहल, सेमर, बड़हर, भिलवा, बेहरा, बेल, खजूर, गम्हार आदि पेड़ों के नाम पर यहाँ गांवों के नाम हैं। जैसे आमचुआ, आमगाछी, भावर पानी, बेलगढ़, बेहरा टोली, कुसुम, करम टोली, कदम टोली, कटहल, मोड़, खिजूर बहार, खिजूर बन्ना, गम्हरिया, जाम टोली, जाम तई, जमुना खोईर, डुमरथर, डुमरिया, डुमर बेरा, डुमर मुंडा, डुमर डी, डुमर टोली, डुमर चीर, नीमतूर, बांस जोर, बांस पहाड़ी, महुआ टोली, महुआ गढ़ी, माहौल बना, तिरिल, वनगांव, वनगाछी, भिलवा डी, भिलवा पहाड़, भिलवा घाटी, सेमर बेड़ा, हल्दी बेड़ा आदि। सरई का अर्थ भी सखुआ होता है। सरई पानी नाम से अनेक जगह झारखंड में है। कहने का आशय यह है कि आदिवासी समाज और आदिवासियत का वानिकी से सांस्कृतिक और मिथकीय रूप से बहुत गहरा संबंध है। यहाँ झारखंड के लोक गायक और गीतकार पद्मश्री मधु मंसूरी के उस लोकप्रिय गीत का मैं उल्लेख करना चाहूंगी, जो झारखंड की वन संस्कृति और माटी के मूल को बहुत खूबसूरती से ध्वनित करता है। गांव छोड़ब नाही, जंगल छोड़ब नाही, माई माटी छोड़ब नाही, लड़ाई छोड़ब नाही। यह गीत जल, जंगल और जमीन के लिए आदिवासी समाज की सांस्कृतिक चेतना का ऐसा शब्द चित्र है जिसमें संघर्ष की गाथा भी है, पीढ़ियों का संकल्प भी, आदिवासियत भी है और झारखंडी भाव की आत्मा भी।
1: आदिवासी संस्कृति और वानिकी, अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे नीलम कुमारी से। इसी के साथ खुला आकाश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: जानकर हैरान रह गया।
1: वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
6: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
7: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सीएसआर पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वेयर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
0: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
4: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
6: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
8: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
4: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
9: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
10: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
4: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi. Reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid al-Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervour. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasised the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states, worth around 30,000 crore rupees. We have a report.
12: While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led multimodal development where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. Mr. Modi said the project should not be seen merely as a port but as a national gateway connected through coastal shipping, inland waterways, dedicated freight corridors, high-speed rail connectivity, highways and airport linkages. While reviewing Ken-Betwa River interlinking project, the Prime Minister observed that Ken-Betwa project should serve as a model for other states to resolve interstate water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission mode execution. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
11: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling, Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission Cycle Award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
0: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं.
13: 3 major reforms have been introduced in this program today. First, the government will support the transportation cost incurred in moving food grains from large FCI warehouses in the states to fair price shops across different districts and divisions. Second, there was a need to increase the remuneration of fair price shop dealers and a decision has been taken in this regard as well. Third, efforts will be made to modernize the public distribution system through the use of technology.
0: Public distribution system ko hum kaise modernize kar sakte?
11: Union Home Minister Amit Shah has directed authorities to strictly enforce zero tolerance policy towards illegal constructions within 15 kilometers of the country's borders and demolish all such structures that have come up over the years. Chairing a security review meeting in Bikaner, Mr. Shah assessed security-related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. The Home Ministry has assigned enhanced responsibility to the district magistrates to ensure legal and financial compliance of banking transactions in the border areas by all banks, verify big business establishments, examine their funding sources, track mule accounts and false companies, identify fake Aadhaar cards, and control cross-border smuggling. Union Home Minister Amit Shah will be on a visit to Gujarat today. During his visit, the minister is scheduled to inaugurate and lay the foundation stones of nearly a dozen public utility, education and rural infrastructure projects in Ahmedabad and Gandhinagar districts. We have a report from our correspondent.
7: Beginning his tour in Kalol Taluka in Gandhinagar, the minister will dedicate several public amenities developed under corporate social responsibility initiatives, including Jedwa Village Lake, three new library buildings and new primary school buildings. In the evening, Mr. Shah will attend programs in Ahmedabad to inaugurate a new hostel building at Mata Umiyadham complex in Sola and Bharat Mata Square at Bhimjipura. Later, the minister will also chair the high-level review meeting at Shahibagh Circuit House to assess the infrastructure readiness for the upcoming Olympic, Commonwealth and World Police and Fire Games. Aparna Khun, Akashwani News, Ahmedabad.
11: The Union Public Service Commission, UPSC, has for the first time released the provisional answer key for the Civil Services Preliminary Examination 2026. In a statement, the Commission said that the candidates who appeared for the examination can submit representations through the online question paper representation portal till 6 p.m. on the 31st of May. The candidates have to submit representations along with brief explanations and supporting documents from three authentic sources. The Commission said the final answer key will be released only after declaration of the final result, in line with the existing practice. The Madhya Pradesh High Court has cancelled the anticipatory bail of retired district judge Giribala Singh in the Twisha Sharma death case. The Bhopal Sessions Court had granted her this bail on May the 15th. The High Court said the Sessions Court had ignored the victim's family's allegations while granting bail. Meanwhile, Twisha's husband, Samarth Singh, was handed over to the CBI by a local court on Wednesday. The family of Twisha's husband claims it was suicide, but Twisha's family says she was murdered. The CBI took over this case from the Bhopal Police SIT on May the 25th. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India Meteorological Department, IMD, has said that heat wave to severe heat wave conditions are expected to continue over central and northwest India during the next 2 days. The weather agency has issued red colour warning for heat wave to severe heat wave conditions over Vidarbha today. In Madhya Pradesh, severe heat wave conditions are scorching the state with temperatures crossing 45 degrees Celsius across multiple districts. A report.
8: This time, Nautapa in Madhya Pradesh is unusual. Along with extreme heat, dust, storms and rain are also being seen. The weather department has warned of heat wave in 46 districts today. Khajuraho and Nogaon in Chhatrapur district are the hottest cities in the state. They have been topping the heat chart since May 18. Yesterday, both cities recorded 46.6 degrees Celsius. Bhopal was at 43.6, Gwalior at 44.5 and Jabalpur at 43 degrees. Good news is that the weather is likely to change from tomorrow. Rain is expected in many districts till May 31st due to a western disturbance. Abhinav Goyal, Akashwani, Bhopal.
11: Heat wave conditions are also expected over Delhi, Chandigarh, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Konkan, Goa, Odisha, Punjab, Telangana and Uttar Pradesh today. The Met Department also predicted heavy rainfall over parts of northeast India, Bihar, Tamil Nadu and Puducherry today. IMD said that thunderstorms accompanied with hailstorms are expected over Uttar Pradesh, Kanchetek, West Bengal, Haryana, Chandigarh and Uttarakhand during the next 2 days. The festival of sacrifice, Eid ul-Azha or Bakr Eid, is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. The faithfuls are offering Eid prayers in Eidgahs and grand mosques. In the national capital, Delhi, main Eid prayers congregations are being held at Jama Masjid, Fatehpuri Mosque and Shahi Eidgah. Eid ul-Azha is celebrated to commemorate the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his only son in obedience of God's command. President Draupadi Murmu has greeted the people on the occasion. In her message, the president said that the festival symbolizes devotion, sacrifice and selflessness. In Uttar Pradesh, the administration has made elaborate arrangements and taken precautions for the smooth celebration of Bakr Eid today. Our correspondent has filed this report.
9: People are getting ready to reach the mosques nearer to them to offer the prayers of Bakr Eid. Ritual of Qurbani will take place after Namaz. State government has already issued an advisory directing all district police chiefs to ensure that no new tradition should start and no sacrifice of restricted animal should take place. After the directions of DGP Rajiv Krishna, police flag marched in sensitive areas to ensure that festival is celebrated peacefully. Police are keeping extra vigil at sensitive areas in cities like Kanpur, Muradabad, Sambhal, Rampur, Meerut and Mau. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
11: Home Minister Amit Shah today paid tributes to Swatantra Veer Vinayak Damodar Savarkar on his birth anniversary. In a social media post, Mr. Shah said, "The fearless warrior of the freedom struggle, Veer Savarkar, dedicated his entire life to the service of the motherland." He said, "From the life and writings of Veer Savarkar, we can learn what unwavering devotion to the nation and ideology truly means." In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Sunrisers Hyderabad by 47 runs in the eliminator match in New Chandigarh last night. Rajasthan Royals set the target of 244 runs against Sunrisers Hyderabad. In reply, Sunrisers Hyderabad could only score 196 runs in 19.2 overs. Vaibhav Suryavanshi has been adjudged as the player of the match. Tomorrow, Rajasthan Royals will take on Gujarat Titans in qualifier 2 for a place in the final. The final match will be played on Sunday at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Earlier, Royal Challengers Bengaluru stormed into the final, beating Gujarat Titans by 92 runs in the qualifier 1 match at Dharamshala on Tuesday. Two-time Paralympic champion Sumit Antil shattered his own world record in the men's javelin throw F64 category at the 8th Indian Open International Para Athletics Championships 2026 in Bengaluru yesterday, producing a throw of 72.82 meters. Representing Haryana, Antil delivered a sensational gold medal winning performance to surpass his previous world record of 73.29 meters, which he had set at the 2022 Asian Paragames in Hungshou. In Norway chess, R. Pragyananda defeated the world number one Magnus Carlsen, gripping the contest to claim 3 full points in round 3 of the tournament. In contrast, world champion D. Gukesh

0: continued to endure a difficult run, suffering another setback after losing to Ali Reza Firoz Shah in the final game following a hard-fought classical draw. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Sunil. The Supreme Court of India upholding the validity of the special intensive revision conducted by the Election Commission of India is the top news in many dailies today. SIR valid, falls within ECI's powers, says SC, is the headline in Hindustan Times. The observation of Madras High Court defending free speech in a judgment on Tamil film Karuppu, that judges need not be treated as holy cows and that corruption within judiciary cannot be denied, finds front page mention in the Times of India. And finally, the Statesman mentions that a joint study by Banaras Hindu University, University of Colombo and others has revealed a 57,000-year-old human journey hidden in Sri Lankan DNA. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi, reviews seven critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometres of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid al-Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervour. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani Ranchi se prastut hai Pradeshik Samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। झारखंड के सभी 24 जिलों में खुलेंगे अबुआ दवाखाना, कैबिनेट ने दी मंजूरी, राज्य सरकार मुफ्त देगी एलोपैथी और आयुष की दवाइयां। सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का निर्णायक अभियान तेज, आईजी अभियान ने कहा नक्सलियों की पूरी घेराबंदी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है बकरीद का त्यौहार, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। राजधानी रांची सहित राज्य के 20 जिलों में आज बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में झारखंड T20 प्रीमियर लीग का 10 जून से होगा आयोजन, 6 टीमें लेंगी हिस्सा, 30 मई को होगी 241 खिलाड़ियों की नीलामी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं, कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी 24 जिलों में अबुआ दवाखाना खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन केंद्रों में एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा पद्धति से इलाज की सुविधा एक ही जगह उपलब्ध होगी। शुरुआत में 745 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में एकीकृत औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां जरूरी दवाइयां निःशुल्क दी जाएंगी। कैबिनेट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थों से जुड़ी सूचनाएं देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए नई पुरस्कार नीति को भी मंजूरी दी। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान अब अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है। सारंडा के घने जंगलों में छिपे नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस, कोबरा, जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम लगातार अभियान चला रही है। आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों का अभियान सही दिशा में चल रहा है और नक्सलियों की पूरी तरह घेराबंदी कर दी गई है।
3: अबूद में ये अंतिम कील है जो हम लोगों को ठोकनी है और इसमें लगभग सभी नक्शा

0: से जुड़ जाएगा, जिससे आवागमन, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधा होगी। इस दौरान उन्होंने बुरुडी में जल्द डिग्री कॉलेज निर्माण शुरू कराने की घोषणा भी की।
1: चंडील से ही आना जाना सुविधा हो, नहीं तो यहाँ कांड्रा जाना पड़ेगा इधर, फिर नहीं तो घूम कर गम्हरिया होते तो फिर 15 किलोमीटर। इसीलिए यहाँ हो जाने के बाद एनएच पकाने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगेगा। ये सारा सुविधा को देते हुए हम जो मुख्यमंत्री थे उसी समय ये सब हम सैंक्शन करा दिया, और इसी बुरुडी में ही डिग्री कॉलेज भी बने ताकि यहाँ का विद्यार्थी कहीं दूसरा जगह जाके पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा।
0: खूंटी जिले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से 29 मई से 4 जून तक चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना तथा समाज में फैली झिझक और भ्रांतियों को दूर करना है। उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन ने कहा कि महामारी से जुड़े विषयों पर पुरुषों को भी जागरूक करना जरूरी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कुर्बानी के साथ इसकी शुरुआत की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को बकरीद की बधाई दी। जामताड़ा जिले में बकरीद शांति, सद्भाव एवं सामाजिक समरसता बनाए रखते हुए हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थलों पर आवश्यक पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उपायुक्त आलोक कुमार ने जिलेवासियों से शांतिपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास से बकरीद मनाने की अपील की है।
2: आप सभी से ईद उल जुहा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। ईद उल जुहा बकरीद, त्याग, समर्पण, भाईचारा एवं मानवता का संदेश देने वाला पर्व है। साथ ही साथ यह पर्व आपसी प्रेम, सौहार्द एवं सामाजिक एकता और मजबूत करता है। मैं समस्त जिलेवासियों से अपील करता हूं कि शांति, सद्भाव एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं।
0: सिमडेगा में अफीम तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस की नारकोटिक्स विरोधी टीम और सिमडेगा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 33 किलो अफीम बरामद की गई है। इसकी अनुमानित कीमत 1,68,00,000 रुपए से अधिक बताई गई है। एसडीपीओ धर्मदेव पासवान ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर नागपुर ले जाया गया है।
3: जांच में उसके पास से अफीम बरामद हुआ। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ वो बताया कि सिमडेगा में कुछ अफीम रखा हुआ है, जिसे कि नारकोटिक पुलिस नागपुर द्वारा बरामद किया गया है और जब्त सामान लगभग 33.76 किलोग्राम वजन का अफीम है। 23,35,000 रुपया भी बरामद किया गया है। जब्त सामानों का कीमत लगभग 2 करोड़ रुपया है।
0: राजधानी रांची सहित राज्य के 20 जिलों में आज बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राज्य में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की तर्ज पर बहुप्रतीक्षित T20 प्रीमियर लीग का आयोजन 10 जून से होगा। जेएससीए की ओर से आयोजित होने वाली इस लीग में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें रांची कैपिटल्स, जमशेदपुर स्टीलर्स, धनबाद डायमंड्स, छोटा नागपुर रॉयल्स, कोयलांचल सुपर किंग्स और संथाल स्ट्राइकर्स शामिल हैं। लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 30 मई को जमशेदपुर के द वेव इंटरनेशनल में आयोजित होगी। जेएससीए ने नीलामी के लिए

241 खिलाड़ियों की सूची जारी की है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, कैबिनेट का फैसला, हर जिले में अबुआ दवाखाना, ड्रग तस्करी की सूचना देने पर 2,00,000 रुपए तक का इनाम। दैनिक जागरण की सुर्खी है, राज्य सरकार का डीए 9% तक बढ़ा। हिन्दुस्तान ने लिखा, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। और दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आईपीएल के एलिमिनेटर मैच में वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड के सभी 24 जिलों में खुलेंगे अबुआ दवाखाना, कैबिनेट ने दी मंजूरी, राज्य सरकार मुफ्त देगी एलोपैथी और आयुष की दवाइयां। सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का निर्णायक अभियान तेज, आईजी अभियान ने कहा, नक्सलियों की पूरी घेराबंदी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है बकरीद का त्यौहार, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। राजधानी रांची सहित राज्य के 20 जिलों में आज बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में झारखंड T20 प्रीमियर लीग का 10 जून से होगा आयोजन, 6 टीमें लेंगी हिस्सा, 30 मई को होगी 241 खिलाड़ियों की नीलामी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का प्रसारण सुनीता के साथ।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग। आज आप इसमें सुनेंगे खोरठा भाषा में लोकगीत। कलाकार हैं रीता कुमारी और साथी।

रीता कुमारी और साथियों से आप सुन रहे हैं खोरठा भाषा में लोकगीत।

रीता कुमारी और साथियों के गाए इस खोरठा लोकगीत के साथ ही आज का लोकरंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, रसरंजन लेकर आएंगे हम बस थोड़ी ही देर में।

रसरंजन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार, इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुनीता। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म समाधि से। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने, गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: रसरंजन कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अगला गीत हमने लिया है फिल्म नया जमाना से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है एस टी बर्मन ने।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: रसरंजन कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म आई मिलन की बेला से। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन और खूबसूरत सी आवाज़ लता मंगेशकर की।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: कैसे
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो? दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: पर्सनल लोन ऑफर
8: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
7: फ्री ट्रिप टू दुबई
8: ये भी ब्लॉक? कितना ब्लॉक करूं यार?
9: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
8: तो क्या करूं?
9: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
8: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
9: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
10: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। अगला गीत हमने लिया फिल्म नीला आकाश से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। गीत के बोल लिखे हैं राजा मेहदी अली खान ने और धुन बनाई है मदन मोहन ने।

रसरंजन कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म रेशम की डोरी से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने, गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। हमारे आज के कलाकार हैं पंडित मनोज कुमार केडिया, जिनसे हम सुनेंगे सरोद पर राग बिलास खाने तोड़ी। आलाप और जोड़ के बाद दो गते प्रस्तुत हैं, मध्य लय की गत झपताल में और द्रुत लय की गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर साथ दे रहे हैं श्रीजीत चैटर्जी।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंडित मनोज कुमार केडिया से सरोद पर राग बिलास खाने तोड़ी। आलाप और जोड़ के बाद दो गतें प्रस्तुत थीं, मध्य लय की गत झपताल में और द्रुत लय की गत तीन ताल में निबद्ध थी। तबले पर संगत कर रहे थे श्रीजीत चटर्जी। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे विज्ञान जगत कार्यक्रम, लेकिन कार्यक्रम से पहले थोड़ा सा वक्त हमारे पास है तो हम आपसे कुछ बात जरूर कहना चाहेंगे। बदलते दौर में आप देख रहे हैं कि हर चीज बदल रही है, और सबसे ज्यादा जो बदल रहा है वो है हमारा मौसम। ये क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है और इसकी क्या वजह है, और हम क्या कुछ ऐसा करें कि अभी भी हम इसे बचा पाए। यानी इसे बचाने के लिए जरूरी है कि हमें पर्यावरण को संरक्षित करना होगा। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ ये नहीं है कि प्राकृतिक साधनों, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता को सुरक्षित रहना। मानव जीवन मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शुद्ध वायु, पीने योग्य पानी और उपजाऊ भूमि को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को एक स्वस्थ ग्रह मिल सके। आपने देखा होगा कि आज बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, इतनी पड़ रही है कि लोग परेशान हैं। बारिश होगी तो इतनी बारिश होगी कि लोग एकदम उससे भी बाढ़ से परेशान होंगे, पानी जल जमाव से परेशान होंगे, उसके दौरान बीमारियों से परेशान होंगे। ठंड पड़ती है तो इतनी ठंड पड़ती है कि बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, और ऐसा इसलिए होता है कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। अभी भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। इसके लिए जरूरी है कि पेड़ पौधों की रक्षा करें, जल स्रोतों को साफ रखें और पेड़ की हवा को शुद्ध रखने की कोशिश करें। कोशिश ये करें अपने आसपास एक पेड़ जरूर लगाएं, ताकि हमारा देश, हम जहां रहते हैं वो जगह हरी भरी रहे, और मौसम का जो बदलता मिजाज है उसको भी थोड़े कंट्रोल कर पाए हम। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। तो ये तो हो गई पर्यावरण संबंधी थोड़ी सी बातें आपसे हमारी, और वक्त है अभी साप्ताहिक विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान जगत का, जिसमें आज चर्चा होगी रासायनिक पदार्थों से तैयार फलों को खाने से बचे। साथ ही भेंटवार्ता आप सुनेंगे तंबाकू सेवन से होने वाले खतरे एवं बचाव के उपाय। भेंटवार्ता कर होंगे डॉक्टर अभिजीत सिंह, भेंटकर्ता होंगे बसंत कुमार। जीवन परिचय में आपको जानकारी मिलेगी हेनरी कैवेंडिश के बारे में। खोज और आविष्कार में आप जानेंगे सोलर पैनल के बारे में। वाचन एवं सहयोग है बसंत कुमार का, प्रस्तुति है प्रभु शरण की। ये कार्यक्रम हम सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं रासायनिक पदार्थों से तैयार फलों को खाने से हमें क्यों बचना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं तंबाकू सेवन से होने वाले खतरे और इसके बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में। इसके बाद बारी होगी वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें हम आपको आज जानकारी देंगे सोलर पैनल के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि रासायनिक पदार्थों से तैयार फलों को खाने से हमें क्यों बचना चाहिए इसके बारे में। तरबूज, ककड़ी, खीरा, इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे फल हैं जो इसी मौसम में मिलते हैं, गर्मी के मौसम में, जैसे कि आम, लीची, यहाँ तक कि हमें ऐसे फलों का भी सेवन करने के लिए मिलता है जिसे हम सिर्फ गर्मी के मौसम में ही खा सकते हैं। तो इन फलों को खाने से पहले हमें कई बार बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लेकिन हम फलों को देखकर लालच में आ जाते हैं और फलों को किस तरीके से तैयार किया गया है, वो सेहतमंद है या नहीं है, इन बातों को दरकिनार करके हम सीधा फल को खाने के लिए खरीद लेते हैं और उसका सेवन भी करने लगते हैं। फल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर भी रोज फल खाने की सलाह देते हैं क्योंकि फलों में विटामिन, खनिज और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन आजकल बाजार में जल्दी मुनाफा कमाने की होड़ में कई व्यापारी फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने लगे हैं। इन फलों को रसायनों की मदद से जल्दी बड़ा और चमकदार बनाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो रहा है। प्राकृतिक रूप से पके फल शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन जब इन्हें कैल्शियम कार्बाइड, एथिलीन गैस या अन्य रासायनिक पदार्थों की सहायता से पकाया जाता है या तैयार किया जाता है, तब ये स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि बाजार में आम, केला, पपीता और सेब जैसे फल बहुत चमकते हैं, एक जैसे रंग के दिखाई भी देते हैं, देखने में ये आकर्षक लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सुरक्षित भी हों। कई बार फलों को जल्दी पकाने के लिए जहरीले रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड रसायन के बारे में हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं और इसका उपयोग सबसे अधिक फलों को तैयार करने के लिए किया जाता है। इससे निकलने वाली गैस फल को जल्दी पीला बना देती है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव काफी गंभीर हो सकते हैं। ऐसे फल खाने से सिरदर्द, पेट दर्द, उल्टी, आंखों में जलन, त्वचा संबंधी कई प्रकार की समस्याएं भी हो सकती हैं। लंबे समय तक इनका सेवन करने से लीवर और किडनी भी पूरे तरीके से प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों की अगर हम माने तो रसायनों से पकाए गए फलों में प्राकृतिक स्वाद और पोषण की कमी हो जाती है, यानी हम फल तो खा रहे हैं लेकिन शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ऐसे फल और भी ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। अब बात ये आती है कि इन फलों को हम पहचाने कैसे कि ये कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए हैं। तो इन फलों को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि प्राकृतिक रूप से पके फल धीरे धीरे रंग बदलते हैं, जबकि रसायनों से पके फल बाहर से पूरी तरह पीले या लाल दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से कच्चे होते हैं। ऐसे फलों में प्राकृतिक खुशबू कम होती है। केले या आम पर काले धब्बे या असमान रंग दिखाई दे सकते हैं। फल जरूरत से ज्यादा चमकदार दिखे तो सावधान हो जाना चाहिए। काटने पर यदि फल का अंदरूनी हिस्सा सख्त या फीका लगे तो समझिए कि इसे कृत्रिम रूप से पकाया गया है। अब अगर आपने कृत्रिम रूप से पकाए गए फलों का सेवन कर लिया है और कुछ नुकसान आपको हो रहा है, तो इनसे बचने की क्या प्रक्रिया है, क्या सावधानी है, ये जरूर याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमेशा मौसमी और ताजे फल को खरीदें, उसका ही सेवन करें। फल खरीदने के बाद अच्छी तरह से उसे धोएं तभी उसका सेवन करें। कुछ समय के लिए गुनगुने पानी में रखने से भी रसायनों का जो असर है वो कम हो जाता है। स्थानीय किसानों या विश्वसनीय दुकानदारों से ही फल खरीदें और सेवन करें। जरूरत से ज्यादा चमकदार और बहुत जल्दी पके हुए फलों से बचना चाहिए और बच्चों को फल खिलाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से साफ करके धो लेना चाहिए, तभी उसका सेवन करना चाहिए। तो स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। थोड़ी सी लापरवाही हमें बहुत बड़ी बीमारी की तरफ ले जा सकती है, इसलिए हमें जागरूक बनना है और दूसरों को भी जागरूक करना होगा। यदि हम सुरक्षित और प्राकृतिक फलों का सेवन करेंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत रहेगा। तो रासायनिक पदार्थों से तैयार फलों को खाने से हमें क्यों बचना चाहिए, हमने इसके बारे में बातचीत कर ली। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भेंटवार्ता में आज तंबाकू सेवन से होने वाले खतरे और इससे बचाव के क्या उपाय हैं इसके बारे में। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर अभिजीत सिंह हैं जो कि इस विषय पर हमें जानकारी देंगे। और डॉक्टर अभिजीत सिंह समन्वयक नशा मुक्ति केंद्र CIP केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान रांची में कार्यरत हैं और ये संस्थान लगभग 107 साल पुरानी है जो कि इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है और लोगों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक कर रही है। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: तो सर सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नशा कितना जरूरी हो जाता है इंसान के लिए और नशा के प्रति लोगों का जो रुझान है उस तरफ जो खिंचाव है वो क्यों होने लगता है, जबकि लोग ये जानते हैं कि नशा करना उनकी सेहत के लिए, उनकी मानसिक स्थिति के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति के लिए भी खराब है, बावजूद इसके लोग नशा करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है?
1: देखा जाए तो नशा एक तलब है। जब हमें तलब उठती है तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, और इसलिए हम नशा की दुनिया में गिरते ही जाते हैं, इसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये तलब क्यों उठता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है जीवन में स्ट्रेस। जब परेशानियां आती हैं, जब स्ट्रेस आता है तो हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। हमें लगता है कि अगर हम नशा कर लेंगे तो कुछ समय तक नशे में रहेंगे और इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से निजात पा लेंगे, और इसी क्रम में हम जो है नशा के चंगुल में फंसते जाते हैं और तलब हमें लग जाता है।
0: यानी कि एक चीज़ से बाहर निकलने के लिए, मतलब स्ट्रेस हो गया या फिर कोई मानसिक परेशानी है या आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उससे बचने के लिए लोग थोड़ी देर के लिए, भूलने के लिए नशे की तरफ चले जाते हैं, लेकिन फंस जाते हैं उस तरफ। और ये एक बार दो बार हो गया तो समझ में आता है, लेकिन बार बार अगर उस चीज़ को रिपीटेशन हो रहा है तो फिर उस चीज़ को लेकर के जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और हर साल की तरह इस बार भी देखिए वर्ल्ड नो टोबैको डे जो कि 31 मई को मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में, इसके बावजूद लोग नशे की तरफ चले जा रहे हैं, इसका और जो मरने वाले लोगों की संख्या है या फिर इससे जो प्रभावित होने वाले लोगों की जो संख्या है वो भी आप दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई देख रहे हैं, तो कैसे इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?
1: पहले तो मैं कुछ तत्वों के बारे बात करूंगा, कुछ डेटा के बारे बात करूंगा जो कि बहुत भयानक है। अगर देखा जाए तो आज हमारे देश में 10 में से 5 ऐसे लोग हैं जो नशा कर रहे हैं जिनमें मरने वाली संख्या 3 से ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो लोग 5 में से 3 आदमी जो नशा कर रहे हैं वो मर रहे हैं। क्या कारण है इसके? सबसे बड़ा कारण नशा से मरने वाले लोगों की वो है कैंसर, जो कि माउथ कैंसर, लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर जैसी बीमारियां हैं। हम सबको पता है कि कैंसर के बाद जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाती है, कठिन हो जाती है, और कैंसर एक बहुत बड़ा इसका रीज़न है।
0: जो लोग नशे के आदि हो गए उनको अगर जैसे पता है कि मुझे इस तरह की नशे के सेवन करने से बीमारी है या हो सकती है, तो उसके बावजूद वो नशा करते हैं क्योंकि आदत लग चुकी है, तो इस आदत को छोड़ने के लिए या फिर छुड़ाने के लिए क्या रास्ते हैं, क्या तरीके हैं जिनको लोगों को जानना चाहिए और उसके प्रति काम करना चाहिए, कैसे इसको किया जा सकता है?
1: जो सबसे पहला जो स्टेप हम लेते हैं वो है लोगों को जागरूक करना, ये बताना कि नशा आपके लिए खराब है। बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे संस्थान का और हमारा ये हमेशा से इच्छा रहती है कि हम लोगों को बताएं कि आप किस तरह से नशा से बच सकते हैं। तो उसके लिए कुछ तरीके हैं जिसमें हम कुछ थेरेपी का यूज़ करते हैं, कुछ काउंसलिंग देते हैं, कभी कभी हम दवा का भी इस्तेमाल करते हैं और उससे लोगों को नशा से बचाते हैं।
0: अभी तक के एक्सपीरियंस में नशा से बचने के लिए या फिर उससे छुटकारा पाने के लिए किस तरह के केसेस आए हैं और आपको सबसे खतरनाक या फिर खराब कह लें या फिर ऐसी स्थिति कह लें जिसमें आदमी उभर नहीं सकता है, ऐसे में आप कैसे उनको
2: देखते हैं क्या हम उनको सलाह देते हैं।
1: एक छोटा सा मैं केस आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जहाँ पर एक इंसान हमारे पास आए और जब हम उनका केस हिस्ट्री लिए तो हमें पता चला कि वो काफ़ी तन्हा हैं, लोनली हैं, और उसके कारण उन्होंने शराब का नशा शुरू किया। शराब का नशा शुरू करने के बाद उनकी घर परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया। अब क्योंकि साथ छोड़ दिया तो वो और अकेलापन हो गया और इसलिए वो और नशा लेने लगे। जब वो हमारे पास आए तो उनकी हालत इतनी बुरी थी कि वो अपना दिन भर का खाना भी नहीं खा पाते थे। जो खाना पेट में जाता था वो सही से पच नहीं पाता था। लीवर 75% तक डैमेज हो चुका था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया अपना ट्रीटमेंट, जहाँ पर मेडिसिन के साथ साथ थेरेपी के साथ साथ काउंसलिंग ये सब किया, और अभी काफ़ी हद तक वो अच्छे हैं। पूरी तरह तो अच्छा नहीं हो पाए, लेकिन हाँ चलो कम से कम वो एक अच्छाई की तरफ उनका कदम जो है आगे बढ़ चुका है और उनका परिवार भी उनका साथ दे रहा है। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, जो इस बार का थीम है हमारा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन अगेंस्ट ड्रग इंडस्ट्री, कि जो टम्बैको इंडस्ट्री में जो बच्चों का योगदान है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं, एक वैसे लोग जो ऑलरेडी नशा कर रहे हैं उनको तो रोकना हमारा फ़र्ज़ बनता ही है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे, उसको हम एडोलेसेंट बोलते हैं, वो नशा की तरफ झुक रहे हैं, वो तम्बाकू की तरफ झुक रहे हैं, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आज उनको रोक लेंगे तो कल वो उनका भविष्य अच्छा होगा और वो अच्छा इंसान की तरह निकल पाएंगे।
2: तो इसके लिए आपकी संस्थान या फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई स्कीम या ऐसा कोई कुछ कार्यक्रम जो जिसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह का कुछ कार्यक्रम चल रहा है जिसमें वो शामिल होकर अपना जो नशे की जो लत लगी है उससे बाहर आ सके।
1: हमारी संस्थान में हर बुधवार और शनिवार को एक क्लिनिक बैठता है जिसका नाम है टोबैको सीजेशन क्लिनिक, TCC। इस क्लिनिक में हम निःशुल्क इलाज करते हैं, और जो भी लोग तम्बाकू, खैनी, गांजा, सिगरेट जैसी समस्या लेके हमारे पास आते हैं उनका हम निःशुल्क करते हैं। ये एक सरकारी कार्यक्रम है और इसमें मैं अभी तक अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि अगर हमारे पास 10 केस आया है तो 8 सक्सेस केस हमले के बाहर निकले।
2: तो बहुत अच्छी बात है।
1: तो इस तरह का जो कार्यक्रम है ये गवर्नमेंट काफी ज्यादा सपोर्ट करती है, और ये क्लिनिक बैठाने के बाद हमें पता चला कि हाँ कुछ ना कुछ तो हम कर पा रहे हैं समाज के लिए।
2: अभी तक अगर देखा जाए तो इन सभी चीजों को जानने के बावजूद लोगों में नशे के प्रति जो खिंचाव है या रुझान है वो कम होने का नाम नहीं लेता। आपने जिन जिन चीज़ों का भी नाम लिया नशे के रूप में, उसके अलावा और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनका सेवन लोग नशे के रूप में करते हैं, तो इन सभी चीज़ों का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा असर तो नहीं करता है तुरंत में, लेकिन वो जो चीज़ें हैं जो अलग लेवल में नशा करने की चीज़ें हैं उनका असर तो सीधा मानसिक तौर पर होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो बाहर निकलने के लिए उसके पास क्या रास्ता है?
1: सबसे पहले जो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी नशा शुरू होता है वो छोटे नशे से शुरू होता है, जैसे सिगरेट का नशा हो गया, निकोटिन डिपेंडेंस उसको हम बोलते हैं, या फिर खैनी का नशा हुआ। ये नशा को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो ये आगे चल के बड़ा नशा, जैसे कि गांजा का नशा हो गया, ओपिओइड का नशा हो गया, ब्राउन शुगर का नशा हो गया, ये सबको हम बचा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी ब्राउन शुगर, कोकीन, हीरोइन के नशा कर रहे हैं, सबसे पहले हमको उनके घर परिवारों को ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप उनको लेके हमारे पास आइए, क्योंकि इस पोजीशन पे आने के बाद, ये स्टेज में आने के बाद डायरेक्ट डॉक्टर का ही हेल्प चाहिए उनको, घर पे इलाज नहीं हो सकता। तो मेरा ये निवेदन है उन परिवारों से कि आप उनको लेके हमारे पास आइए, और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ शुरू होगा जहाँ पर मेडिसिन और काउंसलिंग दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि घर वाले कैसे पहचाने कि मेरा बेटा या घर वाले जो भी इंसान है वो ब्राउन शुगर का नशा कर रहा है। तो इसका एक छोटा सा ये टेक्निक है कि अगर उसके व्यवहार में चेंजेस आ रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो गया, अकेला अकेला रहता है, खाना कम खाता है, हर बात में गुस्सा करता है, तो आप समझ जाइए कि कोई ना कोई व्यवहार में चेंज हो रहा है, और उसका दिनचर्या को नोटिस करना शुरू करिए। आप पाइएगा कि वो परिवार के लोगों से दूर रहने में ज्यादा अपने आप को सेफ महसूस करता। अगर वैसा कंडीशन है तो बिना लेट किए, बिना देर किए तुरंत हमारे पास लेके आइए, निशुल्क इलाज होगा और कहीं ना कहीं हम उसके जीवन को बचा पाएंगे।
2: युवाओं में खासकर, आज युवाओं में नशा का जो सेवन करने का जो चलन चल पड़ा है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। पहले के जमाने में एक उम्र होने तक लोग नशा करते थे और एक नियमित संयमित तरीके से करते, लेकिन आजकल बच्चों से ही ये चीज़ें शुरू हो जा रही है और युवाओं को खासकर ज़्यादा चपेट में ले रही है। तो युवाओं को इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नशे के आदि हो चुके हैं और जिनको देखकर या उनके साथ रहकर वो भी उसमें फंसते चले जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनको कैसे बचना चाहिए?
1: जो हमारे समाज में यंग एडल्ट हैं, जिसको आप युवा कह रहे हैं, ये दूसरे को देख के बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ये टीवी सीरियल में देख रहे हैं, पिक्चरों में देख रहे हैं, जहाँ पर हीरो हीरोइन जो नशा का सेवन कर रहे हैं और इसको देख के आकर्षित हो रहे हैं। अब इनको रोकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसे लोग हमारे अस्पताल में आने से हिचकिचाते हैं। इसलिए हमने एक और नया प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ पर हम स्कूल प्रोग्राम्स, स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस फैला रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जो हमारे मीडिया जो दिखा रहा है, जो मीडिया एक पिक्चर दिखा रहा है नशा का, वो पिक्चर कितना भयानक है, उसका जो असली चेहरा वो हम स्कूल जा जाके या कॉलेजेस जाके दिखा रहे हैं और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें सरकार हमको सहायता भी कर रही है और साथ साथ हमारे क्लिनिक के स्टाफ भी इसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। और अभी जो नया डेटा आया उससे हमें ये पता चला है कि पिछले कुछ दशकों में हम सक्सेस पाया है और कहीं ना कहीं सक्सेस 55% से ज़्यादा है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेटा है। सो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम और ये सब से हम जो है इस समस्या से निजात पाने में कुछ हद तक सक्षम है।
2: बहुत अच्छी बात है और इस तरह के कार्यक्रम चलते रहने चाहिए ताकि लोगों के बीच में जो नशे के प्रति जो रुझान है उसको कम किया जा सके। और कई बार ऐसा देखा जाता है ना कि लोग नशे के इतने आदि हो जाते हैं कि अगर ना मिले तो वो अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं या फिर उनकी जान पर बनाती है। तो नशा इतना भयावह चीज है, कई बार बहुत सारे घर इसके वजह से बर्बाद हो जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अभी अगर देखा जाए तो हम अगर बाजार निकलें या फिर रास्ते में कहीं भी जाएं तो नशे के जो पदार्थ हैं, जो चीज़ें हैं, वो खुलेआम बिक रही हैं। तो लोग कहते हैं कि बिक रही है, मिल रही है, इसलिए हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो लोगों का इस तरह से कह देना और फिर नशे की तरफ चले जाना, ये कहीं ना कहीं खुद को खाई में लेकर डालने की जैसा है। तो ऐसे सूरत में अगर मिलने वाली जो चीज़ें हैं वो ना मिले तो सही बात है कि लोग नशा ना करें, लेकिन मिल रही है, बिक रही है मार्केट में, तो ऐसे कंडीशन में दोनों के बीच में कैसे गैप किया जाए कि लोग नशे से बच जाए और वो जो विक्रेता है तो उसे तो फायदा चाहिए भाई।
1: का जो ये सवाल है बहुत ही खूबसूरत है और हम जहां भी जाते हैं हमें इस सवाल का सामना करना पड़ता है। इसके जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि हमें एक चीज समझना है, डिमांड और सप्लाई का ग्राफ। जितना डिमांड बढ़ेगा सप्लाई उतना बढ़ेगा। हम जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, TCC प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे हम डिमांड कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि अगर मैं आज आपको 1,00,000 रुपए दूं और मैं बोलूं जाके आप एक स्कूटर खरीदिए, आप खरीदना चाहेंगे? नहीं खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उसका डिमांड ही नहीं है। तो इस तरह से अगर हम डिमांड को कम कर देंगे, लोग खैनी गुटखा को लेंगे ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो जो दुकान है वो तो खुद ब खुद उनमें ताला लग जाएगा। तो हम डिमांड पे काम करते हैं, डिमांड पे काम करेंगे, हार्म रिडक्शन पे काम करेंगे, तो ऑब्वियसली सप्लाई जो है कहीं ना कहीं कम होगा
2: और लोग भी इस तरफ जाना कम करेंगे। इसके लिए लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं या फिर सामने वाले के प्रोडक्ट की तरफ खींचे चले जाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
1: क्योंकि ये बहुत सही बात आपने कहा, जो प्रोडक्ट की तरफ वो खींचे चले जा रहे हैं, जो भी गुटखा खैनी

0: ले रहे हैं, क्या कभी उन्होंने सोचा है कि इसका अंतिम स्टेज क्या होगा, अंतिम पड़ाव क्या होगा? मौत।
1: जी,
0: बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें देखा गया है कि जो लोग बहुत नशा कर रहे हैं वो आगे जाके सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रह पाता है, और सुसाइड केस भी बढ़ रहे हैं
1: जी।
0: तो इसलिए हमें लोगों को जागरूक करना है कि अगर आप नशा पे कंट्रोल करेंगे तो जीवन को एक अच्छे दिशा में लेके आप आगे बढ़ सकते हैं।
1: ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर कोई व्यक्ति नशे का बहुत ज़्यादा आदी हो चुका है, उसके जो शारीरिक या मानसिक स्थिति है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, वो अगर आपके पास या फिर किसी भी डॉक्टर के पास जाता है इलाज के लिए, तो क्या वो फिर से वापस एक सामान्य जिंदगी की तरफ जीने के लिए वो फिर से शुरू कर सकते हैं नॉर्मल लाइफ?
0: बिल्कुल कर सकते हैं, अगर उनके अंदर ये चाह होगी कि मुझे सही होना है। तो 80% केसेस में देखा गया है कि वो जो इम्प्रूवमेंट होता है, ऐसे केसेस हमारे क्लिनिक में आते हैं तो हम उनको एडमिट कर लेते हैं अपने पास, एडमिट करके प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में हम इलाज करते हैं और देखा गया है कि इम्प्रूवमेंट होता है। डेफिनेटली 100% में नहीं बोलता हूँ, लेकिन 80% के आसपास तो इम्प्रूवमेंट होती ही है।
1: यानी कि अगर आप में चाह है दोबारा से खुद को खड़ा करके आगे बढ़ने की, नशे के प्रति आप लगाव को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर आपकी इसमें मदद कर सकते हैं।
0: वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह।
1: जी,
0: तो आप चाह लेके आइए, आप एक कदम में बढ़िए, हम एज अ डॉक्टर दो कदम आपके साथ।
1: तो अगर आप नशे के आदी हैं या फिर आप इसी से बाहर निकलना चाहते हैं, डॉक्टर से संपर्क करें पहले। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ट्रीटमेंट इसका बिल्कुल ही मुफ्त और सुचारू रूप से आपकी सेहत के लिए ध्यान में रख के किया जाता है, तो आप सबसे पहले यही काम करें कि डॉक्टर की सलाह जरूर लें, तभी सही तरीके से आप फिर से जिंदगी अपनी जीनी शुरू कर सकते हैं।
0: और बस मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि नशा का जो रास्ता है इसका अंत बहुत ही भयानक है, तो इस रास्ते पे अपना पहला कदम भी आप ना रखें। और अगर आपने पहला कदम गलती से रख दिया है दोस्तों के ग्रुप में आके या किसी कहने पे आके, तो तुरंत हमसे संपर्क करें। हर बुधवार हर शनिवार TCC क्लिनिक में हम मिलते हैं और निःशुल्क इलाज करते हैं, आप आइए हमारे पास, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम सब एक साथ मिलके इस चीज से निजात पाया जा सकता है।
1: आप हमारे बीच में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हमारे श्रोताओं को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो अभी हम बात कर रहे थे भेंटवार्ता में तंबाकू सेवन से होने वाले खतरे और इससे बचाव के क्या उपाय हैं इसके बारे में। भेंटवार्ताकार के रूप में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अभिजीत सिंह। अब बारी है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, और आज हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश के बारे में। हम आपको बताते चलें कि हेनरी कैवेंडिश एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कई अद्भुत खोज किए थे। बहुत शांत, सरल और अध्ययनशील स्वभाव के व्यक्ति होने के साथ साथ इनकी खोजों ने आधुनिक विज्ञान की नींव को और मजबूत करने का काम किया। हेनरी कैवेंडिश का जन्म 10 अक्टूबर सन 1731 को इंग्लैंड के नीस शहर में हुआ था। एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखने के साथ साथ इनके पिता लॉर्ड चार्ल्स कैवेंडिश स्वयं भी विज्ञान में रुचि रखते थे, जिसका प्रभाव हेनरी पर बचपन से ही पड़ चुका था। हेनरी कैवेंडिश बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु बालक थे। इन्हें किताबें पढ़ना और नए प्रयोग करना काफी पसंद था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लंदन में प्राप्त की और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हालांकि इन्होंने डिग्री पूरी नहीं की, लेकिन विज्ञान के प्रति इनका लगाव लगातार बढ़ता रहा। हेनरी कैवेंडिश ने अपना अधिकांश जीवन वैज्ञानिक प्रयोगों और अनुसंधान में ही बिताया। बहुत कम लोगों से मिलते जुलते भी थे और अपना अधिक समय प्रयोगशाला में ही बिताते थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध खोज हाइड्रोजन गैस की खोज को मानी जाती है। वर्ष 1766 में इन्होंने एक विशेष गैस की पहचान की, जिसे इन्होंने ज्वलनशील वायु का नाम दिया। बाद में यही गैस हाइड्रोजन के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये विज्ञान जगत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कैवेंडिश ने यह भी सिद्ध किया कि जब हाइड्रोजन गैस जलती है तो पानी बनता है। इस खोज ने यह समझने में मदद की कि पानी कोई तत्व नहीं बल्कि दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना एक यौगिक है। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी के घनत्व को मापने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। इनका प्रसिद्ध कैवेंडिश प्रयोग आज भी विज्ञान की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रयोग के माध्यम से पृथ्वी के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल को समझने में काफी सहायता भी मिली। इनकी गणनाएं इतनी सटीक थी कि आज के आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से प्राप्त परिणाम भी उनके बहुत करीब पाए गए हैं। यह उनकी प्रतिभा और मेहनत का प्रमाण भी माना जाता है। हमेशा घंटों प्रयोगशाला में काम करते रहते हैं और हर छोटे से छोटे परिणाम को ध्यान पूर्वक लिखते रहते हैं। इनकी सादगी और समर्पण ही

की सफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। हेनरी कैवेंडिश के कार्यों ने रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों को नई दिशा देने का काम किया। इनकी खोजों के कारण वैज्ञानिकों को गैसों के गुणों को समझने में काफी मदद मिली। आज भी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में इनके प्रयोगों का अध्ययन कराया जाता है। हाइड्रोजन की खोज और पृथ्वी के घनत्व का मापन विज्ञान इतिहास की महान उपलब्धियों में गिना जाता है। महान वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश का विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हुए 24 फरवरी सन 1810 ईस्वी को निधन हो गया, लेकिन इनकी खोज और योगदान आज भी विज्ञान की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। इन्होंने ये साबित कर दिया कि शांत स्वभाव और लगातार मेहनत से कोई भी व्यक्ति दुनिया को नई दिशा दे सकता है। तो ये हमने आपको बता दिया वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश के बारे में, और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सोलर पैनल के बारे में। तो वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो पूरे विश्व में अभी ऊर्जा संकट काफी गहरा हो चुका है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे जूझता हुआ दिखाई देता है। और अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को इस ऊर्जा संकट से बचाना चाहते हैं तो हमें अब उस तरफ लौटना होगा जहां हमें सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाने की दिशा में कार्य करने का अवसर मिले और हम दुनिया को एक हरा भरा वातावरण दे सकें। इसके लिए ऐसे समय में सौर ऊर्जा यानी सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा हमारे लिए उम्मीद की नई किरण बनके सामने आई है। सोलर पैनल एक ऐसा उपकरण है जो सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। इसमें कई छोटे छोटे सोलर सेल लगे होते हैं। ये सेल सूर्य की किरणों को अवशोषित करके बिजली बनाने का काम करते हैं। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का धुआं, प्रदूषण या शोर उत्पन्न नहीं होता। यही कारण है कि सोलर ऊर्जा को स्वच्छ और हरित ऊर्जा कहा जाता है। आज बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। गांवों से लेकर शहरों तक हर जगह बिजली की आवश्यकता है, लेकिन कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सीमित है और इनके उपयोग से प्रदूषण भी काफी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सोलर पैनल एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है और भारत जैसे देश में जहां साल भर भरपूर धूप मिलती है वहां सौर ऊर्जा का उपयोग बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। वैसे सरकार भी लोगों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी और आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। तो जिन लोगों ने अब तक सोलर पैनल का इस्तेमाल नहीं किया है या नहीं लगवाए हैं वो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और अपने घर पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। सोलर पैनल में लगे फोटोवोल्टिक सेल पर सूर्य की रोशनी पड़ते ही सक्रिय हो जाते हैं। ये सेल सूर्य की ऊर्जा को डायरेक्ट करंट यानी डीसी बिजली में बदलने का काम करते हैं। इसके बाद इन्वर्टर की सहायता से इसे बिजली में बदल दिया जाता है, जिससे घरों में पंखा, बल्ब, टीवी और अन्य उपकरण चलाए जा सकते हैं। कुछ सोलर सिस्टम बैटरी से भी जुड़े होते हैं, जिससे रात के समय भी बिजली का उपयोग किया जाता है। अब सोलर पैनल के क्या फायदे हैं तो हम आपको बताते चले हैं कि सोलर पैनल के बहुत सारे फायदे हैं। ये प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, बिजली का बिल आपका कम हो सकता है, इसके अलावा दूर दराज गांवों में भी आसानी से बिजली पहुंचाई जा सकती है और इसका रखरखाव अपेक्षाकृत बहुत कम है यानी कि कम खर्चीला है। ये प्राकृतिक संसाधनों की बचत भी करता है। कार्बन उत्सर्जन कम होने से पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आज स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और सरकारी भवनों में भी सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पैनल किसी वरदान से कम नहीं माने जाते। जहां बिजली की सुविधा सीमित है वहां सौर ऊर्जा से घर रोशन किए जा रहे हैं। किसान सोलर पंप का उपयोग करके खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। कई गांव सौर ऊर्जा की मदद से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। बढ़ता प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग हमारे भविष्य के लिए खतरा बन रहे हैं। यदि हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो कोयला, पेट्रोलियम जैसे ईंधनों पर हमारी जो निर्भरता है वो कम होगी। इससे वायु प्रदूषण भी घटेगा और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण भी मिलेगा। सोलर पैनल केवल एक तकनीक नहीं बल्कि स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यदि हर घर, हर स्कूल और हर कार्यालय में सौर ऊर्जा का उपयोग होने लगे तो देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है और इसके लिए हमें भी जागरूक बनकर ऊर्जा की बचत करनी चाहिए और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना चाहिए। तो आज हमने ढेर सारी जानकारी, ढेर सारी बातें आपसे कर ली। अब हमारे स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है, लेकिन जाने से पहले हम यही कहना चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को हम एक अच्छी दुनिया सौंप सके उसके लिए हमें

आज तैयारी करनी होगी, और तैयारी हमें इस तरीके से करनी होगी कि हम एक अच्छी दुनिया आने वाली पीढ़ियों को सौंप सके। तो अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल का ख्याल रखें, और सबसे ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे विज्ञान जगत कार्यक्रम, वाचन एवं सहयोग था बसंत कुमार का, प्रस्तुति प्रभु शरण की। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगला कार्यक्रम जो हर रांची लेकर आएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार रांची। सुनने वाले सभी दोस्तों को रेणु
1: और सुनीता का
0: नमस्कार
1: जोहार।
0: सुनीता, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से।
1: हाँ बिल्कुल।
0: खुद को साबित करना छोड़ें, आज पर ध्यान दें। हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें और तेज दौड़ना है, बेहतर बनना है और दूसरों से आगे निकलना है।
1: लेकिन आपको लगता है क्या कि इस तरह से दौड़ते भागते हम बिल्कुल शांत रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को अंदर से साबित करें और खुद पे ध्यान दें। अपने काम को अगर हम पूरे मन से करते हैं तो तभी सही मायनों में हमारा जीवन जो है ना अर्थपूर्ण लगेगा।
0: सही कह रही हो सुनीता। खुशी बड़ी चीजों में नहीं मिलती बल्कि छोटे छोटे पलों में छिपी रहती है। छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज न करें, तब जीवन ज्यादा संतुलित और महसूस होने लगता है।
1: हाँ बिल्कुल। कहते हैं ना कि बड़ी खुशियों के पीछे भागने से अच्छा है कि हमारे आसपास जो छोटी छोटी खुशियां हमें मिलती है, जिन कामों को करके हमें खुशियां मिलती हैं, हम उन्हें समेटने और सहेजने की कोशिश करें तो हमारा जीवन बहुत ही खुशनुमा और शांतिपूर्वक व्यतीत होगा।
0: तो जीवन का यही सार है और जीवन के हर मोड़ पे आप अपने जीवन को
1: आगे बढ़ाते रहिए, खुशियों के साथ जीते चलिए।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जोहाना जी, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और रेनू जी, क्या बातें करें हम अपने श्रोताओं से, ये बताइए।

0: पूरा झारखंड अभी तो क्या झुलस
1: गर्मी के मार में झुलस रहा है,
0: झुलस रहा
1: यही बोल
0: था,
1: सकते हैं।
0: भीषण गर्मी से जूझ रहे झारखंड को, लेकिन कल मौसम ने थोड़ी राहत दी।
1: थोड़ी राहत कब हुई पता है? कल सवेरे से बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी थी क्योंकि बादल था और जिसकी वजह से मतलब सभी परेशान थे, लेकिन जब सेकेंड टाइम आया, सेकेंड हाफ आया, तो ठंडी हवा चलने लगी, उसके बाद मौसम थोड़ा सा सुकून देने वाला हुआ।
0: हाँ, जिससे बादल में बादल से 2 डिग्री तक पारा जो है नीचे भी गिरा।
1: और अभी जो है ना ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राज्य में 2 जून तक गर्मी से राहत मिलेगी। और बस अच्छी खबर यह है कि लू नहीं चलेगी, इधर जो भीषण लू चल रही थी ना वो नहीं चलेगी।
0: और राज्य में गरज चमक के साथ जो है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है, आज मौसम विभाग का अनुमान है। कई जिलों में वज्रपात की प्रबल संभावना जताई गई है।
1: और एक बात और अपने श्रोताओं को बता दें कि मौसम विभाग ने ये अलर्ट किया है कि झारखंड से 2 टर्फ गुजर रहे हैं, ये उत्तरी बिहार से तेलंगाना तक और उत्तर प्रदेश से ओडिशा तक जा रहे हैं, जिसके चलते वज्रपात और तेज हवा चल रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं, इसलिए आने वाले दिनों में थोड़ी सी लू से राहत रहेगी।
0: और इसके असर से झारखंड के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में तेज हवाएं चल रही हैं।
1: और एक और अच्छी बात ये हो गई है कि इन दिनों में मतलब अभी 2 जून तक तापमान जो है ना थोड़ा कम रहेगा। अभी जो 40 पार जा रहा है वो 33 से 36 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना जताई गई है।
0: अच्छा, तो आज का हमको लगता है अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री
1: रहने की संभावना है। और आज की बात कर ले तो आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो वज्रपात अभी बहुत हो रहा है, इससे थोड़ा बचकर रहना है। और ऐसा अगर लगता है कि आपके शहर के लिए कोई ऐसा अलर्ट जारी किया गया है तो उस दौरान अपने घर से बाहर ना निकलें।
0: ऐसे ही बहुत जरूरत हो तभी अपने घर से बाहर निकलिए।
1: हाँ, ऐसे मौसम में जबकि अलर्ट है मौसम विभाग का वज्रपात का या भारी बारिश का, आंधी तूफान का, तो घर में रहना ही अच्छा होता है और फिर मौसम को एंजॉय करना भी अच्छा होता है।
0: कल शाम तो सही में अच्छा लग रहा था एकदम। हाँ। रांची में जो सूर्यास्त के समय था ना, आसमान पूरा एकदम गेरुआ रंग का।
1: हाँ, और एकदम ठंडी हवा चल रही थी उस समय। मैं भी बाहर थी, घर जा रही थी, तो मुझे गर्मी का एहसास नहीं हुआ। आज सुबह भी जब मैं आ रही थी ना तो मौसम वैसा ही था, हालांकि अभी दिन चढ़ते थोड़ी धूप तो हो गई है, तो मौसम ऐसे ही मिला जुला रहेगा और ऐसे ही खूबसूरत सा बना रहे मौसम जैसा अभी है।
0: तो हवा के साथ
1: साथ हम भी थोड़ा आनंद उठा लेते हैं इस गीत का।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: तो रेनू जी, आज बहुत बहुत खास खास दिन भी है आज।
8: हाँ,
7: लेकिन आज सबसे अच्छी बात है और सबसे अच्छा दिन है कि आज ईद अल अजहा है।
8: हाँ, पाक त्योहार ईद उल अजहा के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को दिली मुबारकबाद।
7: बिल्कुल, और यह त्यौहार जो है ना कुर्बानी का पर्व माना जाता है। यह पाक त्यौहार हमें जीवन में त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता है, और यह त्याग ही वह महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो परिवार, समाज और देश की एकजुटता को कायम रख पाता है।
8: हाँ, तो क्यों ना आज इस पाक त्योहार के अवसर पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम कुर्बानी, मोहब्बत और सद्भाव का जज्बा बनाए रखेंगे और अपने राज्य और राष्ट्र की विविध सांस्कृतिक विरासत को कायम रखने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे।
7: एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं को पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से ईद उल अजहा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।

0: सुनीता बेटी हास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि क्या है आज खास का दिन।
1: आज बेहद खास दिन है रेणु जी। आज है एक महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, समाज सुधारक और हिंदुत्व के प्रमुख विचारक वीर सावरकर की जयंती।
0: हाँ, आज ही के दिन 1883 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ, जो भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ जिन्होंने हिंदुत्व के हिंदू राष्ट्रवादी दर्शन को प्रतिपादित किया।
1: और इनके बारे में अगर हम बातें करें तो क्रांतिकारी संगठन इन्होंने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी और 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की।
0: वे हिंदू महासभा के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे।
1: और नासिक षड्यंत्र मामले में इन्हें अंग्रेजों द्वारा 50 साल के कठोर कारावास की सजा, या जिसे काला पानी की सजा दी गई थी, और उन्हें अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल भेजा गया था।
0: उन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सशस्त्र क्रांति के लिए भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए में केंद्रीय भूमिका निभाई थी,
1: और उन्होंने जेल में रहते हुए हिंदुत्व की विचारधारा को विकसित किया और मित्र मेला जैसे संगठनों की नींव रखी।
0: और वीर सावरकर एक वकील, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। उन्होंने भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व का शब्द गढ़ा,
1: और सामाजिक सुधार में उन्होंने छुआछूत का विरोध किया और जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए कई कार्य किए।
0: उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यवहारवाद और यथार्थवाद के तत्व थे।
1: हाँ बिल्कुल, और ऐसे ही महान विभूतियों का ही उनकी ही देन है कि आज हमारा देश जो है ना वो बिल्कुल विश्व पटल पर विख्यात है। और बहुत अच्छी विचारधारा के साथ इन्होंने जो भी संदेश और उपदेश दिए हैं उनका भी आज लोग सम्मान करते हैं। और बात अपने देश की हो रही हो तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है ना, उनके ही अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज हम भारत जैसे देश में रहते हैं और बहुत अभिमान के साथ रहते हैं। और पूरी दुनिया में भारत विश्व पटल पर अपना एक स्थान रखता है और पूरी दुनिया के लोग जो है ना भारत को देखने आना चाहते हैं।
0: हाँ, हम लोगों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है और उनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है।
1: हाँ।

0: आज के दिन जानती है सुनीता?
1: आज के दिन की हम बात कर रहे हैं तो आज के दिन ही क्या होगा बताइए आप।
0: हाँ भाई, विश्व स्तर पर मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जा रहा है।
1: हाँ, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस और विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस आज हम मना रहे हैं। और इसको मनाने का उद्देश्य यह है कि महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और इसीलिए हर दिन हर साल ये मनाया जाता है।
0: हर साल 28 मई को मनाया जाने वाला महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और उनके अधिकारों की रक्षा करना है।
1: और बात कर ले अगर हम मेंसुरेशन की यानी मासिक धर्म की, तो आज भी इस रूढ़ीवादी बहुत बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन समय बहुत बदल चुका है और लोगों को ये बताना जरूरी है कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसको लेके कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी स्वच्छता का ख्याल रखना है, हाइजीन का ख्याल रखना है। और मुझे तो लगता है ना रेणु जी, लगता है क्या, आजकल ये तो सिलेबस में शामिल हो चुका है। बच्चों को छोटे समय से ही बच्चियों को इसके बारे में बताया जाता
0: है, कहा जाता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा की जानी चाहिए।
1: बिल्कुल, हर मुद्दे पे खुलकर चर्चा की जाना चाहिए। और क्योंकि ये विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस जो हम मना रहे हैं, इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि आज भी सुदूर गांवों में बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं जिनसे लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो शायद इन्हीं सब बातों को लेकर जो अवधारणाएं आज समाज में आज भी रह गई हैं, उन्हें दूर करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है।
0: और ये जो महिला, उस पे तो और भी हम लोग बातें करेंगे। और एक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस जो मनाए जा रहे हैं उसमें है सुरक्षित मातृत्व और प्रजनन अधिकारों का वकालत करना है। इसकी शुरुआत पहली बार 1987 में कोस्टा रिका में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान घोषित किया गया था।
1: और इस दिन का महत्व ये है कि महिलाओं को अपने शरीर और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, जिसे यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार कहा जाता है।
0: और महिलाओं के, जैसे महिलाओं को खुलकर चर्चा करनी चाहिए स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, मासिक धर्म की स्वच्छता है, और रजोनिवृत्ति पर खुलकर अपने परिवार से, डॉक्टर से बात करनी चाहिए।
1: हाँ, और महिलाओं का स्वास्थ्य न केवल उनके अपने जीवन के लिए बल्कि पूरे परिवार और समाज के विकास के लिए भी अत्यंत जरूरी है, क्योंकि अगर महिलाएं स्वस्थ नहीं होंगी ना तो घर परिवार संभालना
0: हिल जाता है।
1: बिल्कुल, एक दिन भी अगर आप बीमार पड़ जाओ ना तो पूरा घर देखोगे परेशान रहता है कि अब काम कैसे होगा। तो बात काम की नहीं है, बात स्वास्थ्य की है, तो स्वस्थ रहना जरूरी है।
0: और भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। जननी सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, आयुष्मान भारत है, घर की, समाज और परिवार की नींव है महिला, आप स्वस्थ हैं तब सब स्वस्थ और खुश है।
1: बिल्कुल सही बात है। और बात कर रहे हैं हम आज के दिन की, तो आपने जब, मैंने शुरू में ही कहा था ना कि आज भी समाज में कुछ रूढ़िवादिता है मेंसुरेशन को लेके, आज भी लोग किसी किसी समाज में आज भी छुआछूत की भावना रहती है, तो इन सब बंधनों को तोड़ना जरूरी है। ये सारे नियम पुराने हैं और ये बिल्कुल गलत धारणा को स्थापित करते हैं, इसलिए मुझे तो लगता है ना कि
0: साफ सफाई पर ध्यान दीजिए,
1: बस थोड़ा हाइजीन पे ध्यान दीजिए और जागरूक रहिए। और जो छोटी बच्चियों है ना, उनको भी क्लास 5 या 6 है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, पढ़ाई होती है स्कूल में, बताया भी जाता है। तो आजकल के बच्चे अब नॉर्मल होते हैं, पहले की तरह परेशान नहीं होते, और वैसे भी ना आजकल के बच्चे कोई नियम मानने वाले नहीं है, इसलिए सारे नियम तोड़ के आराम से वो खुशी खुशी सभी चीजों को एंजॉय करते हैं।

0: इतिहास के पन्ने और पलटते हैं और जानते हैं आज के दिन घटित घटनाएं के बारे में।
1: हाँ हाँ, तो सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को बताएं कि आज के दिन यानी 28 मई 2008 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत 5 न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया और साथ ही विमान सेवा जेट एयरवेज को मध्य एशिया सर्वश्रेष्ठ चर्गो एयरलाइंस का पुरस्कार मिला।
0: और 2008 में ही नेपाल में 240 साल पुरानी राजशाही का अवसान हुआ। और इतिहास के पन्ने में और जानते हैं कि आज के दिन
1: अभी और भी इतिहास में कुछ कुछ बातें हैं, जैसे ये 2000 में आज ही के दिन भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए 6 दिनों की राजकीय यात्रा पर पेइजिंग पहुंचे थे। और 28 मई 1998 को बलूचिस्तान की चंगाई पहाड़ियों पर पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए। परमाणु परीक्षण के विरोध में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने पाकिस्तान के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाया। और बात कर लेते हैं आज जन्म लेने वाले लोगों के।
0: हाँ, तो 1915 ईस्वी में गोपाल रामानुजम का जन्म हुआ, जो जाने माने समाज सेवक थे। 1921 ईस्वी में महंत अवैद्यनाथ और डीवी परुस्कर का जन्म हुआ। डीवी परुस्कर प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे।
1: हाँ, और 1915 में गोपाल रामानुजम भारतीय राजनीतिज्ञ, जाने माने समाज सेवक और भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के सह संस्थापक थे, उनका भी जन्म हुआ था।
0: और 1940 ईस्वी में प्रयाग शुक्ल का जन्म हुआ, जो हिंदी के कवि, कला समीक्षक, अनुवादक और कहानीकार हैं।
1: भारत के प्रथम लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष, उनका जन्म भी आज ही के दिन 1952 में हुआ था।
0: और 1969 ईस्वी में प्रतिमा भौमिक का जन्म हुआ।
1: और एक नजर डाल लेते हैं उन पर जो आज हमारे बीच नहीं रहे
0: हैं। तो देते हैं श्रद्धांजलि और उन महापुरुषों को जो आज हम सबके बीच नहीं है।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: 1954 ईस्वी में आज के दिन विजय सिंह पथिक का निधन हुआ, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
1: 2005 में आज के दिन गोपाल प्रसाद व्यास, भारत के प्रसिद्ध कवियों, लेखकों और साहित्यकारों में से एक थे, उनका निधन हुआ।
0: और 1964 ईस्वी में महबूब खान का निधन हुआ, जो भारतीय सिनेमा इतिहास के निर्माता, निर्देशक थे।
1: और उनकी बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत मुख्य फिल्में हैं, जैसे मदर इंडिया, आन, अंदाज, अनमोल घड़ी, अमर, ऐसे ही न जाने कितने फिल्मों के वो निर्देशक रहे हैं। और उनके फिल्मों के गीत आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े होते हैं। एक बहुत ही पुराना खूबसूरत सा गीत हम सुनते हैं।

0: और इतनी बातें हो रही हैं रेणु जी, तो लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ी सी बातें हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि भीषण गर्मी में ये सतर्क रहने की ज़रूरत है। और शरीर पर ना गर्मी का बहुत बुरा असर होता है, तो थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हम अपने श्रोताओं को बता दें कि किस तरह गर्मी हमारे शरीर पर असर डालती है और हमें कैसे उनसे बचना है।
1: जैसे हृदय पर जो है डिहाइड्रेशन के कारण खून गाढ़ा होने लगता है, ऐसे में जो लोग पहले से दिल की बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें हार्ट अटैक आने की खतरा काफ़ी बढ़ जाता है।
0: और बात कर ले WHO की वार्निंग की, कि तो इन्होंने कहा है कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार भीषण गर्मी और 45 डिग्री या उससे अधिक का तापमान शरीर पर खतरनाक असर डालता है। जैसा कि आपने बताया कि हृदय को प्रभावित करता है, वैसे ही त्वचा को भी प्रभावित करता है। 45 डिग्री में पसीना तेजी से सूखता है कि शरीर को ठंडक नहीं मिल पाती, लू लगने पर पसीना बंद हो जाता है और त्वचा गर्म हो जाती है।
1: और मस्तिष्क में मौजूद हाइपोथैलेमस शरीर को थर्मोस्टेट है जो तापमान को नियंत्रित करता है। लू लगने की स्थिति में यह थर्मोस्टेट काम करना बंद कर देता है, जिससे दिमागी संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है।
0: गर्मी की वजह से शरीर का शायद ही कोई हिस्सा है जो प्रभावित ना होता हो। बात कर ले फेफड़े की, तो गर्म और शुष्क हवा फेफड़ों के रास्तों को सिकुड़ सकती है, जिससे अस्थमा या सांस के मरीजों की तकलीफ बहुत बढ़ जाती है।
1: और मांसपेशियों की बात करें तो पसीने के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स निकलने से मांसपेशियों में ऐंठन होती है
0: और पसीने के रूप में शरीर का ज्यादातर पानी बह जाता है, तो गुर्दों के पास छानने के लिए पर्याप्त लिक्विड नहीं बचता है। लंबे समय तक पानी न मिलने के कारण भीषण गर्मी में गुर्दे काम करना बंद कर सकते हैं। तो ये तो हो गई गर्मी का शरीर पर हमारे असर, लेकिन इससे बचने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। गर्मी अगर है तो लिक्विड डाइट खाएं, ठंडे चीजों का सेवन करें, दही छाछ मट्ठा सत्तू इन सब चीजों को अगर आप
1: नारियल पानी,
0: हाँ, मतलब हमारा जो देसी चीज है ना वो बहुत पर्याप्त है।
1: और कुछ नहीं तो ये घर से जीरा पीसकर और सौंफ और मिश्री पीस के रखें और थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और हल्का चीनी या मिश्री में बना के पीजिए, बहुत ही अच्छा, पेट के लिए बहुत अच्छा है।
0: कहते हैं ना कि भगवान ने हर मौसम के अनुसार हमें खाने के लिए बहुत कुछ दिया है जिनसे उस मौसम में हम सुरक्षित रह सकते हैं। अभी कच्चा आम केरी आ रहा है, आम भी आ रहा है, लेकिन केरी जो आ रही है उसका आम पक्का बना पीजिए, आपका शरीर भी ठंडा रहेगा, आपके शरीर में पानी की कमी होगी। और घर से बाहर निकलते हैं ना तो अपने साथ पानी की बोतल, और कोशिश करिए तो इलेक्ट्रोल या ORS का कोई भी घोल या कुछ ऐसी चीजें, कुछ नहीं तो सत्तू घोल कर निकल सकते हैं। आप इन सब चीजों को अगर आप पीते हैं ना तो गर्मी से आप बच सकते हैं।
1: तो घर से निकलते पेट में पेट भरा होना चाहिए,
0: बिल्कुल पानी भी पूरा भरा होना
1: जिससे
0: चाहिए,
1: वो पेट भरा होना चाहिए। और तो आप लोग स्वस्थ रहिएगा, तभी हम लोग भी,
0: हाँ तभी हमें भी अच्छा लगता है ना। अगर आपको सुनने को मिले कि लू से पूरा शहर परेशान है, इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश हम अपने स्तर से कर सकते हैं कि जितना चाहें बच सकते हैं, और अपने शरीर की तासीर को ठंडा रखने की कोशिश करिए, दोनों टाइम नहाइए। और देखिए समय बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है, चलते चलते एक अच्छी खबर दे देते हैं कि IPL में ना कल हमारे जो बहुत छोटे से महान क्रिकेटर अभी उभर कर आ रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, उन्होंने गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतने छक्के कल उन्होंने मारे कि उनका रिकॉर्ड टूट गया, और हमें लगता है कि बहुत ही जल्द जो सूर्यवंशी है ना हमें इंडियन टीम में देखने को मिलेंगे। हम उनके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इस कार्यक्रम से आज अब हमें जाने की इजाजत लेनी होगी क्योंकि समय बहुत कम है, और हम अपने श्रोताओं से कहते हैं नमस्कार
1: जोहार, और इस गाने का आनंद लेते हुए,
0: बिल्कुल इस गाने का आनंद लेते हुए।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, नमस्कार। शुरुआत करते हैं फिल्म अभिमान के इस गीत से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत वर्ग किया एसटी बर्मन ने। इस गीत को सुनना चाहा है डेहरी उनसोन रोहतास बिहार से, सुरभि निधि विधि संगीता रौनक, ममता तनु शिप्रा मंदाकिनी और उनके ढेरों साथी। तो आइए आप सबके पसंद से सुनते हैं फिल्म अभिमान से ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गाना आप श्रोताओं के नाम। अहमदाबाद से आभा, सरोज मनीष, साहिल ऋषिन, लोकेश और उनके ढेरों साथी, धुरवा से सरिता, सौम्या, खुशी, भोलू बाबू, टुक टुक, चेपाकला बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, सविया ठाकुर, मंजू ठाकुर, विकास, आशा देवी, अनुराधा, रुक्मणी, प्रियंका, दीपिका और घर के सारे सदस्य, आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म चुपके चुपके से। ये गाना लता मंगेशकर की आवाज है, शब्दों में पिरोया है आनंद बख्शी ने, संगीतवत किया HD बर्मन ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। अगला गीत सुनना चाहा है पटना से अर्चित, मनीष, श्वेता और अनु। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिर मिली से ये गाना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की है, शब्दों में पिरोया है योगेश ने, संगीतवत किया एसटी परवन ने।

कार्यक्रम का अगला गाना आप श्रोताओं के नाम गया से विजया अमन प्रतिमा शैलेश गुड़िया खुशी और घर के सारे सदस्य पटना से सुनीता इंदु उमंग अटल गगन मगन और घर के सारे सदस्य नरकोपी बाजार नामकुम से नरकोपी बाजार से फैजुल आलम नौसाद आलम खुर्शीद आलम और गुड़िया और पप्पू आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म आप आए बाहर आई से ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है।

चलते चलते कार्यक्रम का आखिरी गाना आप श्रोताओं के नाम। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, चांदनी नाज। ग्राम करीगरी से पवन कुमार गुप्ता, मुकेश गुप्ता, प्रवीण कुमार, जयंती कुमारी, संध्या कुमारी, निक्की, प्रिंस, मौसमी और घर के अन्य सदस्य। ग्राम मुरुबंदा से कृष्ण कुमार, मनोज कुमार, रीना, पिंकी, संजू, मंजू, सोनी, गीता, सीता और उनके सारे साथी। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म एक मुट्ठी आसमान से ये गाना। किशोर कुमार की आवाज़ है। इंदिवर ने इस गीत को लिखा, संगीतबद्ध किया मदन मोहन ने।

इसी गीत के साथ फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यही समाप्त होता है। नमस्कार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: बहनों, छोटी छोटी खुशियां हो तो जीने का सहारा बनती है, लेकिन ख्वाहिशों का क्या है, वो तो रोज बदलती है। और हम हर दिन चाहते हैं कि हमारी सखियां नित नई बदलती जाएं और रोज बढ़ती जाएं। तो कार्यक्रम गृहलक्ष्मी को आज लेकर हाजिर हैं, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका, आप सबकी अपने ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और आशा है आप सभी बहनें स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी और अपने परिवार के साथ खुशियों भरे पल बिता रही होंगी। कार्यक्रम के सफर में आज मैं हूँ शिल्पी और आज हमारे साथ एक और भी सखी हैं।
1: बहनों, मैं हूँ रानी और हम दोनों हाजिर हैं कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में कुछ ऐसी बातों जानकारियों के साथ जो हमारे जीवन से जुड़ी हैं, हमारे घर से जुड़ी हैं और कहीं ना कहीं हमारे आने वाले कल से भी जुड़ी हैं।
0: बिल्कुल बहनों, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी तरह छोटी छोटी बचत से हम बड़े बदलाव ला सकते हैं अपने जीवन में। और इसके लिए ज़रूरी है कि छोटी छोटी लेकिन अच्छी आदतों को अपने साथ अपने जीवन में आजमाना और अपनाना।
1: बिल्कुल सही कहा शिल्पी, क्योंकि अच्छे विचार और अच्छी आदतें जीवन को सुंदर बना देती हैं बहनों। कभी एक मुस्कान घर का माहौल बदल देती है तो कभी छोटी सी समझदारी पूरे परिवार के लिए बड़ी राहत बन जाती है।
0: बिल्कुल, और रानी ने इसलिए बात कही आपसे कि रानी हर बात पे मुस्कुराती है। सखियों, आपको मैं बता दूं, और घर को संवारने में महिलाओं की छोटी छोटी कोशिशें कितनी बड़ी भूमिका निभाती है ये हम सभी जानते हैं। कभी बचत के रूप में, कभी व्यवस्था के रूप में, तो कभी बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के रूप में।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शिल्पी, और मैं तो चाहूंगी कि आपके साथ साथ हमारी सखियां भी मुस्कुराए।
0: बिल्कुल,
1: और यही छोटी छोटी आदतें हमारे आने वाले कल को भी सुंदर बनाती हैं बहनों। जैसे घर में हर चीज का सही उपयोग, जरूरत के अनुसार खर्च और संसाधनों को संभाल कर रखना।
0: बिल्कुल, और आज के समय में जब बिजली, पानी और ईंधन की बढ़ती खपत हमारे पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए चुनौती बनती जा रही है बहनों, तब एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा। ऊर्जा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सभी हमारे जीवन को आसान बनाते हैं बहनों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग भविष्य में कितनी बड़ी समस्या बन सकती है?
0: बहुत गंभीर बात रानी तुमने कही, इसलिए आज आवश्यकता है कि हम ऊर्जा की बचत को केवल खर्च कम करने का तरीका न समझे बहनों, बल्कि इसे अपनी जिम्मेदारी भी माने।
1: हाँ, और आप सब यानी घर की महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं। यदि वे चाहें तो घर में ऊर्जा बचत की आदत आसानी से विकसित की जा सकती है, जैसे
0: और बहुत छोटे छोटे रूप में, जैसे कि आवश्यकता न होने पर पंखे, लाइट, बिजली के उपकरण को बंद कर दें, एलईडी बल्ब का उपयोग करना और दिन के समय प्राकृतिक रोशनी का अधिक उपयोग करना। और बहनों, ये छोटी छोटी आदतें तो हैं लेकिन बड़ी मतलब समस्या बन जाती है। जब हम अगर हमारे घर में बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तब पता चलता है कि भाई हमने क्यों बेवजह के बिजली जला दिए।
1: बिल्कुल, खाना बनाते समय गैस का सही इस्तेमाल करना, पानी और बिजली दोनों की फिजूल खर्ची रोकना, ये छोटे छोटे कदम न केवल पैसे की बचत करते हैं बहनों बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल बहनों, जरा सोचिए कि अगर हर घर एक छोटी सी पहल करे तो कितनी ऊर्जा बचाई जा सकती है, और जब ऊर्जा बचेगी तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, जिससे आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको एक बेहतर जीवन मिल सकता है।
1: बिल्कुल, और जब बात घर परिवार के भविष्य की हो तो महिलाएं सबसे पहले आगे आती है ना शिल्पी?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: घर में सुख समृद्धि बचत के साथ साथ समझदारी से भी आती है बहनों। और घर को संभालते संभालते महिलाएं जाने अनजाने कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा जाती हैं।
0: बहुत सही बात, और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर समझदारी से पूरा घर व्यवस्थित बना देती हैं। और ये समझदारी तब और सुंदर लगती है जब हम घर में बिजली, पानी और रसोई गैस जैसे चीज़ों को सोच समझकर हम उपयोग करते हैं। आखिर संसाधन जितने बचेंगे हमारा भविष्य उतना ही सुरक्षित और सुंदर बनेगा।
1: बिल्कुल सही कहा शिल्पी, क्योंकि समझदारी वही है जहाँ हम अपने आज को भी बेहतर रखें और आने वाले कल का भी ध्यान रखें।
0: और यही सोच हर घर को और मजबूत बनाती है, जहाँ छोटी छोटी सावधानियाँ बड़े सपनों को सुरक्षित करती है।
1: बिल्कुल सही। याद रखें बहनों, ऊर्जा की बचत करना हमारी जरूरत ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है, ताकि हमारा भविष्य सुंदर और सुरक्षित बन सके।
0: बिल्कुल रानी, और तुमने जिम्मेदारी की बात कही तो एक जिम्मेदारी और है कि हम अपनी सखियों को ले चलते हैं संगीत की दुनिया में।
2: उठ सबके कदम, देखो रम पम।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: पर्सनल लोन ऑफर
8: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
7: फ्री ट्रिप टू दुबई
8: ये भी ब्लॉक? कितना ब्लॉक करूं यार?
9: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
8: तो क्या करूं?
9: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
8: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
9: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
10: बहनों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और आज मैं हूँ शिल्पी और हमारे साथ हैं
11: बहनों, मैं हूँ रानी। और अब आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता, महिला पर्यटकों के लिए कैसे सुरक्षित हो पर्यटन, इस विषय पर आज हमें जानकारी दे रही हैं मीना सिन्हा और इनसे बात कर रही हैं रेडियो सखी शिल्पी।
12: सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर बेहद लोकप्रिय है और जब बात हम पर्यटन की करते हो तो याद आ ही जाती है। सखियों, गर्मी की छुट्टी में घूमना फिरना, नई जगहें देखना और नई संस्कृति को जानना हर किसी को पसंद है, लेकिन यात्रा केवल आनंद का विषय नहीं बल्कि सुरक्षा और सतर्कता का विषय है। सुरक्षित वातावरण, सही जानकारी और जागरूकता महिलाओं की यात्रा को न केवल आसान बनाती है बल्कि यादगार भी बनाती है। इस महत्वपूर्ण विषय पर हम जानेंगे कुछ खास बातें आज अपने मेहमान से। आप हैं मीनू मीना सिन्हा, वरिष्ठ कवित्री हैं, साथ ही साथ अपना देश घूमने का शौक भी रखती हैं और फिर उसे अपनी कविताओं में ढालती हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। नमस्कार।
13: नमस्कार शिल्पी जी।
12: मैम, सबसे पहला सवाल है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन क्यों जरूरी है?
13: इस प्रश्न के उत्तर में शिल्पी जी, मैं यह कहना चाहूंगी कि पर्यटन केवल घूमने फिरने का माध्यम नहीं है बल्कि ज्ञान, आत्मविश्वास और अनुभव तथा मानसिक प्रसन्नता का भी स्रोत है। नई जगहों को देखना, विभिन्न संस्कृतियों को समझना और प्रकृति के निकट जाना मनुष्य के व्यक्तित्व को व्यापक बनाता है। आज महिलाएं शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में उनका स्वतंत्र रूप से यात्रा करना भी स्वाभाविक एवं आवश्यक है। किंतु प्रश्न यह उठता है शिल्पी जी कि क्या महिलाएं हर स्थान पर स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं?

0: बिल्कुल
1: दुर्भाग्य से आज भी अनेक महिलाएं यात्रा के दौरान असुरक्षा, छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार, धोखाधड़ी और मानसिक भय जैसी समस्याओं का सामना करती हैं। यही कारण है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन आज समय की बड़ी आवश्यकता बन गया है। वास्तव
0: जी
1: में किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वहां महिलाएं कितनी स्वतंत्र और सुरक्षित हैं। यदि महिलाएं निर्भय होकर यात्रा कर सकें, तो यह केवल उनकी जीत नहीं होगी, बल्कि पूरे समाज की प्रगति होगी।
0: जी बहुत अच्छी बात आपने कही मैम। कोई महिला अकेले अगर यात्रा करें तो किन-किन सावधानियों को अपनाना चाहिए?
1: जी शिल्पी जी, ये आपका प्रश्न सावधानियों के विषय में प्रासंगिक है। जब हम अकेले यात्रा कर रहे हैं, तो थोड़ी सी समझदारी हमारी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बना सकती है।
0: जी
1: और यह सबसे पहली सावधानी है, यात्रा की योजना पहले ही पूरी योजना बना लेनी चाहिए। जिस स्थान पर जाना हो, वहाँ की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। वहाँ का मौसम, स्थानीय भाषा, परिवहन व्यवस्था, होटल तथा आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी होने से हम अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। और देखिए, यात्रा के दौरान हमेशा विश्वसनीय साधनों का ही उपयोग करना चाहिए। चाहे हम होटल, टैक्सी या वाहन की बुकिंग कर रहे हों, हमेशा अधिकृत और भरोसेमंद माध्यमों से करें।
0: बिल्कुल
1: अनजान व्यक्तियों पर तुरंत विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अपनी व्यक्तिगत जानकारी भी किसी से साझा करने में बचना चाहिए।
0: जी मैम, डिजिटल सुरक्षा यात्रा में कैसे मदद करती है इसके बारे में बताइए हमारे श्रोता सखियों को।
1: जी बता रही हूँ, वर्तमान समय डिजिटल युग का समय
0: जी
1: है ना शिल्पी जी?
0: बिल्कुल
1: तो आज सब कुछ डिजिटल ही हो गया है। अब भी हम यात्रा की योजना बनाने से लेकर टिकट बुक करने, होटल आरक्षित करने, ऑनलाइन भुगतान करने, गंतव्य तक पहुंचने में मोबाइल फोन और इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका हम देख रहे हैं। है, तकनीक ने यात्राओं को सुविधाजनक और तेज बनाया है। इस कारण डिजिटल सुरक्षा का महत्व बढ़ गया है। अब हम ये सारे बुकिंग्स मोबाइल ऐप और वेबसाइटों के माध्यमों से करते हैं। डिजिटल सुरक्षा हमें फर्जी वेबसाइटों और धोखाधड़ी से बचाती है। अधिकृत प्लेटफॉर्म से यदि हम उपयोग करते हैं उनका, तो यह आर्थिक नुकसान की संभावना बहुत कम हो जाती है। हमारे यात्रा के दौरान मोबाइल फोन एक सुरक्षा साथी की तरह काम करता है। जीपीएस और मैप की सहायता से लोग सही रास्ता खोज सकते हैं,
0: जी
1: अनजान स्थानों में भी आसानी से पहुंच सकते हैं। लोकेशन शेयरिंग की सुविधा परिवार और मित्रों को हमारी स्थिति की जानकारी देती रहती है, जिससे आपात स्थिति में सहायता मिलना आसान हो जाता है।
0: अगला सवाल, परिवार और समाज महिलाओं की सुरक्षित यात्रा में कैसे सहयोग कर सकते हैं इसके बारे में बताइए हमारे श्रोता सखियों को आप।
1: जी धन्यवाद, आपका प्रश्न बहुत सटीक है। और महिलाओं को सुरक्षित यात्रा में ये पॉइंट्स अवश्य ही मदद करेंगे। सबसे पहले, परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अक्सर देखा जाता है, हम अपने घर परिवार में देखते हैं, लड़कों की तुलना में लड़कियों की यात्राओं को लेकर हर हमेशा आशंकाएं व्यक्त की जाती है। सावधानी आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक भय और रोक टोक महिलाओं के आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। परिवार को चाहिए कि वे बेटियों और महिलाओं पर विश्वास करें, उन्हें सही मार्गदर्शन दें और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। परिवार जी, परिवार महिलाओं को यात्रा संबंधी आवश्यक जानकारी, डिजिटल सुरक्षा, आपातकालीन सहायता और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक कर सकता है। नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए जब हम यात्रा कर रहे हों, महिलाएं यात्रा कर रही हैं, आवश्यक नंबर उपलब्ध कराए जाएं और भावनात्मक सहयोग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: समाज की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाएं तो अनेक समस्याएं स्वतः ही कम हो जाती हैं। ये हम लोग देखते हैं दिनानुदिन इधर उधर यात्रा के दौरान महिलाओं को घूरना, अनावश्यक टिप्पणी करना या असहज महसूस कराना केवल असभ्यता नहीं बल्कि असुरक्षा का कारण भी बनता है। समाज को यह समझना होगा कि महिलाओं का स्वतंत्र रूप से यात्रा करना उनका अधिकार है, कोई असामान्य बात यह नहीं है। स्थानीय नागरिक, होटल कर्मचारी, वाहन चालक और पर्यटन से जुड़े लोग यदि संवेदनशील और सहयोगी व्यवहार करें तो महिला यात्रियों का आत्मविश्वास बढ़ता है।
0: जी मैम, आप अलग अलग राज्यों में घूमती हैं, बहुत घूमने की शौकीन हैं, तो आप चलते चलते आप हमारी श्रोता सखियों से क्या कहना चाहेंगी ये बताइए।
1: चलते चलते मैं अपनी सभी सखियों से यही कहना चाहूंगी, जीवन एक यात्रा है और हर महिला को अपने सपनों के साथ आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। यात्रा करें, दुनिया देखें, नए अनुभव प्राप्त करें, लेकिन हमेशा सजग और आत्मविश्वासी और सुरक्षित रहें। अपने भीतर के भय को अपने सपनों पर हावी न होने दें। सावधानी को अपनी शक्ति बनाइए, कमजोरी नहीं। डिजिटल सुरक्षा, आत्मरक्षा और जागरूकता, ये सारे सही निर्णय हमारे सबसे बड़े साथी हैं। परिवार और समाज का सहयोग महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे अधिक आवश्यक है स्वयं पर विश्वास। जब महिलाएं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती हैं, तो वे केवल अपनी राह नहीं बनाती बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नए रास्ते खोलती हैं। याद रखिए, सुरक्षा केवल डर कर रुक जाने में नहीं बल्कि समझदारी और साहस के साथ आगे बढ़ने में है। इसी संदेश के साथ आप सभी को सुरक्षित, सुखद और प्रेरणादायक यात्राओं की शुभकामनाएं। धन्यवाद शिल्पी जी।
0: बहुत अच्छे मैम, आपने बहुत सुंदर और रोचक अनुभव साझा किया हमारे साथ। सच, हमारा देश ऐसा ही है, बहुत खूबसूरत। भारत की धरती रंग बिरंगी संस्कृति से सजी हुई है, तभी तो विविधताओं में एकता वाला भारत सबको अपनी ओर खींचता है। मैम, आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमारे कार्यक्रम के लिए दिया, निकाला और अपने अच्छे अनुभव बताए कि कैसे पर्यटन सुरक्षित हो, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, महिला पर्यटकों के लिए कैसे सुरक्षित हो पर्यटन, इस विषय पर। आज हमें जानकारी दे रही थी मीनू मीना सिन्हा और इनसे बातचीत कर रही थी आपकी रेडियो सखी शिल्पी।
3: और बहनों, इतनी खूबसूरत जानकारी के बाद अब ऐसा लगता है कि भाई पर्यटन तो हम करने अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम गीत के माध्यम से सैर तो जरूर कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो बहनों, अब पहाड़ों की दुनिया से निकलकर आते हैं अपने कार्यक्रम की ओर, बढ़ते हैं कुछ जानकारियों की ओर। और आज हम जानकारी आपसे साझा करेंगे महिला ई हार्ट योजना। तो बहनों, आज की महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपनी मेहनत और हुनर से परिवार की मजबूती भी बन रही हैं। आज महिलाएं घर की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ अपने हुनर को अपनी पहचान बना रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा शिल्पी। कोई स्वादिष्ट अचार बनाती हैं, कोई सिलाई कढ़ाई में निपुण है, तो कोई हस्तशिल्प और सजावटी सामान तैयार करती हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है बहनों कि अब महिलाओं के इस हुनर को घर की चार दीवारी तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है,
0: क्योंकि अब समय बदल रहा है रानी और तकनीक ने नए रास्ते खोल दिए हैं। और इसी दिशा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए एक सुंदर पहल की गई है, महिला ई हार्ट योजना।
1: हाँ बहनों, महिला ई हार्ट योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है,
0: जिसका उद्देश्य है बहनों के महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और एनजीओ को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को ऑनलाइन बेचने में मदद करने, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
1: हाँ बहनों, आसान शब्दों में महिला ई हाट योजना एक ऐसा ऑनलाइन मंच है जहां महिलाएं अपने बनाए हुए सामान जैसे कपड़े, हस्तशिल्प, घरेलू उत्पाद, अचार, पापड़, ज्वेलरी या अन्य चीजों को सीधे ग्राहकों तक पहुँचा सकती हैं।
0: बिल्कुल। और रानी, धीरे धीरे अब हमारे कार्यक्रम का जो समय है वो संपन्न होता है, तो हम फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ, बहनों से लेंगे इजाजत। लेकिन आज बता दें कि कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो नूतन प्रसाद की थी, और कार्यक्रम के सफर में हम दो सखियां, मैं शिल्पी
1: और मैं रानी, हमें दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
3: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
3: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
3: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
3: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
3: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है।
2: जी,
3: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
3: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
2: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
3: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने।
3: जी,
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
3: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
3: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
3: जी, ये बात तो है।
2: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
3: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
2: जी
3: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
2: जी अजीत जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्मय को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए।
4: आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
5: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
4: तो कोई बड़ा है घर में?
5: हाँ, घर पर माता जी है ना।
4: जी बुलाइए।
6: माँ।
3: हाँ।
6: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
4: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
3: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखूं तो।
6: माँ, माँ।
7: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
3: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
7: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
3: हाँ।
7: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
6: अरे वाह,
3: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
6: ऐसे नहीं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
7: अरे योगेंद्र।
3: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
7: हाँ माँ।
5: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
3: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर। ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
5: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा। अच्छा। रसगुल्ला बनेगा। बर्फी मिलेगी खाने को।
2: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
1: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
2: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
1: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
2: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी।
1: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
2: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
1: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और

0: विकल्प नहीं था। उनके प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
1: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
2: जी साहब।
1: चलो, हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलो साथियों।
0: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हथगोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की

0: आज्ञा दी गई।
1: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
1: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आरएस रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगतोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देशभर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu has urged the police in the country to become more citizen-centric and sensitive while dealing with people, especially women, the poor and children. President Murmu was addressing the gathering after conferring the prestigious President's Police Gala on the Sikkim police during Alankaran parade held in Gangtok.
3: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
2: Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the ULAS, Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that re-evaluation process will now begin after certain issues have come to light regarding the CBSE Class 12th examination evaluation process. Speaking to media after the meeting with CBSE officials in New Delhi, Mr. Pradhan said officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability will be ensured at all levels. Taking responsibility for the discrepancies, the Education Minister said the issues will be rectified and appropriate solutions will be worked out.
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले।
4: चिल्ड्रन शुड रिसीव ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर मार्क्स थ्रू स्कैन कॉपीज द आंसर शीट्स शुड रीच देम ट्रांसपेरेंटली। दिस इज अ प्रोविजन अंडर द ओएसएम सिस्टम। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री सीबीएसई हैज इम्प्लीमेंटेड दिस सिस्टम। सम डिस्क्रेपेंसीज हैव कम टू नोटिस इन इट। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एंड इट विल बी करेक्टेड प्रॉपरली। वी विल मेक श्योर दैट नो जेन्युइन क्वेरी रेज्ड बाय एनी स्टूडेंट रिमेन्स अनआंसर्ड।
2: The National Testing Agency NTA has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate CUET UG 2026 examinations. As per the NTA, examinations will now be conducted on the 31st of this month and the 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid ul-Azha. NTA said admit cards for candidates appearing for the test on Sunday have been released and they can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. The admit card for the remaining candidates, whose examination is being scheduled on the 6th and 7th of next month, will be released soon. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah will submit his resignation to the Governor this afternoon. State Parliamentary Affairs Minister H.K. Patil informed this while leaving the breakfast meeting called by Siddaramaiah. He said Siddaramaiah has been told by the Congress High Command to resign and accordingly he will submit his resignation at Lok Bhavan. He further informed that D.K. Shivakumar will take over as the Chief Minister. Bharatiya Janata Party BJP leader from Punjab, Kewal Singh Dhillon, has been appointed as the state president of the party's Punjab unit today. He has been given the charge of Punjab unit by the party's national president, Nitin Naveen. Iran's Revolutionary Guards today said they targeted a U.S. base this morning in retaliation to American strikes near Bandar Abbas Airport. Tehran did not disclose the location of the base that was attacked, but Kuwait, a U.S. ally, said earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. Today is the birth anniversary of great nationalist and freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar, popularly called Veer Savarkar. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah remembered the great leader on the occasion. The festival of sacrifice Eid ul-Azha or Bakrid is being celebrated with religious fervour and gaiety in various parts of the country today. People offered prayers in Eidgahs and mosques this morning. Later they exchanged Eid greetings. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. And with that we end this news bulletin.

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। रांची पुलिस ने लापुंग से 10 लाख के इनामी नक्सली पीएलएफआई सुप्रीमो अमृत होरो को किया गिरफ्तार। रंगदारी और आगजनी के कई मामलों में था वांछित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को दिलाया शिकायतों के समाधान और जवाबदेही का भरोसा। कहा, सीबीएसई 12वीं परीक्षा में अब शुरू होगी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया। ट्रेनों की लेट लतीफी पर विधायक सरयू राय ने उठाया सवाल। टाटानगर रेलवे स्टेशन दौरे पर पहुंचे महाप्रबंधक ने दिया आश्वासन, पैसेंजर ट्रेनों को मिलेगी प्राथमिकता। रांची समेत कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। राज्य में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 5 दिनों तक लू चलने की संभावना नहीं। और पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुमित अंतिल ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। भाला फेंक कर जीता स्वर्ण पदक। प्रवीण कुमार और दीप्ति जीवन जी को भी मिला गोल्ड मेडल। और अब समाचार विस्तार से। रांची पुलिस ने पीएलएफआई नक्सली संगठन के सुप्रीमो कमांडर अमृत होरो को लापुंग इलाके से गिरफ्तार किया है। अमृत होरो पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ रांची और खूंटी समेत कई इलाकों में रंगदारी, आगजनी और रेलवे व निर्माण परियोजनाओं में बाधा पहुंचाने के मामले दर्ज हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने विशेष टीम बनाकर देर रात कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वर्ष करीब 17 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी और लगभग 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई, जिनमें करीब 40 करोड़ स्कैन पेज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार सीबीएसई ने डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू की है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और छात्र हित सुनिश्चित करना है। अब छात्र अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं देख सकते हैं और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
1: कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को उनके मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ क्वालिटेटिव एक विषय है। सीबीएसई ने बहुत सारे अच्छे एजेंसियों को भी, अभी आईबी को भी इन्वॉल्व किया है।
0: टाटानगर स्टेशन के दौरे पर पहुंचे दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने आश्वस्त किया कि कोल्हान क्षेत्र में पहले पैसेंजर ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद ही मालगाड़ियों को पास किया जाएगा।
2: वहां से एक इश्यू रेज किया गया था कि गुड्स ट्रेन को चक्रधरपुर डिवीजन में प्राथमिकता दी जा रही है और कोचिंग ट्रेन को रोककर गुड्स ट्रेन को आगे चलाया जा रहा है। तो हमने उनको ये बताया है कि इसके बारे में किसी भी तरह हालत में हम गुड्स ट्रेन कोचिंग ट्रेन को रोक के गुड्स ट्रेन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर कोचिंग ट्रेन जा रही है तो कोचिंग ट्रेन ही आगे जाएगी।
0: वहीं विधायक सरयू राय और रेल यात्री संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने ट्रेनों की लगातार लेट लतीफी का मुद्दा उठाया। सरयू राय ने कई यात्री ट्रेनों के घंटों देरी से चलने का रिकॉर्ड जीएम के सामने रखा।
3: केवल एक ही मांग है कि जो ट्रेनें हैं वो समय पर चलें। फिर उन्होंने कहा कि हम लोगों की ये धारणा है कि जो यात्री गाड़ियां हैं उसे रोक करके और मालगाड़ियों को आगे बढ़ाया जाता है और ये लेट होने का बड़ा कारण है। मैंने कहा कि रेलवे को मालगाड़ी की ढुलाई से इतना आमदनी होता है किराया, उससे अधिक नुकसान जनता का।
0: झारखंड मंत्रालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महानंद राम आत्माराम टेकरीवाल फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एम्बुलेंस स्वर्गीय आत्माराम टेकरीवाल की पुण्य स्मृति में दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की पहल समाज सेवा और जन कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण है। झारखंड अधिविद्य परिषद ने मदरसा परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य भर में परीक्षाएं 16 जून से 23 जून तक दो पालियों में आयोजित होंगी। परिषद ने मदरसा प्रधानों को निर्देश दिया है कि वे 8 जून से प्रवेश पत्र परिषद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं। वहीं रोल शीट का वितरण 10 से 12 जून के बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के बाद 24 जून से 2 जुलाई तक संबंधित मदरसों में प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू की गई उज्ज्वला योजना ने धनबाद की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। धनबाद की रमा सिन्हा ने कहा कि इस योजना ने सिर्फ महिलाओं की सेहत और समय को नहीं बचाया है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी काफी हद तक संरक्षण मिला।
4: 10.5 करोड़ महिलाओं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना का लाभ दिया है। आज महिलाएं उस धुएं से बच रही हैं, जो लकड़ियां जलता था, धुआं उठता था, उस धुएं से बच रही हैं। उसके बाद उनका स्वास्थ्य का ख्याल, धुएं से कई प्रकार की बीमारियां होती थी महिलाओं को।
0: ईद उल अजहा का त्यौहार आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई मंत्रियों व अन्य ने आज ईद उल अजहा के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, यह त्यौहार समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को बकरीद की बधाई दी। दुमका समेत पूरे संताल परगना में गर्मी बढ़ने के साथ सर्पदंश की घटनाओं में तेजी आई है। मई महीने के 26 दिनों में संताल परगना में सर्पदंश के 191 मामले सामने आए हैं, जिनमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। दुमका जिले में 26 दिनों के भीतर सर्पदंश की 31 घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पाकुड़ जिले में 60 मामले अस्पतालों तक पहुंचे हैं। गोपी कांदर प्रखंड के रोला पहाड़ी गांव में करैत सांप के काटने से एक 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलो है। झारखंड में भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज से अगले 5 दिनों तक कहीं भी लू चलने की संभावना नहीं है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि आने वाले दिनों में तेज हवा, आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। बेंगलुरु में 8वीं भारतीय ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में 2 बार के पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता। सुमित ने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए 74.82 मीटर का थ्रो किया। उन्होंने वर्ष 2022 के हांगझोउ एशियाई पैरा खेलों में 73.29 मीटर का थ्रो किया था। महाराष्ट्र के संदीप सरगर ने 62.88 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता। राजस्थान के संदीप ने कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची पुलिस ने लापुंग से 10 लाख के इनामी नक्सली PLFI सुप्रीमो अमृत होरो को किया गिरफ्तार। रंगदारी और आगजनी के कई मामलों में था वांछित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को दिलाया शिकायतों के समाधान और जवाबदेही का भरोसा। कहा, CBSE 12वीं परीक्षा में अब शुरू होगी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया। ट्रेनों की लेट लतीफी पर विधायक सरयू राय ने उठाया सवाल। टाटानगर रेलवे स्टेशन दौरे पर पहुंचे महाप्रबंधक ने दिया आश्वासन, पैसेंजर ट्रेनों को मिलेगी प्राथमिकता। रांची समेत कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। राज्य में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 5 दिनों तक लू चलने की संभावना नहीं। और पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुमित अंतिल ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड, भाला फेंक कर जीता स्वर्ण पदक, प्रवीण कुमार और दीप्ति जीवन जी को भी मिला गोल्ड मेडल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार हैं सिप्रा बोस, सुनते हैं दादरा।

अभी आप शिप्रा बोस से दादरा सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। इनसे सुनते हैं चंद गजलें।

मिताली सिंह के गाय से गजल के साथ सुगम संगीत यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार सुनेंगे।

0: हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगतोक में पालजोड़ स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केन्द्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही, इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरू स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमरीका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के दो व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
5: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
6: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के
0: मतदाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
7: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादेसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से।
9: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: Sena.
1: फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं फिल्म दिलवाले से ये गाना। आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की है। शब्द रचना समीर के, संगीत बत किया नदीम श्रवण ने।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज में फिल्म साजन की बाहों में से ये गाना। इस गीत को लिखा समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। आईआईटी आईएसएम धनबाद के पैनमेन ऑडिटोरियम में बीसीसीएल के सीएसआर पहल के तहत अंडर प्रिविलेजेंट और प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन छात्रों के लिए स्टेम शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य बीसीसीएल क्षेत्र के जरूरतमंद और परियोजना प्रभावित छात्रों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित की शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल और वैज्ञानिक शिक्षा बेहद जरूरी हो गई है। ऐसे में कार्यक्रम बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और तकनीकी समझ विकसित करने के में सहायक साबित होंगे। रांची पुलिस ने एक बड़े अभियान में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सरगना अमृत होरो को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस दल ने उसे गिरफ्तार किया। अमृत होरो रांची, खूंटी और आसपास के जिलों में जबरन वसूली और आपराधिक गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल था। पुलिस अन्य उग्रवादियों और संगठन के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अमृत होरो से पूछताछ कर रही है। गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी कर 2 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया, जबकि 1 महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि बोड़ो इलाके में नाबालिग लड़कियों को डरा धमका कर और मारपीट कर देह व्यापार कराया जा रहा था।
2: बोड़ो के एक घर में छापामारी किया गया, जहाँ से 2 नाबालिग लड़की को बरामद किया गया और जिस महिला के द्वारा ये काम कराया जा रहा था उनको उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसमें और भी 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, कुल मिलाकर 3 गिरफ्तारी की गई है। उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और अगर इस तरह के घटना को अंजाम देने के लिए और भी लोगों की संलिप्तता इसमें पाई जाती है आगे तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की।
1: धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत छाताबाद में बीती रात अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर गोलीबारी की खबर है। देर रात हुई अंधाधुन फायरिंग में दोनों पक्षों के 3 लोग गोली लगने से घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल 1 युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर किया गया है। वहीं दूसरे व्यक्ति का इलाज निचितपुर स्थित एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। पुलिस ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म के मानने वालों ने सुबह ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इधर जमशेदपुर में भी बकरीद ईद उल अजहा धार्मिक आस्था और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। बकरीद अल्लाह के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। आज जमशेदपुर के धटकीडीह समेत विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। मौके पर उपस्थित नमाजी ने बताया कि पूरे देश में अमन शांति की दुआ की है।
3: ईद उल अजहा की नमाज बकरीद की नमाज खूब अमन शांति के साथ हमने अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया, दुआएं की और मुल्क में अमन अमान की दुआएं की हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबकी इबादतों को, कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
1: जामताड़ा के दुमका रोड स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास आज एक स्कूटी पर सवार 3 युवक डंपर की चपेट में आने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल युवकों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने जामताड़ा दुमका सड़क मार्ग पर आवागमन अवरुद्ध कर दिया है। झारखंड स्टेट ओलंपियाड 2025 में सरायकेला खरसावां जिले के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT रांची के निर्देशक शशि रंजन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार राज्य स्तरीय मेधा सूची में जिले के 5 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काका मिघरा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुरुषों के वर्ग में भारत को पुल ए में रखा गया है। पुल ए में मेजबान जापान, कोरिया, चीनी, ताइपे और कजाकिस्तान की टीमें शामिल हैं। भारत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। इसके बाद 31 मई को जापान, 1 जून को कोरिया और 3 जून को चीनी ताइपे के खिलाफ मैच होंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है नॉन स्टॉप अंत्याक्षरी। इससे पहले सुनते हैं भारतीय सेना को समर्पित ये गीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

नॉन स्टॉप अंताक्षरी यहीं तक। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम रांची मेलोडीज। शुरुआत करते हैं फिल्म श्री 420 के इस गाने से। आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की है, शब्दों में पिरोया है शैलेंद्र ने, संगीत पद किया शंकर जय किशन ने।

शैलेंद्र का लिखा गाना सुनते हैं फिल्म बसंत बहार में। आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की है, संगीत वर्क किया शंकर जय किशन ने।

आइए सुनते हैं बहारों के सपने से ये गाना। आवाज़ें लता मंगेशकर और मन्ना डे की है, शब्दों में पिरोया है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है राहुल देव परमन ने।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं फिल्म चोरी चोरी से। आवाज लता मंगेशकर और मन्ना डे की है, शब्द रचना शैलेंद्र के, संगीत पद किया शंकर जय किशन ने।

0: तुमसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
1: आइए सुनते हैं फिल्म उजाला से ये गाना। आवाज लता मंगेशकर और मन्ना डे की है, बोल हसरत जयपुरी के, धुन बनाई है शंकर जय किशन ने।

कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म रात और दिन से, आवाजें लता मंगेशकर और मुन्ना डे की, बोल शैलेंद्र के, संगीत वत किया शंकर जय किशन ने।

0: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। आईआईटी आईएसएम धनबाद के पेनमैन ऑडिटोरियम में बीसीसीएल के सीएसआर पहल के तहत अंडर प्रिविलेजेंट और प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन छात्रों के लिए स्टेम शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य बीसीसीएल क्षेत्र के जरूरतमंद और परियोजना प्रभावित छात्रों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग की बैनर तले 90 दिवसीय कानूनी जागरूकता आउटरीच कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हजारीबाग में यह कार्यक्रम प्रधान जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग ध्रुवचंद्र मिश्रा के दिशा निर्देश में और सचिव डॉ. रवि प्रकाश तिवारी के देखरेख में चलाया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के देवघर केंद्र में अब धर्म, अध्यात्म और जनजातीय अध्ययन से जुड़े कई नए कोर्स शुरू किए गए हैं। धर्मनगरी देवघर में छात्रों के लिए अब वैदिक अध्ययन, ज्योतिषाचार्य और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विषयों में डिग्री हासिल करना आसान हो गया है। इग्नू के क्षेत्रीय निर्देशक अरविंद कुमार मनोज ने जानकारी दी कि संथाल परगना क्षेत्र के छात्रों को ध्यान में रखते हुए कई नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। राज्य भर में शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म के मानने वालों ने सुबह ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इधर जमशेदपुर में भी बकरीद ईद उल अजहा धार्मिक आस्था और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। बकरीद अल्लाह के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काकामिघारा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुरुषों के वर्ग में भारत को पुल ए में रखा गया है। पुल ए में मेजबान जापान, कोरिया, चीनी ताइपे और कजाकिस्तान की टीमें शामिल हैं। भारत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान जगत। वाचन एवं सहयोग वसंत कुमार, प्रस्तुति प्रभु शरण की।

0: नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं रासायनिक पदार्थों से तैयार फलों को खाने से हमें क्यों बचना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं तंबाकू सेवन से होने वाले खतरे और इसके बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में। इसके बाद बारी होगी वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें हम आपको आज जानकारी देंगे सोलर पैनल के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि रासायनिक पदार्थों से तैयार फलों को खाने से हमें क्यों बचना चाहिए इसके बारे में। तरबूज, ककड़ी, खीरा, इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे फल हैं जो इसी मौसम में मिलते हैं, गर्मी के मौसम में, जैसे कि आम, लीची, यहाँ तक कि हमें ऐसे फलों का भी सेवन करने के लिए मिलता है जिसे हम सिर्फ गर्मी के मौसम में ही खा सकते हैं। तो इन फलों को खाने से पहले हमें कई बार बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लेकिन हम फलों को देखकर लालच में आ जाते हैं और फलों को किस तरीके से तैयार किया गया है, वो सेहतमंद है या नहीं है, इन बातों को दरकिनार करके हम सीधा फल को खाने के लिए खरीद लेते हैं और उसका सेवन भी करने लगते हैं। फल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर भी रोज फल खाने की सलाह देते हैं क्योंकि फलों में विटामिन, खनिज और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन आजकल बाजार में जल्दी मुनाफा कमाने की होड़ में कई व्यापारी फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने लगे हैं। इन फलों को रसायनों की मदद से जल्दी बड़ा और चमकदार बनाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो रहा है। प्राकृतिक रूप से पके फल शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन जब इन्हें कैल्शियम कार्बाइड, एथिलीन गैस या अन्य रासायनिक पदार्थों की सहायता से पकाया जाता है या तैयार किया जाता है, तब ये स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि बाजार में आम, केला, पपीता और सेब जैसे फल बहुत चमकते हैं, एक जैसे रंग के दिखाई भी देते हैं, देखने में ये आकर्षक लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सुरक्षित भी हों। कई बार फलों को जल्दी पकाने के लिए जहरीले रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड रसायन के बारे में हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं और इसका उपयोग सबसे अधिक फलों को तैयार करने के लिए किया जाता है। इससे निकलने वाली गैस फल को जल्दी पीला बना देती है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव काफी गंभीर हो सकते हैं। ऐसे फल खाने से सिरदर्द, पेट दर्द, उल्टी, आंखों में जलन, त्वचा संबंधी कई प्रकार की समस्याएं भी हो सकती हैं। लंबे समय तक इनका सेवन करने से लीवर और किडनी भी पूरे तरीके से प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों की अगर हम माने तो रसायनों से पकाए गए फलों में प्राकृतिक स्वाद और पोषण की कमी हो जाती है, यानी हम फल तो खा रहे हैं लेकिन शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ऐसे फल और भी ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। अब बात ये आती है कि इन फलों को हम पहचाने कैसे कि ये कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए हैं। तो इन फलों को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि प्राकृतिक रूप से पके फल धीरे धीरे रंग बदलते हैं, जबकि रसायनों से पके फल बाहर से पूरी तरह पीले या लाल दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से कच्चे होते हैं। ऐसे फलों में प्राकृतिक खुशबू कम होती है। केले या आम पर काले धब्बे या असमान रंग दिखाई दे सकते हैं। फल जरूरत से ज्यादा चमकदार दिखे तो सावधान हो जाना चाहिए। काटने पर यदि फल का अंदरूनी हिस्सा सख्त या फीका लगे तो समझिए कि इसे कृत्रिम रूप से पकाया गया है। अब अगर आपने कृत्रिम रूप से पकाए गए फलों का सेवन कर लिया है और कुछ नुकसान आपको हो रहा है, तो इनसे बचने की क्या प्रक्रिया है, क्या सावधानी है, ये जरूर याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमेशा मौसमी और ताजे फल को खरीदें, उसका ही सेवन करें। फल खरीदने के बाद अच्छी तरह से उसे धोएं तभी उसका सेवन करें। कुछ समय के लिए गुनगुने पानी में रखने से भी रसायनों का जो असर है वो कम हो जाता है। स्थानीय किसानों या विश्वसनीय दुकानदारों से ही फल खरीदें और सेवन करें। जरूरत से ज़्यादा चमकदार और बहुत जल्दी पके हुए फलों से बचना चाहिए और बच्चों को फल खिलाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से साफ करके धो लेना चाहिए, तभी उसका सेवन करना चाहिए। तो स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। थोड़ी सी लापरवाही हमें बहुत बड़ी बीमारी की तरफ ले जा सकती है, इसलिए हमें जागरूक बनना है और दूसरों को भी जागरूक करना होगा। यदि हम सुरक्षित और प्राकृतिक फलों का सेवन करेंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत रहेगा। तो रासायनिक पदार्थों से तैयार फलों को खाने से हमें क्यों बचना चाहिए, हमने इसके बारे में बातचीत कर ली। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भेंटवार्ता में आज तंबाकू सेवन से होने वाले खतरे और इससे बचाव के क्या उपाय हैं इसके बारे में। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर अभिजीत सिंह हैं जो कि इस विषय पर हमें जानकारी देंगे। और डॉक्टर अभिजीत सिंह समन्वयक नशा मुक्ति केंद्र CIP केंद्रीय मनुष्य चिकित्सक संस्थान रांची में कार्यरत हैं और ये संस्थान लगभग 107 साल पुरानी है जो कि इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है और लोगों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक कर रही है। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: तो सर सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नशा कितना जरूरी हो जाता है इंसान के लिए और नशा के प्रति लोगों का जो रुझान है उस तरफ जो खिंचाव है वो क्यों होने लगता है, जबकि लोग ये जानते हैं कि नशा करना उनकी सेहत के लिए, उनकी मानसिक स्थिति के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति के लिए भी खराब है, बावजूद इसके लोग नशा करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है?
1: देखा जाए तो नशा एक तलब है। जब हमें तलब उठती है तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, और इसलिए हम नशा की दुनिया में गिरते ही जाते हैं, इसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये तलब क्यों उठता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है जीवन में स्ट्रेस। जब परेशानियां आती हैं, जब स्ट्रेस आता है तो हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। हमें लगता है कि अगर हम नशा कर लेंगे तो कुछ समय तक नशे में रहेंगे और इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से निजात पा लेंगे, और इसी क्रम में हम जो है नशा के चंगुल में फंसते जाते हैं और तलब हमें लग जाता है।
0: यानी कि एक चीज़ से बाहर निकलने के लिए, मतलब स्ट्रेस हो गया या फिर कोई मानसिक परेशानी है या आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उससे बचने के लिए लोग थोड़ी देर के लिए, भूलने के लिए नशे की तरफ चले जाते हैं, लेकिन फंस जाते हैं उस तरफ। और ये एक बार दो बार हो गया तो समझ में आता है, लेकिन बार बार अगर उस चीज़ को रिपीटेशन हो रहा है तो फिर उस चीज़ को लेकर के जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और हर साल की तरह इस बार भी देखिए वर्ल्ड नो टोबैको डे जो कि 31 मई को मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में, इसके बावजूद लोग नशे की तरफ चले जा रहे हैं, इसका और जो मरने वाले लोगों की संख्या है या फिर इससे जो प्रभावित होने वाले लोगों की जो संख्या है वो भी आप दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई देख रहे हैं, तो कैसे इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?
1: पहले तो मैं कुछ तत्वों के बारे बात करूंगा, कुछ डेटा के बारे बात करूंगा जो कि बहुत भयानक है। अगर देखा जाए तो आज हमारे देश में 10 में से 5 ऐसे लोग हैं जो नशा कर रहे हैं जिनमें मरने वाली संख्या 3 से ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो लोग 5 में से 3 आदमी जो नशा कर रहे हैं वो मर रहे हैं। क्या कारण है इसके? सबसे बड़ा कारण नशा से मरने वाले लोगों की वो है कैंसर, जो कि माउथ कैंसर, लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर जैसी बीमारियां हैं। हम सबको पता है कि कैंसर के बाद जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाती है, कठिन हो जाती है, और कैंसर एक बहुत बड़ा इसका रीज़न है।
0: जो लोग नशे के आदि हो गए उनको अगर जैसे पता है कि मुझे इस तरह की नशे के सेवन करने से बीमारी है या हो सकती है, तो उसके बावजूद वो नशा करते हैं क्योंकि आदत लग चुकी है, तो इस आदत को छोड़ने के लिए या फिर छुड़ाने के लिए क्या रास्ते हैं, क्या तरीके हैं जिनको लोगों को जानना चाहिए और उसके प्रति काम करना चाहिए, कैसे इसको किया जा सकता है?
1: जो सबसे पहला जो स्टेप हम लेते हैं वो है लोगों को जागरूक करना, ये बताना कि नशा आपके लिए खराब है। बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे संस्थान का और हमारा ये हमेशा से इच्छा रहती है कि हम लोगों को बताएं कि आप किस तरह से नशा से बच सकते हैं। तो उसके लिए कुछ तरीके हैं जिसमें हम कुछ थेरेपी का यूज़ करते हैं, कुछ काउंसलिंग देते हैं, कभी कभी हम दवा का भी इस्तेमाल करते हैं और उससे लोगों को नशा से बचाते हैं।
0: अभी तक के एक्सपीरियंस में नशा से बचने के लिए या फिर उससे छुटकारा पाने के लिए किस तरह के केसेस आए हैं और आपको सबसे खतरनाक या फिर खराब कह लें या फिर ऐसी स्थिति कह लें जिसमें आदमी उभर नहीं सकता है, ऐसे में आप कैसे उनको
2: देखते हैं क्या हम उनको सलाह देते हैं कि?
1: एक छोटा सा मैं केस आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जहाँ पर एक इंसान हमारे पास आए और जब हम उनका केस हिस्ट्री लिए तो हमें पता चला कि वो काफ़ी तन्हा हैं, लोनली हैं, और उसके कारण उन्होंने शराब का नशा शुरू किया। शराब का नशा शुरू करने के बाद उनकी घर परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया। अब क्योंकि साथ छोड़ दिया तो वो और अकेलापन हो गया और इसलिए वो और नशा लेने लगे। जब वो हमारे पास आए तो उनकी हालत इतनी बुरी थी कि वो अपना दिन भर का खाना भी नहीं खा पाते थे। जो खाना पेट में जाता था वो सही से पच नहीं पाता था। लीवर 75% तक डैमेज हो चुका था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया अपना ट्रीटमेंट, जहाँ पर मेडिसिन के साथ साथ थेरेपी के साथ साथ काउंसलिंग ये सब किया, और अभी काफ़ी हद तक वो अच्छे हैं। पूरी तरह तो अच्छे नहीं हो पाए, लेकिन हाँ चलो कम से कम वो एक अच्छाई की तरफ उनका कदम जो है आगे बढ़ चुका है और उनका परिवार भी उनका साथ दे रहा है। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, जो इस बार का थीम है हमारा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन अगेंस्ट ड्रग इंडस्ट्री, कि जो टम्बैको इंडस्ट्री में जो बच्चों का योगदान है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं, एक वैसे लोग जो ऑलरेडी नशा कर रहे हैं उनको तो रोकना हमारा फ़र्ज़ बनता ही है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे, उसको हम एडोलेसेंट बोलते हैं, वो नशा की तरफ झुक रहे हैं, वो तम्बाकू की तरफ झुक रहे हैं, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आज उनको रोक लेंगे तो कल वो उनका भविष्य अच्छा होगा और वो अच्छा इंसान की तरह निकल पाएंगे।
2: तो इसके लिए आपकी संस्थान या फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई स्कीम या ऐसा कोई कुछ कार्यक्रम जो जिसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह का कुछ कार्यक्रम चल रहा है जिसमें वो शामिल होकर अपना जो नशे की जो लत लगी है उससे बाहर आ सके।
1: हमारी संस्थान में हर बुधवार और शनिवार को एक क्लिनिक बैठता है जिसका नाम है टोबैको सीजेशन क्लिनिक, TCC। इस क्लिनिक में हम निःशुल्क इलाज करते हैं, और जो भी लोग तम्बाकू, खैनी, गांजा, सिगरेट जैसी समस्या लेके हमारे पास आते हैं उनका हम निःशुल्क इलाज करते हैं। ये एक सरकारी कार्यक्रम है, और इसमें मैं अभी तक अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि अगर हमारे पास 10 केस आया है तो 8 सक्सेस केस हमले के बाहर निकले।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: तो इस तरह का जो कार्यक्रम है ये गवर्नमेंट काफी ज्यादा सपोर्ट करती है, और ये क्लिनिक बैठाने के बाद हमें पता चला कि हाँ कुछ ना कुछ तो हम कर पा रहे हैं समाज के लिए।
2: अभी तक अगर देखा जाए तो इन सभी चीजों को जानने के बावजूद लोगों में नशे के प्रति जो खिंचाव है या रुझान है वो कम होने का नाम नहीं लेता। आपने जिन जिन चीज़ों का भी नाम लिया नशे के रूप में, उसके अलावा और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनका सेवन लोग नशे के रूप में करते हैं, तो इन सभी चीज़ों का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा असर तो नहीं करता है तुरंत में, लेकिन वो जो चीज़ें हैं जो अलग लेवल में नशा करने की चीज़ें हैं उनका असर तो सीधा मानसिक तौर पर होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो बाहर निकलने के लिए उसके पास क्या रास्ता है?
1: सबसे पहले जो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी नशा शुरू होता है वो छोटे नशे से शुरू होता है, जैसे सिगरेट का नशा हो गया, निकोटिन डिपेंडेंस उसको हम बोलते हैं, या फिर खैनी का नशा हुआ। ये नशा को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो ये आगे चल के बड़ा नशा, जैसे कि गांजा का नशा हो गया, ओपिओइड का नशा हो गया, ब्राउन शुगर का नशा हो गया, ये सबको हम बचा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी ब्राउन शुगर, कोकीन, हीरोइन के नशा कर रहे हैं, सबसे पहले हमको उनके घर परिवारों को ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप उनको लेके हमारे पास आइए, क्योंकि इस पोजीशन पे आने के बाद, ये स्टेज में आने के बाद डायरेक्ट डॉक्टर का ही हेल्प चाहिए उनको जी। घर पे इलाज नहीं हो सकता। तो मेरा ये निवेदन है उन परिवारों से कि आप उनको लेके हमारे पास आइए, और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ शुरू होगा जहाँ पर मेडिसिन और काउंसलिंग दोनों हम साथ में लेके चलें। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि घर वाले कैसे पहचाने कि मेरा बेटा या घर वाले जो भी इंसान है वो ब्राउन शुगर का नशा कर रहा है। तो इसका एक छोटा सा ये टेक्निक है कि अगर उसके व्यवहार में चेंजेस आ रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो गया, अकेला अकेला रहता है, खाना कम खाता है, हर बात में गुस्सा करता है, तो आप समझ जाइए कि कोई ना कोई व्यवहार में चेंज हो रहा है, और उसका दिनचर्या को नोटिस करना शुरू करिए। आप पाइएगा कि वो परिवार के लोगों से दूर रहने में ज्यादा अपने आप को सेफ महसूस करता। अगर वैसा कंडीशन है तो बिना लेट किए, बिना देर किए तुरंत हमारे पास लेके आइए, निशुल्क इलाज होगा और कहीं ना कहीं हम उसके जीवन को बचा पाएंगे।
2: युवाओं में खासकर, आज युवाओं में नशा का जो सेवन करने का जो चलन चल पड़ा है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। पहले के जमाने में एक उम्र होने तक लोग नशा करते थे और एक नियमित संयमित तरीके से करते, लेकिन आजकल बच्चों से ही ये चीज़ें शुरू हो जा रही है और युवाओं को खासकर ज़्यादा चपेट में ले रही है। तो युवाओं को इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नशे के आदी हो चुके हैं और जिनको देखकर या उनके साथ रहकर वो भी उसमें फंसते चले जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनको कैसे बचना चाहिए?
1: जो हमारे समाज में यंग एडल्ट हैं, जिसको आप युवा कह रहे हैं, ये दूसरे को देख के बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ये टीवी सीरियल में देख रहे हैं, पिक्चरों में देख रहे हैं, जहाँ पर हीरो हीरोइन जो नशा का सेवन कर रहे हैं और इसको देख के आकर्षित हो रहे हैं। अब इनको रोकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसे लोग हमारे अस्पताल में आने से हिचकिचाते हैं। इसलिए हमने एक और नया प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ पर हम स्कूल प्रोग्राम्स, स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस फैला रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जो हमारे मीडिया जो दिखा रहा है, जो मीडिया एक पिक्चर दिखा रहा है नशा का, वो पिक्चर कितना भयानक है, उसका जो असली चेहरा वो हम स्कूल जा जाके या कॉलेजेस जाके दिखा रहे हैं और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें सरकार हमको सहायता भी कर रही है और साथ साथ हमारा क्लिनिक के स्टाफ भी इसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। और अभी जो नया डेटा आया उससे हमें ये पता चला है कि पिछले कुछ दशकों में हम सक्सेस पाया है और कहीं ना कहीं सक्सेस 55% से ज़्यादा है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेटा है। सो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम और ये सब से हम जो है इस समस्या से निजात पाने में कुछ हद तक सक्षम है।
2: बहुत अच्छी बात है और इस तरह के कार्यक्रम चलते रहने चाहिए ताकि लोगों के बीच में जो नशे के प्रति जो रुझान है उसको कम किया जा सके। और कई बार ऐसा देखा जाता है ना कि लोग नशे के इतने आदि हो जाते हैं कि अगर ना मिले तो वो अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं या फिर उनकी जान पर बनाती है। तो नशा इतना भयावह चीज है, कई बार बहुत सारे घर इसकी वजह से बर्बाद हो जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अभी अगर देखा जाए तो हम अगर बाजार निकलें या फिर रास्ते में कहीं भी जाएं तो नशे के जो पदार्थ हैं, जो चीज़ें हैं, वो खुलेआम बिक रही हैं। तो लोग कहते हैं कि बिक रही है, मिल रही है, इसलिए हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो लोगों का इस तरह से कह देना और फिर नशे की तरफ चले जाना, ये कहीं ना कहीं खुद को खाई में लेकर डालने की जैसा है। तो ऐसे सूरत में अगर मिलने वाली जो चीज़ें हैं वो ना मिले तो सही बात है कि लोग नशा ना करें, लेकिन मिल रही है, बिक रही है मार्केट में, तो ऐसे कंडीशन में दोनों के बीच में कैसे गैप किया जाए कि लोग नशे से बच जाए और वो जो विक्रेता है तो उसे तो फायदा चाहिए भाई।
1: का जो ये सवाल है बहुत ही खूबसूरत है और हम जहां भी जाते हैं हमें इस सवाल का सामना करना पड़ता है। इसके जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि हमें एक चीज समझना है, डिमांड और सप्लाई का ग्राफ। जितना डिमांड बढ़ेगा सप्लाई उतना बढ़ेगा। हम जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, TCC प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे हम डिमांड कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि अगर मैं आज आपको 1,00,000 रुपए दूँ और मैं बोलूँ जाके आप एक स्कूटर खरीदिए, आप खरीदना चाहेंगे? नहीं खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उसका डिमांड ही नहीं है। तो इस तरह से अगर हम डिमांड को कम कर देंगे, लोग खैनी गुटखा को लेंगे ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो जो दुकान है वो तो खुद ब खुद उनमें ताला लग जाएगा। तो हम डिमांड पे काम करते हैं, डिमांड पे काम करेंगे, हार्म रिडक्शन पे काम करेंगे, तो ऑब्वियसली सप्लाई जो है कहीं ना कहीं कम होगा
2: और लोग भी इस तरफ जाना कम करेंगे। इसके लिए लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं या फिर सामने वाले के प्रोडक्ट की तरफ खींचे चले जाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
1: क्योंकि ये बहुत सही बात आपने कहा, जो प्रोडक्ट की तरफ वो खींचे चले जा रहे हैं, जो भी गुटखा खैनी ले रहे हैं, क्या कभी उन्होंने सोचा है कि इसका अंतिम स्टेज क्या होगा, अंतिम पड़ाव क्या होगा? मौत।
2: जी,
1: बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें देखा गया है कि जो लोग बहुत नशा कर रहे हैं वो आगे जाके सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रह पाता है और सुसाइड केस भी बढ़ रहे हैं।
2: जी,
1: तो इसलिए हमें लोगों को जागरूक करना है कि अगर आप नशा पे कंट्रोल करेंगे तो जीवन को एक अच्छे दिशा में लेके आप आगे बढ़ सकते हैं।
2: ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर कोई व्यक्ति नशे का बहुत ज़्यादा आदि हो चुका है, उसके जो शारीरिक या मानसिक स्थिति वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, वो अगर आपके पास या फिर किसी भी डॉक्टर के पास जाता है इलाज के लिए, तो क्या वो फिर से वापस एक सामान्य जिंदगी की तरफ जीने के लिए वो फिर से शुरू कर सकते हैं नॉर्मल लाइफ?
1: बिल्कुल कर सकते हैं, अगर उनके अंदर ये चाह होगी कि मुझे सही होना है। तो 80% केसेस में देखा गया है कि वो जो इम्प्रूवमेंट होता है, ऐसे केसेस हमारे क्लिनिक में आते हैं तो हम उनको एडमिट कर लेते हैं अपने पास, एडमिट करके प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में हम इलाज करते हैं और देखा गया है कि इम्प्रूवमेंट होता है। डेफिनेटली 100% में नहीं बोलता हूँ, लेकिन 80% के आसपास तो इम्प्रूवमेंट होती ही है।
2: यानी कि अगर आप में चाह है दोबारा से खुद को खड़ा करके आगे बढ़ने की, नशे के प्रति आप लगाव को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर आपकी इसमें मदद कर सकते हैं।
1: वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह।
2: जी,
1: तो आप चाह लेके आइए, आप एक कदम में बढ़िए, हम एज अ डॉक्टर 2 कदम आपके साथ।
2: तो अगर आप नशे के आदी हैं या फिर आप इसी से बाहर निकलना चाहते हैं, डॉक्टर से संपर्क करें पहले। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ट्रीटमेंट इसका बिल्कुल ही मुफ्त और सुचारू रूप से आपकी सेहत के लिए ध्यान में रख के किया जाता है, तो आप सबसे पहले यही काम करें कि डॉक्टर की सलाह जरूर लें, तभी सही तरीके से आप फिर से जिंदगी अपनी जीनी शुरू कर सकते हैं।
1: और बस मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि नशा का जो रास्ता है इसका अंत बहुत ही भयानक है, तो इस रास्ते पे अपना पहला कदम भी आप ना रखें। और अगर आपने पहला कदम गलती से रख दिया है दोस्तों के ग्रुप में आके या किसी कहने पे आके, तो तुरंत हमसे संपर्क करें। हर बुधवार हर शनिवार TCC क्लिनिक में हम मिलते हैं और निःशुल्क इलाज करते हैं। आप आइए हमारे पास, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम सब एक साथ मिलके इस चीज से निजात पाया जा सकता है।
2: आप हमारे बीच में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हमारे श्रोताओं को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो अभी हम बात कर रहे थे भेंटवार्ता में तंबाकू सेवन से होने वाले खतरे और इससे बचाव के क्या उपाय हैं इसके बारे में। भेंटवार्ताकार के रूप में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अभिजीत सिंह। अब बारी है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, और आज हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश के बारे में। हम आपको बताते चलें कि हेनरी कैवेंडिश एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कई अद्भुत खोज किए थे। बहुत शांत, सरल और अध्ययनशील स्वभाव के व्यक्ति होने के साथ साथ इनकी खोजों ने आधुनिक विज्ञान की नींव को और मजबूत करने का काम किया। हेनरी कैवेंडिश का जन्म 10 अक्टूबर सन 1731 को इंग्लैंड के नीस शहर में हुआ था। एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखने के साथ साथ इनके पिता लॉर्ड चार्ल्स कैवेंडिश स्वयं भी विज्ञान में रुचि रखते थे, जिसका प्रभाव हेनरी पर बचपन से ही पड़ चुका था। हेनरी कैवेंडिश बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु बालक थे। इन्हें किताबें पढ़ना और नए प्रयोग करना काफी पसंद था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लंदन में प्राप्त की और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हालांकि इन्होंने डिग्री पूरी नहीं की, लेकिन विज्ञान के प्रति इनका लगाव लगातार बढ़ता रहा। हेनरी कैवेंडिश ने अपना अधिकांश जीवन वैज्ञानिक प्रयोगों और अनुसंधान में ही बिताया। बहुत कम लोगों से मिलते जुलते भी थे और अपना अधिक समय प्रयोगशाला में ही बिताते थे। इनके सबसे प्रसिद्ध खोज हाइड्रोजन गैस की खोज को मानी जाती है। वर्ष 1766 में इन्होंने एक विशेष गैस की पहचान की, जिसे इन्होंने ज्वलनशील वायु का नाम दिया। बाद में यही गैस हाइड्रोजन के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये विज्ञान जगत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कैवेंडिश ने यह भी सिद्ध किया कि जब हाइड्रोजन गैस जलती है तो पानी बनता है। इस खोज ने ये समझने में मदद की कि पानी कोई तत्व नहीं बल्कि दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना एक यौगिक है। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी के घनत्व को मापने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। इनका प्रसिद्ध कैवेंडिश प्रयोग आज भी विज्ञान की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रयोग के माध्यम से पृथ्वी के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल को समझने में काफी सहायता भी मिली। इनकी गणनाएं इतनी सटीक थी कि आज के आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से प्राप्त परिणाम भी उनके बहुत करीब पाए गए हैं। यह उनकी प्रतिभा और मेहनत का प्रमाण भी माना जाता है। हमेशा घंटों प्रयोगशाला में काम करते रहते हैं और हर छोटे से छोटे परिणाम को ध्यान पूर्वक लिखते रहते हैं। इनकी सादगी और समर्पण ही इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। हेनरी कैवेंडिश के कार्यों ने रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों को नई दिशा देने का काम किया। इनकी खोजों के कारण वैज्ञानिकों को गैसों के गुणों को समझने में काफी मदद मिली। आज भी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में इनके प्रयोगों का अध्ययन कराया जाता है। हाइड्रोजन की खोज और पृथ्वी के घनत्व का मापन विज्ञान इतिहास की महान उपलब्धियों में गिना जाता है। महान वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश का विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हुए 24 फरवरी सन 1810 ईस्वी को निधन हो गया, लेकिन इनकी खोज और योगदान आज भी विज्ञान की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। इन्होंने ये साबित कर दिया कि शांत स्वभाव और लगातार मेहनत से कोई भी व्यक्ति दुनिया को नई दिशा दे सकता है। तो ये हमने आपको बता दिया वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश के बारे में, और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सोलर पैनल के बारे में। तो वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो पूरे विश्व में अभी ऊर्जा संकट काफी गहरा हो चुका है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे जूझता हुआ दिखाई देता है। और अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को इस ऊर्जा संकट से बचाना चाहते हैं तो हमें अब उस तरफ लौटना होगा जहां हमें सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाने की दिशा में कार्य करने का अवसर मिले और हम दुनिया को एक हरा भरा वातावरण दे सकें। इसके लिए ऐसे समय में सौर ऊर्जा यानी सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा हमारे लिए उम्मीद की नई किरण बनके सामने आई है। सोलर पैनल एक ऐसा उपकरण है जो सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। इसमें कई छोटे छोटे सोलर सेल लगे होते हैं। ये सेल सूर्य की किरणों को अवशोषित करके बिजली बनाने का काम करते हैं। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का धुआं, प्रदूषण या शोर उत्पन्न नहीं होता। यही कारण है कि सोलर ऊर्जा को स्वच्छ और हरित ऊर्जा कहा जाता है। आज बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। गांवों से लेकर शहरों तक हर जगह बिजली की आवश्यकता है, लेकिन कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सीमित है और इनके उपयोग से प्रदूषण भी काफी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सोलर पैनल एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है और भारत जैसे देश में जहां साल भर भरपूर धूप मिलती है, वहां सौर ऊर्जा का उपयोग बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। वैसे सरकार भी लोगों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी और आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। तो जिन लोगों ने अब तक सोलर पैनल का इस्तेमाल नहीं किया है या नहीं लगवाए हैं, वो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और अपने घर पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। सोलर पैनल में लगे फोटोवोल्टिक सेल पर सूर्य की रोशनी पड़ते ही सक्रिय हो जाते हैं। ये सेल सूर्य की ऊर्जा को डायरेक्ट करंट यानी डीसी बिजली में बदलने का काम करते हैं। इसके बाद इन्वर्टर की सहायता से इसे बिजली में बदल दिया जाता है, जिससे घरों में पंखा, बल्ब, टीवी और अन्य उपकरण चलाए जा सकते हैं। कुछ सोलर सिस्टम बैटरी से भी जुड़े होते हैं, जिससे रात के समय भी बिजली का उपयोग किया जाता है। अब सोलर पैनल के क्या फायदे हैं, तो हम आपको बताते चलें। सोलर पैनल के बहुत सारे फायदे हैं। ये प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, बिजली का बिल आपका कम हो सकता है, इसके अलावा दूर दराज गांवों में भी आसानी से बिजली पहुंचाई जा सकती है, और इसका रखरखाव अपेक्षाकृत बहुत कम है, यानी कि

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं रासायनिक पदार्थों से तैयार फलों को खाने से हमें क्यों बचना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं तंबाकू सेवन से होने वाले खतरे और इसके बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में। इसके बाद बारी होगी वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें हम आपको आज जानकारी देंगे सोलर पैनल के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि रासायनिक पदार्थों से तैयार फलों को खाने से हमें क्यों बचना चाहिए इसके बारे में। तरबूज, ककड़ी, खीरा, इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे फल हैं जो इसी मौसम में मिलते हैं, गर्मी के मौसम में, जैसे कि आम, लीची, यहाँ तक कि हमें ऐसे फलों का भी सेवन करने के लिए मिलता है जिसे हम सिर्फ गर्मी के मौसम में ही खा सकते हैं। तो इन फलों को खाने से पहले हमें कई बार बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लेकिन हम फलों को देखकर लालच में आ जाते हैं और फलों को किस तरीके से तैयार किया गया है, वो सेहतमंद है या नहीं है, इन बातों को दरकिनार करके हम सीधा फल को खाने के लिए खरीद लेते हैं और उसका सेवन भी करने लगते हैं। फल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर भी रोज फल खाने की सलाह देते हैं क्योंकि फलों में विटामिन, खनिज और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन आजकल बाजार में जल्दी मुनाफा कमाने की होड़ में कई व्यापारी फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने लगे हैं। इन फलों को रसायनों की मदद से जल्दी बड़ा और चमकदार बनाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो रहा है। प्राकृतिक रूप से पके फल शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन जब इन्हें कैल्शियम कार्बाइड, एथिलीन गैस या अन्य रासायनिक पदार्थों की सहायता से पकाया जाता है या तैयार किया जाता है, तब ये स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि बाजार में आम, केला, पपीता और सेब जैसे फल बहुत चमकते हैं, एक जैसे रंग के दिखाई भी देते हैं, देखने में ये आकर्षक लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सुरक्षित भी हों। कई बार फलों को जल्दी पकाने के लिए जहरीले रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड रसायन के बारे में हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं और इसका उपयोग सबसे अधिक फलों को तैयार करने के लिए किया जाता है। इससे निकलने वाली गैस फल को जल्दी पीला बना देती है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव काफी गंभीर हो सकते हैं। ऐसे फल खाने से सिरदर्द, पेट दर्द, उल्टी, आंखों में जलन, त्वचा संबंधी कई प्रकार की समस्याएं भी हो सकती हैं। लंबे समय तक इनका सेवन करने से लीवर और किडनी भी पूरे तरीके से प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों की अगर हम माने तो रसायनों से पकाए गए फलों में प्राकृतिक स्वाद और पोषण की कमी हो जाती है, यानी हम फल तो खा रहे हैं लेकिन शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ऐसे फल और भी ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। अब बात ये आती है कि इन फलों को हम पहचाने कैसे, कि ये कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए हैं। तो इन फलों को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि प्राकृतिक रूप से पके फल धीरे धीरे रंग बदलते हैं, जबकि रसायनों से पके फल बाहर से पूरी तरह पीले या लाल दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से कच्चे होते हैं। ऐसे फलों में प्राकृतिक खुशबू कम होती है। केले या आम पर काले धब्बे या असमान रंग दिखाई दे सकते हैं। फल जरूरत से ज्यादा चमकदार दिखे तो सावधान हो जाना चाहिए। काटने पर यदि फल का अंदरूनी हिस्सा सख्त या फीका लगे तो समझिए कि इसे कृत्रिम रूप से पकाया गया है। अब अगर आपने कृत्रिम रूप से पकाए गए फलों का सेवन कर लिया है और कुछ

श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम। सांझ सरगम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म आशिकी 2 के इस गीत के साथ।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म फना से। इसे गाया है शान और कैलाश खेर ने, संगीत जतिन ललित का है और बोल है प्रसून जोशी के।

0: इस गीत के साथ ही हमारा आज का एक कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। यह रिपोर्ट व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य देश भर में मुस्लिम महिलाओं के कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन प्रमंडल की ओर से आज हाथी पीड़ित ग्रामीणों के बीच मुआवजा राशि का वितरण किया गया। डीएफओ अविरूप सिन्हा के नेतृत्व में ससंगदा रेंज अंतर्गत भनगांव और नवागांव के ग्रामीणों को सहायता राशि प्रदान की गई। यह कार्यक्रम ससंगदा रेंज कार्यालय में आयोजित हुआ, जहां हाथियों के हमले में घर टूटने, फसल बर्बाद होने और जान माल की क्षति झेलने वाले ग्रामीणों को मुखिया लिपि मुंडा की मौजूदगी में वन विभाग के अधिकारियों ने चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया। जमशेदपुर में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने रात्रि गश्ती और टेंगो मोबाइल की निगरानी तेज कर दी है। इसी अभियान के तहत टेलको थाना पुलिस ने बंद घर में चोरी की कोशिश कर रहे एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पूछताछ में इन्होंने कई थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात कबूल की। खूंटी में ईद उल अजहा के मौके पर उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन नमाज अदा करने के बाद लोगों से गले मिले और खूंटी के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिठाई खिलाई। इस अवसर पर खूंटी उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन तथा एसपी ऋषभ गर्ग ने जिलेवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी समुदाय के सहयोग से ईद उल अजहा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इधर लोहरदगा जिले में भी मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा ईद उल अजहा शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर क्षेत्र के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में निर्धारित समय पर मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा नमाज अदा की गई। लोहरदगा ईदगाह में पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने भी नमाज अदा की और लोगों को बकरीद की मुबारकबाद दी। मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे और अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आ जाइए अपने रेडियो के करीब, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अंकिता,
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त निकिता।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। तेज धूप, गर्म हवाएं और पसीना, ये सब इस मौसम की पहचान है। ऐसे मौसम में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अपने खान पान का ध्यान रखें। तो आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में रखें अपने खान पान का ध्यान पर।
1: दोस्तों, गर्मियों में हमारा शरीर बहुत जल्दी थक जाता है। ज्यादा पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी होने लगती है। अगर हम सही खान पान ना रखें तो कमजोरी, चक्कर और कई बार तबीयत भी खराब हो सकती है।
0: बिल्कुल निकिता, इसीलिए सबसे जरूरी है कि हम दिन भर खूब पानी पिएं। घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखें। सिर्फ पानी ही नहीं, नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, ताजे फलों की जूस भी शरीर को ठंडा और तरोताजा रखता है।
1: गर्मियों में हल्का और ताजा खाना खाना सबसे अच्छा होता है। बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला खाना शरीर को भारी बना देता है। इस मौसम में हरी सब्जियां, दही, सलाद और मौसमी फल खाना बहुत फायदेमंद होता है।
0: तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी जैसे फल शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते, ये शरीर को ताजगी महसूस कराते हैं।
1: दोस्तों, कई बार बच्चे और बड़े गर्मियों में बाहर का ठंडा और जंक फूड ज्यादा खाना पसंद करते हैं, लेकिन ज्यादा आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और बाहर का खुला खाना हमारी सेहत खराब कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि घर का साफ और ताजा खाना ही खाएं।
0: गर्मी के मौसम में समय पर खाना खाना भी बहुत जरूरी है। खाली पेट ज्यादा देर तक रहने से कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेकिन समय पर खाना चाहिए।
1: बिल्कुल अंकिता, इस मौसम में साफ सफाई का भी खास ध्यान रखें। बासी खाना खाने से पेट खराब हो सकता है, इसलिए हमेशा साफ और ताजा खाना ही खाएं।
0: और दोस्तों, अच्छी सेहत हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपने खान पान का ध्यान रखेंगे तो गर्मी का मौसम भी आसानी से और स्वस्थ तरीके से निकल जाएगा, क्यों नहीं कहता।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, गर्मी के मौसम में हमारे पारंपरिक देसी पेय भी शरीर को ठंडक और ताकत देने का काम करते हैं, जैसे ठंडा आम पन्ना जो लू से बचाने में मदद करता है, सत्तू का शरबत जो शरीर को ऊर्जा देता है, छाछ, बेल का शरबत और नींबू पानी जैसे देसी पेय गर्मी में बहुत फायदेमंद होता है।
0: और निकिता, ये सिर्फ स्वाद में अच्छे नहीं होते बल्कि शरीर को अंदर से ठंडा और तरोताजा भी रखते हैं। इसलिए इस गर्मी में बाहर की कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा अपनी देशी और स्वस्थ पेयों पर अपनाएं, क्योंकि स्वाद के साथ साथ सेहत का भी खजाना है। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों आगे बढ़ते हुए आइए हम बात करते हैं आज ही के दिन इतिहास में घटित कुछ घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
1: महान स्वतंत्रता सेनानी लेखक और राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1833 को आज ही के दिन हुआ था।
0: मशहूर जासूसी किरदार जेम्स बॉन्ड के रचनाकार और ब्रिटिश लेखक यान फ्लेमिंग का जन्म आज ही के दिन 1908 में हुआ था।
1: जर्मनी की मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी वोक्सवैगन की स्थापना आज ही के दिन 1937 में हुई थी।
0: 28 मई 1959 में अमेरिका ने दो बंदरों एबल और बेकर को अंतरिक्ष में भेजा जिन्होंने सफलतापूर्वक अपनी यात्रा पूरी की।
1: आज ही के दिन 1967 में 65 वर्षीय ब्रिटिश नाविक सर फ्रांसिस चेस्टर अकेले नाव में पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर अपने देश लौटे थे।
0: और 28 मई 2008 को नेपाल की संसद ने 2040 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर देश को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया था। और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे कुछ रोचक तथ्यों पर जिन्हें सुनकर आपको हंसी भी आएगी और वे रोचक भी लगेंगे। दोस्तों सबसे पहला रोचक तथ्य ये है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं तो याद रखिए जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वे ज़्यादा जीवंत यानी कि विविड सपने भी देखते हैं।
1: दोस्तों ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं और जब वह तैरता है तो उसका एक दिल कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है।
0: और तीसरा अमेजिंग फैक्ट ये है कि शहद कभी खराब नहीं होती, हजारों साल पुराना शहद भी खाने लायक पाया जाता है।
1: और दोस्तों जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग काफी सक्रिय रहता है और कई बार जागने से भी ज्यादा।
0: तितली अपने पैरों से स्वाद पहचानती है, उसके पैरों में टेस्ट सेंसर्स होते हैं।
1: दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फेशियल एक्सप्रेशन हल्की मुस्कान है जो है कि पूरा हंसना नहीं है।
0: जंगल में पेड़ आपस में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों जंगल में पेड़ आपस में बात करते हैं, उनकी जड़ें और फंगी नेटवर्क न्यूट्रिएंट्स और सिग्नल्स भेजते हैं, इसे वुड वाइड वेब भी कहते हैं। और दोस्तों दुनिया की कुछ पुरानी किताबों में टाइटल पेज नहीं होती थी क्योंकि पहले किताबों का नाम आखिरी पेज पर लिखा जाता था। और इसके साथ ही क्या आपने महसूस किया है कि पुरानी किताबों की एक अलग सी खुशबू होती है, यह खुशबू असल में कागज के धीरे धीरे टूटने से निकलने वाले केमिकल्स की वजह से होती है। और पुराने किताबों की खुशबू दिमाग को सुकून भी देती है। तो दोस्तों इसी के साथ आइए हम लेते एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, चलिए इसी के साथ बात करते हैं कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। आप सबने नोटिस किया होगा कि जब हम बोर होते हैं तो समय काफ़ी धीरे चलता है लगता है, लेकिन जब हम खुश होते हैं तो दिमाग समय को कंप्रेस कर देता है और इसीलिए अच्छा वक्त जल्दी बीत जाता है।
1: और दोस्तों, ये अमेजिंग फैक्ट्स स्पोर्ट्स लवर के लिए काफ़ी रोचक होगा, खासकर जिन्हें बास्केटबॉल खेलने में दिलचस्पी है। दोस्तों, बास्केटबॉल जैसे खेलों में प्लेयर सिर्फ मसल से नहीं पेरिफेरल विजन से जीतते हैं, यानी आंखों के किनारों से देखने की ताकत उनका सबसे बड़ा वेपन होता है।
0: और दोस्तों, हमारे यह अमेजिंग फैक्ट हमारे उन दोस्तों के लिए है जिन्हें किताबें पढ़ना काफ़ी पसंद है। दोस्तों, रिसर्च बताती है कि रेगुलर रीडिंग से इंसान ज़्यादा सहानुभूति यानी कि एम्पैथेटिक बन जाता है, यानी दूसरों के इमोशंस को बेहतर समझने लगता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में खुला, या केरल का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय है और भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय भी है।
0: रांची में आयोजित फेडरेशन कप में 10.09 सेकंड का समय निकालकर भारतीय स्प्रिंटर गुरविंदर सिंह पुरुषों के 100 मीटर दौड़ में अब तक के सबसे तेज भारतीय बन गए हैं। साथ ही साथ हरिबाबू कंभपति ने उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली।
1: भारतीय ऑलराउंडर विजय शंकर ने विदेशी लीग्स में खेलने के लिए घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले लिया है।
0: भारत ने उड़ीसा के चंदीपुर में अग्निवन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
1: वैश्विक प्रचार को बढ़ावा देने हेतु आयुष एक्सेल ने आयुष उत्पादों और औषधीय मसालों के वैश्विक प्रचार के लिए स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं और एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: निकिता, आजकल गर्मी इतनी बढ़ गई है कि बाहर निकलते ही थकान होने लगती है।
1: हाँ अंकिता, इसलिए मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को हाइड्रेटेड रखना। लोग काम में बिजी होकर पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन शरीर को हेल्दी रखने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। साथ ही तेज़ धूप और एक्सेस हीट से बचना भी ज़रूरी है।
0: और साथ ही दोपहर के समय कम बाहर निकलना चाहिए, और अगर निकलना पड़े तो छाता, कैप या स्कार्फ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम और साथ ही गर्मी के मौसम में हल्के और ढीले कपड़े पहनना सबसे अच्छा होता है। कॉटन कपड़े शरीर को ठंडक देते हैं और पसीना आसानी से सोख लेते हैं, जिससे आराम महसूस होता है।
1: हाँ, और साथ ही शरीर में पानी की कमी होने से कमजोरी और सिर दर्द और साथ ही साथ डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए समय समय पर पानी पीना चाहिए और साथ में नींबू पानी, छाछ, जूस या नारियल पानी जैसी हेल्दी चीज़ें भी लेनी चाहिए।
0: और साथ ही हल्का और हेल्दी खाना चाहिए और ज़्यादा ऑयली चीज़ें से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम गर्मियों में सही खान पान और सावधानी रखें तो आसानी से खुद को फिट और एनर्जेटिक भी रख सकते हैं।
1: और दोस्तों, गर्मियों के मौसम में बच्चे और बुजुर्गों का खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है।

0: बच्चे अक्सर खेलते खेलते पानी पीना भूल जाते हैं और तेज धूप में बाहर निकल जाते हैं। वहीं बुजुर्गों को जल्दी थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है, इसलिए घर के सभी लोगों को समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए और ज्यादा देर तक धूप में रहने से बचना चाहिए।
1: बिल्कुल निकिता, क्योंकि गर्मियों में हेल्दी रहने का सबसे आसान तरीका है बी हाइड्रेटेड एंड अवॉइड एक्सेस हीट। हमें दिन भर पर्याप्त पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में एनर्जी बनी रहे और डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। साथ ही तेज धूप और ज्यादा गर्मी से बचना भी जरूरी है, क्योंकि इससे कमजोरी और थकान जल्दी महसूस होती है।
0: हाँ दोस्तों, गर्मी के मौसम में सिर्फ शरीर ही नहीं मन को भी ठंडा रखना चाहिए। बहुत ज्यादा तनाव और गुस्सा भी हमें थका हुआ महसूस कराता है, इसलिए खुश रहिए, हल्का खाना खाइए, खूब पानी पीजिए और अपने दिन को आराम और सकारात्मक सोच के साथ बिताइए। क्योंकि जब हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, तभी हम हर मौसम का आनंद अच्छे से ले पाते हैं। तो दोस्तों, बातें तो आपसे और भी करनी थी, पर अब वक्त हो चला है, तो दीजिए आपकी दोस्त निकिता
1: और आपकी दोस्त अंकिता,
0: को इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: त्याग, समर्पण, इंसानियत और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का पर्व है बकरीद, जिसे ईद उल अजहा भी कहा जाता है। आप सभी श्रमिक साथियों को मेरी ओर से बकरीद पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं महिमा और मेरे साथ है रंजना। नमस्कार रंजना।
1: नमस्कार महिमा, जोहार। और सभी साथियों को मेरी ओर से भी बकरीद की ढेरों शुभकामनाएं। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है साथियों, यह जीवन को सही दिशा देने का नाम है। निस्वार्थ त्याग और बलिदान को समर्पित यह पर्व पूरे विश्व में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
0: और साथियों, यह पर्व बेहद ही खास है। इस पर्व से सभी को सीखने की जरूरत है कि ईश्वर की राह में और समाज की भलाई के लिए अपनी प्रिय और मूल्यवान चीजों को छोड़ने से भी परहेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
1: कितना अच्छा संदेश है ना महिमा। आज जब लोग अपनी छोटी सी चीज भी देने से हिचकिचाते हैं, कोई किसी का सामान ले लिया तो इसके लिए लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इस पर्व से सभी को सीखने की जरूरत है कि इंसानियत का धर्म सबसे पहला है।
0: और इंसानियत यह सिखाता भी है कि त्याग पुण्य है। जब कोई इंसान त्याग करता है तो वह पुरानी या फिर बोलेंगे कि पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए ही बात समझी जाती है।
1: और आज संसार में बहुत सारे लोग अहंकार, क्रोध, लालच, स्वार्थ सहित दूसरी बुराइयों में फंसे हुए हैं।
0: ये तो आपने बहुत सही कहा। इसीलिए तो समाज में लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और कार्यक्षेत्र में भी एक दूसरे की बुराई करने से पीछे नहीं हटते हैं।
1: कई बार तो महिमा, जो अच्छा काम कर रहे होते हैं उन्हें भी ऋषवश आगे बढ़ने नहीं देते लोग। कार्यस्थल में लालच और स्वार्थवश भ्रष्टाचार भी बढ़ जाते हैं।
0: इन्हीं बुराइयों को तो जड़ से हटाने का संदेश या पर्व बकरीद देता है। सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई सहित दूसरे धर्मों में भी अहंकार और बुराई को दूर करने की शिक्षा दी जाती है।
1: हाँ साथियों, आइए इस पर्व के अवसर पर उन बुराइयों को त्याग कर मानवता के प्रति प्रेम को जीवन में शामिल करने की शुरुआत करें।
0: साथियों, यह पर्व हजरत इब्राहिम और उनके बेटे के अटूट प्यार, विश्वास और सर्वोच्च बलिदान को दर्शाता है। बुजुर्ग अवस्था में जब हजरत इब्राहिम को अल्लाह की कृपा से पुत्र प्राप्ति हुई थी तो वे अपने पुत्र को बहुत प्यार करते थे।
1: और जब एक रात उन्हें सपने में अल्लाह का हुक्म मिला कि जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसे मेरे लिए बलिदान करो, हजरत इब्राहिम सबसे ज्यादा अपने पुत्र से प्रेम करते थे, इसीलिए उसे कुर्बान के लिए वो लेकर गए।
0: कुर्बानी के स्थान पर जब वे अपने बेटे को कुर्बान करने गए थे या कुर्बान करने वाले थे, उसी समय ऐसा चमत्कार हुआ कि हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह एक भेड़ अल्लाह की ओर से रख दिया गया और उसे कुर्बान किया गया।
1: हाँ साथियों, हजरत इब्राहिम समझ गए कि उसकी परीक्षा हो रही थी। इसी घटना को याद करते हुए बकरीद या ईद उल अजहा का पर्व मनाया जाता है।
0: यह पर्व हमें यह भी संदेश देता है कि ईश्वर के प्रति अटूट रिश्ता बनाए रखना चाहिए। साथियों, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, ईश्वर पर आस्था बनाए रखनी ही चाहिए।
1: यह पर्व उन साथियों को मजबूत संदेश देती है जो कार्यस्थल में विपरीत परिस्थिति आने पर कमजोर हो जाते हैं। साथियों, चाहे जो भी हो, आप ईश्वर पर आस्था बनाकर रखें, गलत का संदेश बिल्कुल ना दें।
0: कितनी अच्छी बात है नरंजना, यह पर्व अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल, इस पर्व के संदेश से सभी साथियों को सीखने और दूसरों को सिखाने की जरूरत भी है।
0: साथियों, फिर आप सभी को बकरीद, ईद उल अजहा की ढेरों शुभकामनाएं।
1: और अब इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथी से हमने की और वो हमें सुन भी रहे हैं सिर्फ आकाशवाणी के कारण से।
0: कितनी अच्छी बात है ना कि आकाशवाणी काफी लंबा सफर तय किया है, कह सकते हैं कि अनगिनत यादों को संजो कर रखा है।
1: भारत और इस विश्व को बहुत ही करीब से देखा भी है, कितनी कहानियां, कितनी बातों को समेटा है।
0: पता है रंजना, जब मैं छोटी थी तो रेडियो पर कार्यक्रमों को सुनती थी। जब मैं दादी का सिमडेगा जाती थी तो देखती थी कितने लोग रेडियो के सेट को पकड़ करके किनारे बैठे हुए हैं और आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुन भी रहे हैं।
1: और साथियों, ये बहुत ही मतलब सुलभ था
0: जी।
1: ना इसमें कोई पैसे खर्च होते थे और मैं भी घर में कुछ काम करते हुए आकाशवाणी के कार्यक्रमों को हमेशा सुनती हूँ और अब भी मैं और मेरा परिवार भी सुनता है।
0: कह सकते हैं कि रेडियो के साथ जो कनेक्शन है, रिश्ता है, वो दिल का रिश्ता है। हंसी मजाक, समाचार, गाने, ड्रामा, जानकारी की बातें आकाशवाणी के माध्यम से सुनना बहुत अच्छा लगता है।
1: और सबसे मजा तो तब आता है ना जब क्रिकेट की कमेंट्री
0: बिल्कुल
1: और चाय की चुस्की बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन है। ठंडी ठंडी हवाओं के बीच पुरानी मधुर गीत कानों में पड़ती है ना तो दिल बिल्कुल खुश यानी बाग बाग हो जाता है।
0: और मैं तो कई श्रमिक साथियों को जानती भी हूँ जो आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते हुए अपने कार्यों को करते हैं, उनका काम भी हो जाता है और उन्हें थकावट भी नहीं होती।
1: बिल्कुल, उन्हें पता ही नहीं चलता कि समय कैसे कट गया और हमारा काम खत्म हो गया। और बहुत ही अच्छा ये सवाल है कि आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते हुए मैं भी अपनी चिंता तो बिल्कुल भूल जाती हूँ, चेहरे में मुस्कान आ जाती है और मेरी, आपने जो कहा वो मेरे मुंह की बात भी आपने छीन ली, मेरी भी मुस्कान आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते ही आ जाती है।
0: जो मैं देख पा रही हूँ कि जैसे आकाशवाणी की बात की जा रही है, आपके जो चेहरे है उसकी जो खुशी है, शोभा, वो झलक रही है। और बहुत सारे साथी तो देश दुनिया की खबर आकाशवाणी के समाचार सुनते ही ले लेते हैं। कृषि के क्षेत्र से जुड़े साथियों को भी बहुत उम्दा जानकारियां दी जाती है। जब भी कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उन्हें जागरूक भी आकाशवाणी के माध्यम से की जाती है।
1: और सबसे अच्छी बात है ना साथियों कि अगर आपके पास लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, गांव में, कस्बों में रहते हैं, तो ये रेडियो बहुत ही काम आता है।
0: बिल्कुल,
1: और मुझे बहुत गर्व है आकाशवाणी से जुड़ी रहने का। मैं तो यह कहूंगी कि पहले मैं श्रोता के रूप में जुड़ी थी और अब आप प्रस्तुतकर्ता के रूप में हूँ मैं।
0: बिल्कुल, और ये हम दोनों के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि हम दोनों आकाशवाणी के माध्यम से श्रमिक साथियों को बहुत सारी जानकारियां दे पा रहे हैं। और जैसे भी आपने कहा कि श्रोता प्रस्तुता के रूप, प्रस्तुतकर्ता के रूप में जुड़ी हुई है, तो भले ही जिस रूप में भी जुड़े हुए, सबका अपना ही अलग मजा है। तो साथियों, क्यों ना मजा को दुगना किया जाए और सुना जाए एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम

0: Store or App Store and start reporting.
1: साथियों, छोटे से अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम में। और अब हम हर दिन की तरह कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम महिमा हर दिन नई नई जानकारियों के साथ हाजिर होते हैं ना।
2: बिल्कुल।
1: तो आज भी हम एक नई जानकारी के साथ हैं। हमें बताना है साथियों की को कि ऊर्जा की बचत हमें कैसे करना है, क्योंकि अभी गर्मी का दिन है ना। तो ऊर्जा की बचत बहुत जरूरी है, इसे संरक्षण करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए आपको विस्तार से जानकारी दे रही हैं ओमो स्टोपनो और उनसे बातचीत कर रही हैं महिमा गोल्डन बिलुम।
3: हर साथियों, आज ऊर्जा एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो हमारी जिंदगी को संचालित करती है। घरों में, कार्य क्षेत्रों में प्रकाश गर्मी प्रदान करती है। बिना ऊर्जा के हमारी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी होती है। ऊर्जा जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है उसकी बचत करना। ऊर्जा की बचत जरूरी है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है गौसन कॉलेज के प्रोफेसर आमो स्टोपनो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्रमिक लोक में।
4: धन्यवाद मैम।
3: सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर कि ऊर्जा आखिर है क्या?
4: देखिए, ऊर्जा को अगर हम परिभाषित करें तो इसे कह सकते हैं कि यह काम करने की क्षमता है। लेकिन जनसाधारण के लिए इस परिभाषा से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। जैसे वो हमेशा देखते हैं लोग, जैसे बिजली आ रही है
3: जी,
4: या फिर कोई मैकेनिकल मोटर, गाड़ी में कुछ काम हो रहा है, मोटर चल रहा है, ये सारी चीजें जो है ऊर्जा को प्रयोग कर रही है। और इनका जो स्रोत है वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है ये जनसाधारण के लिए, ताकि उसका संरक्षण के लिए लोग काम कर सके।
3: जी, आपने बहुत बहुत बड़ी जानकारी दी हमारे साथियों को, ऊर्जा के बारे में बताया। सर, आपसे और जानना चाहेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा आखिर क्या है? बहुत सारे लोग बातचीत करते नवीकरणीय ऊर्जा बचाना है और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, तो आखिर ये क्या होते हैं?
4: अगर साधारण सी बात में बोला जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा वह है जो कि कभी भी खत्म नहीं होंगी
3: जी।
4: और गैर नवीकरणीय ऊर्जा वो है जो एक सीमित मात्रा में मौजूद है और वो खत्म हो जाएगी। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तो ये सारी चीजें एक ना एक दिन समाप्त होना ही है। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा जैसे हमारे पास सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फिर जियोथर्मल एनर्जी, ये सारी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी और इनका हम लोग प्रयोग हमेशा के लिए कर सकते हैं।
3: सर, और आपसे जानना चाहेंगे कि आज के समय में नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा की बचत करने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वैसे कौन कौन सी चुनौती है जिनका सामना हमें करना पड़ रहा है?
4: सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जनसाधारण को पता ही नहीं है कि इन ऊर्जा का संरक्षण कैसे करना है। जैसे एक शब्द है जिसे कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट
3: जी।
4: तो हर एक व्यक्ति अपने पीछे कुछ कार्बन का उत्सर्जन छोड़ देता है और ये सारे मिलकर के पर्यावरण को बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो इस कार्बन फुटप्रिंट को पहले समझना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति का इसका क्या योगदान है। इसमें लोगों को समझाना पड़ेगा और बहुत सारे कैंपेन चलाने पड़ेंगे जिसमें समझे कि कार्बन फुटप्रिंट को हर एक व्यक्ति कैसे कम करेगा और जिससे नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा को बचत करने में उनको सहायता होगी।
3: और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अपने कार्य क्षेत्रों में ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, तो आप हमारे साथियों को बतलाइए कि कार्य क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत क्यों करनी चाहिए?
4: इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला अगर देखा जाए इकोनॉमिकली क्या फायदा है कि जितना कम अगर हम लोग ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि कोई बिजली का उत्सर्जन होता है किसी जगह पे और हमारे पास डिमांड है सपोज की 500 मेगावाट की, लेकिन अगर सभी व्यक्ति एनर्जी को बचाएंगे तो ये डिमांड भी कम होगी और इससे इकोनॉमी को भी काफी फायदा मिलेगा कि उन बाकी जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है दूसरी जगह छोड़ा जा सके। इसके अलावा अगर जैसे जैसे ही हम लोग ऊर्जा का प्रयोग जो है वो अगर कम करेंगे, बचाएंगे, तो इससे बहुत जगह पे जो बिजली का लोड है वो भी कम होते जाएगा। ऊर्जा सिर्फ बिजली के से सीमित ना रखे, अगर हम लोग कोई परिवहन के थ्रू भी आ रहे हैं, जैसे कोई बहुत सारे अगर अपना पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो उससे ना आके सारे एक साथ अगर आए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे तो वहां भी ऊर्जा का बचत होगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें जो भी हम लोग पास गैर नवीकरणीय ऊर्जा है जैसे कोयला हो गया, तो इसका प्रयोग हम लोग बहुत सारे जगह पे बिजली बनाने के लिए काम कर रहे हैं या फिर तेल निकालने काम कर रहे हैं, तो साधारणतः ये सारी

0: नवी करनी ऊर्जा आपस में मिली हुई है और सब एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगी।
1: जी आपने बिल्कुल सही कहा कि ऊर्जा की बचत करने से बहुत सारे फायदे भी है। तो मैं आपसे और जानना चाहती हूँ कि जब हमारे साथी घरों में रहते हैं या बहुत सारे ऐसे श्रोता है जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो वो जब घर में रहते हैं तो ऊर्जा की बचत कैसे की जा सकती है?
0: जी इसका मैं फिर से वही जवाब दूंगा कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। जैसे कार्बन फुटप्रिंट अगर देखा जाए तो क्या क्या चीजों से बच सकता है, कोई एक साधारण व्यक्ति कैसे उसे कम कर सकता है, तो पहले सवाल में कार्बन फुटप्रिंट है क्या। जैसे कोई व्यक्ति कहीं पे अगर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ले रहा है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा है, यहाँ तक कि वो अलग तरह का खाना भी खा रहा है या फिर कुछ कचरा या फिर कोई सर्विस ले रहा है, तो इन सब के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है। तो इसको अगर हर एक व्यक्ति अपनी दिनचर्या में बदलाव करेगा कि उसको बहुत सारे जैसे एनिमल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में नहीं खाना है, फिर अगर आप लोग एनर्जी यूज कर रहे हैं तो स्मार्ट मीटर्स के साथ जो लगे हुए चीजें रहती है, जैसे स्मार्ट आपका इंडक्शन हो गया, स्मार्ट हीटर हो गया, इसका उपयोग करना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना है, और वेस्ट प्रोडक्ट भी है कि उसको ई वेस्ट अलग करना है, तो ये सारी चीज में जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है इसको कम करेगा और एक हर एक साधारण व्यक्ति भी ऊर्जा की बहुत ज्यादा बचत कर सकता है।
1: जी और हमारे जो श्रमिक साथी है बहुत ही मेहनत से वो अपनी कमाई को करते हैं और साथ ही साथ जो हमारे श्रमिक साथी वो मौसम की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो हर एक मौसम में अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं और बहुत ही मेहनत से वो काम भी करते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऊर्जा की बचत करके हम जो हमारे जो श्रमिक साथी है वो मेहनत की कमाई को कैसे बचा सकते हैं?
0: ये ऊर्जा का अगर बचत करना है पहला तो घर से ही शुरू करना पड़ेगा कि जितने भी बिजली बिल अगर बचेगा तो अपने आप लोगों की कम आ जाएगी उनकी जो खर्च है। इसके अलावा अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो वहां भी ऊर्जा की बचत होगी, वहां भी पैसे बचेंगे। तो देखने के लिए मात्र लग रहा है कि 100-200 रुपए बचा के क्या होंगे, लेकिन अगर आप सोचिए कि 1,00,000 लोग अगर एक साल में 100 रुपए भी बचा रहे हैं तो वो आपके करोड़ों रुपए बच सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ये धारणा लाने पड़ेगी लोगों को कि ये सिर्फ मेरा काम नहीं है बल्कि ये जनसाधारण हर एक व्यक्ति का काम है कि ऊर्जा को बचाना है, और जिससे कि जो पैसे बचेंगे वो फिर सरकार आपके ही भलाई के लिए लगा सकती है।
1: जी आपने बहुत सही जानकारी दी हमारे साथियों को कि मेहनत की कमाई को बचाना है तो ऊर्जा की बचत भी करनी चाहिए। सर समाज के लोगों के लिए ऊर्जा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके किस तरह हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं?
0: जी इससे ये इस तरह के कार्यक्रम का होना बहुत ही जरूरी, जैसे स्कूल कॉलेजों में तो ये कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे नुक्कड़ नाटक भी हम लोग कर सकते हैं जिसके द्वारा ये बताएंगे कि किस तरह से हम लोगों को ऊर्जा का संरक्षण करना है। जैसे कि अगर सिंपल आज देखा जाए कि अगर कोई फ्रिज खरीदने जाता है बाजार, तो वो सोचता है कि 2 स्टार फ्रिज खरीदेगा और उससे अपना पैसा बचा लेगा, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि अगर वो 5 स्टार फ्रिज से कंपेयर करे तो 1 साल में उसके करीब 2,000 रुपए यूं ही बच जाएंगे। तो ये जो 2,000 बचा है वो तो 1 साल में ही निकल के आ गया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, इसके अलावा अगर वो जाते हैं कोई थर्मोस्टैट लेते हैं हीटर, तो वो स्मार्ट हीटर ले कि हाँ जिसमें ऑटो कट का फंक्शन हो, इन्वर्टर का फंक्शन हो, तो अगर लंबी दौरान में देखें तो ये जितना पैसा वो शुरू में बचा रहे हैं वो सारा उससे ज्यादा पैसा वो 3-4 साल इस्तेमाल के दौरान बचा सकते हैं। तो इस तरह की जागरूकता को लाना बहुत ही आवश्यक है हमारे समाज में।
1: जी और आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे श्रमिक साथियों को दी है। चर्चा को समाप्त करने से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को, हमारे श्रमिक साथियों को क्या विशेष संदेश देना चाहते हैं?
0: श्रोताओं को मैं यही कहूंगा कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए जितने भी चीजें अभी हमने आपको बताया उसको मानिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, और एक और चीज जिसको सरकार तो बहुत बढ़ावा दे रही है वो है कार्बन इमिशन फ्री व्हीकल, जिसको हम लोग कहते हैं बैटरी से संचालित होने वाले व्हीकल्स जो है, तो उन सारे वाहनों का इस्तेमाल आप जरूर करिए। ये नहीं सोचे कि आपकी इकोनॉमी के लिए आपको कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे ये सोचिए कि अगर आप बैटरी वाली गाड़ियां चलाते हैं तो आपको आप एनवायरमेंट को या पर्यावरण को आप कितना बचा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको भी धन्यवाद।
1: सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं को दी। हम उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा हमारे साथियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी और आप सभी देश के उज्जवल भविष्य के लिए ऊर्जा

0: की बचत जरूर करेंगे। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: साथियों अभी सुन रहे थे प्रोफेसर ओमस तोपनो से ऊर्जा की बचत के बारे में। सचमुच महिमा, उन्होंने बहुत ही अच्छी बहुत ही अहम बातें बताई हैं
3: और सभी साथियों को सीखने की जरूरत है कि ऊर्जा को हम हमेशा बचाएं, क्योंकि आज हम ऊर्जा को बचाएंगे तो हमारा जो भविष्य है वो भी सफल हो पाएगा। हाँ। और वो जो भविष्य है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से ऊर्जा का इस्तेमाल भी कर पाएगा।
2: हाँ। और अब इसी क्रम में थोड़ी और भी जानकारी दे देते हैं हम अपने श्रमिक साथियों को। दोस्तों इतिहास के किताबों में अक्सर कुछ पन्ने धुंधले रह जाते हैं, लेकिन उन पन्नों पर लिखे विचार हमेशा चमकते रहते हैं।
3: जी हाँ साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनकी जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है।
2: स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर, आज हम उनके एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो आज के समाज के लिए सबसे जरूरी है, उनका सामाजिक समानता का संदेश।
3: हाँ, जब भी वीर सावरकर का नाम आता है तो हमारे जेहन में काले पानी की सजा, सेल्यूलर जेल और प्रखर राष्ट्रवाद की छवि उभरती है।
2: सावरकर जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे और उनका स्पष्ट मानना था कि वो बिल्कुल साफ कहते थे, जब तक हमारा समाज अंदर से सशक्त, एकजुट और समान नहीं होगा तब तक हमारी आजादी के कोई मायने नहीं है।
3: कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि समानता, एकजुटता बहुत जरूरी है, जो हमारे भारत की नींव को मजबूत बनाती है। और उनके जो संदेश है, उनके संदेश को हर एक भारतीय को अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है, एकजुट रहने की जरूरत है, सशक्त बनाने की जरूरत है।
2: और उनका कहना था कि जिस दिन हमारा समाज जाति पाति के बंधनों से मुक्त होकर हर व्यक्ति को बराबर सम्मान देगा उसी दिन सच्ची राष्ट्र का निर्माण होगा। उन्होंने, जानती हो महिमा, एक मंदिर की स्थापना की थी, पतित पावन मंदिर। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत थी यहाँ समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को ससम्मान प्रवेश और पूजा का अधिकार था।
3: कितनी बड़ी बात।
2: उन्होंने सहभोजन यानी कम्युनिटी डाइनिंग की भी शुरुआत की, जहाँ समाज के सभी वर्गों के लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे। सावरकर जी का मानना था कि हिंदू समाज की सभी बेड़ियों को काटकर हर वर्ग को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया।
3: बहुत अच्छी बात कही आपने रंजना, कि समाज के सभी वर्गों को एक साथ बैठकर खाना खाने के लिए उन्होंने कम्युनिटी डाइनिंग की शुरुआत की। और मुझे लगता है कि ऐसी जो कम्युनिटी है, ऐसी डाइनिंग, वो हर गली में, हर मोहल्ले में होनी ही चाहिए।
2: और संदेश केवल इतिहास के पन्नों में नहीं सहेजने से काम चलेगा साथियों, इसे अपने आचरण में उतारने के लिए जरूरी है।
3: बिल्कुल।
2: समाज के हर वर्ग को, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो या किसी भी पृष्ठभूमि से हो, उन्हें सम्मान और समानता देना ही वीर सावरकर को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
3: तो आइए हम इस विशेष दिन पर सभी मिलकर यह संकल्प ले कि एक समरस और अखंड समाज का निर्माण करेंगे, जहां हर नागरिक गर्व से कह सकेंगे कि हम सब एक हैं।
2: और अब साथियों इसी क्रम में और भी एक विशेष जानकारी देते हैं। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आपको घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कुछ भी पार्सल मंगाते हैं या खाने की, तो बस कुछ ही मिनटों में धूप है वो या बारिश, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके दरवाजे पर खाना या पार्सल लेकर खड़ा होता है। तो इन्हें ही हम कहते हैं गिग वर्कर्स या डिलीवरी पार्टनर्स। हमारे घर की साफ सफाई करने वाली, कंस्ट्रक्शन साइट पर पसीना बहाने वाले, ये सब आते हैं असंगठित क्षेत्र में।
3: हाँ दोस्तों, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि देश की रीढ़ कहे जाने वाले इन करोड़ों भाई बहनों का भविष्य कितना सुरक्षित है? आज हम आपको जानकारी देंगे नई श्रम संहिता और इनकी क्या खास बात है उनके बारे में।
2: सबसे पहले तो अब कंपनियों को इन अस्थायी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के लिए एक फंड में योगदान देना होगा। इसके तहत इन वर्कर्स को लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर, हेल्थ बेनिफिट्स और मैटरनिटी जैसे लाभ, बुनियादी जितनी है सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ करना है।
3: एग्रीगेटर कंपनियों को भी आगे बढ़कर नियमों को अपनाना होगा, क्योंकि जो वर्कर हम इतनी सहूलियत देते हैं उनकी सेहत और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी और सिस्टम की बनती है।
2: साथियों अंत में इतना कहूंगी कि हर कामगार का सम्मान ही एक सशक्त

0: राष्ट्र की पहचान है, तो वो जब भी अब आपके घर पे आए तो उन्हें एक प्यारी सी मुस्कान के साथ थैंक यू जरूर कहिए।
1: बिल्कुल, तो बातें तो बहुत सी थी पर अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अपनी दोस्त महिमा
0: और रंजना को दें इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक, ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है। ये झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। सरायकेला खरसावां जिला में युवा भारत कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के संयोजन से नवागांव पंचायत भवन में महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय ग्राम पंचायत की मुखिया जयश्री बोदरा ने की। राज्य भर में आज ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा को लेकर प्रशासन सतर्क है और शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद मनाने को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बकरीद पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के प्रति दिखाए गए अटूट विश्वास, त्याग और समर्पण की याद में मनाई जाती है। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के बटसारा में कूटी काटने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। आज सुबह बटसारा गांव के एक खलिहान में ट्रैक्टर में लगी कूटी मशीन से पुआल काटने के दौरान उनका हाथ मशीन के अंदर चला गया और अधिक खून बह जाने से उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। पड़वा थाना की पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया। जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र की कीताडीह स्थित माखन गली में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को टाटानगर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी कीताडीह में किराए के कमरे में रह रहा था। वह गम्हरिया मलेरिया विभाग में तैनात था और पीड़िता के मकान के पास ही किराए पर रहता था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाइया सो भाई बहन मन के जुगनी बहन कर जोहार और मनोज भाई और के भी हमर तन से जोहार।
1: जोहार जोहार भाई, क्या हाल चाल है?
0: एकदम नगदे नगद है और बटले किसान है हाल समाचार। और देखो गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन में और खेती बाड़ी का किसान है
1: भाई? देखो नहीं, खेती बाड़ी कर बात करत ही देखन तो ऐसा रौद मन हो जाए कि खेत डाड़ में जाए को तनी मनी तनी दिक्कत लागे ले। लेकिन भाई खेती बाड़ी है, जाए तो जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी में हमरे के घूमे भी है और ये नखे कि हमरे के दिने बेरा घूमे के दिन में हमरे के

0: धूप से अपने के बचाए के भी राखे है कि नहीं। और देखो सांझे बिहाने तो हमरे के खेत में भ्रमण करे है, घूमे है, खेत में काका लगाए ही से के बढ़िया से देखे है, खेत में काका रोग मन लागत है से मन के भी ध्यान देवे है।
1: सही बात है बहन। और देखो खेत में जाए से पहले हमारे बहन के पानी कर व्यवस्था, खाए कर व्यवस्था, ये सब के ले के जाए है, चूँकि देखो अब बड़ बीमारी मन हो जाए तो फिर तो दिक्कतें है कि नहीं है कि नहीं।
0: बिल्कुल। और देखो हमारे खेती बाड़ी कर बात कर रहे थे तो खेती बाड़ी करे के लिए तो हमरे के कृषि यंत्र मन कर भी जरूरत हो वेला है कि नहीं। तो हमरे के खेती बाड़ी में कृषि यंत्र कर हमरे प्रयोग करीला तो हमरे के उकर रख रखाव कर भी ध्यान देवे के चाहिए। ये नहीं कि खेती बाड़ी कर प्रयोग कर ली और पानी में धूप में ऐसे ने रख दिली तो हमरे कर उकर से उकर जे लाइफ मतलब उम्र है वो कम हो चाहला, जंग लग जाए बरसात में जंग लगे कर संभावना रहेला, धूप में कोनो कोनो मशीनरी चीज है के तो खराब हो सकेला, तो हमरे के उकर रख रखाव का ध्यान देवे के। देखो अगर उपयोग कर रहे तो उके उपयोग करे कर पाछे सफाई कर भी ध्यान देवे के, साफ सफाई करे के है कि नहीं।
1: बहुत कोई किसान मन कह रहे हैं कि माटी उटी लागल रहे ला उसने जाके घर में रखे ना, तो माटी लागल चाहे कादो लागल नियर उसने घर में छोड़े के नखे। और संगे संगे देखो जे घर में हमने रखी ला नहीं तो बेस जगह रखे के, इसने कि माटी जगह रखा थी तो उसमें जंग रह कर सामान रह ला तो बढ़िया से प्लास्टिक ऊपर चाहे कौन सा ऊँचा ठाम रखे जे लोहा का सामान है ताकि वो जल्दी खराब ना हो कि नहीं।
0: एकदम। और देखो जे मशीन यंत्र है कृषि यंत्र जो घूमे वाला चीज मन है तो बैरिंग जिसके हमरे कहेला तो उकर में हमरे के तेल मन कर जो उपयोग करे चाहिए ग्रिसलिंग मन के लगाए चाहिए ताकि बढ़िया से उस सामान रहे, जंग नहीं लागे और अच्छा रहे ताकि उकर हमरे और दोबारा उकर से हमरे काम कर सकेला।
1: सही बात है बहन। और देखो जानकारी कर बात है तो बता दो चाहले कि आज कर कैसे काम कर प्रायोजक हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और आज सबसे पहले हमारे मन जानब मौसम कर हाल चाल, उसके बाद आज कर बात में हमारे मन के जानकारी देवे डॉक्टर रश्मि यादव और जे कि बतावें कि खरीफ फसल कर ले भूमि और जल प्रबंधन कर बारे में, एक बाद कृषि विकास गीत में सुनब मेघनाथ महतो और संगीवन कर गावल गीत, और नौ उम्र नौ फसल में आज कर एक ठो जानकारी है जे कि गर्मी में पशु कर प्रबंधन कर बारे में है नी। तनी मौसम मौसम के तेन बताओ तनी
0: और करीला मौसम से। मौसम विज्ञान विभाग बटले मिलल जानकारी के मुताबिक राज्य में तापमान में वृद्धि कर चलते उमस और गर्मी कर एहसास होलक है और आज का तापमान इतर आंकल गलक। राजधानी रांची कर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर कर अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री। डाल्टनगंज कर अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री। देवघर कर अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री। ओहेतर गढ़वा कर अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस आंकल गेलक रहे। तो ई रहे आज कर मौसम कर खबर।
1: और मौसम कर बात करेला तो भाई देखो मौसम तो एखन तीन गर्मी दिखा थे तो खेती बाड़ी दने हमारे मन जाब तो बढ़िया से सोच समझ के जाए के है कि नहीं। और देखो भाई एखन खरीफ फसल कर मौसम भी आवत है और हमरे के भूमि और जल प्रबंधन का बहुत जरूरी है तो इक्र बारे हमारे मन के जानकारी देते हैं डॉक्टर रश्मि यादव इनकर से के बतिया है खुद सुन ले।
0: इकर से बतिया है हमारे कर संगी मनोज कुमार।

जानकारी हमरे पाछे करब, पहले हमरे गीत के गीत कर रिझरंग कर करब और हमरे नागपुरी में लोकगीत सुनब मेघनाथ महतो और उकर संगी मनकर गावल गीत।

0: तो एक खाना अपने सुन ली मेघनाथ महतो और संजीवन कनगावल के, तभी कर बाद जानकारी करवा रही है। सभी का स्वागत है, नमस्कार। आज हम बात करेंगे खरीफ फसलों के लिए भूमि और जल प्रबंधन के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि यादव, कन्या वैज्ञानिक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। रश्मि जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं खरीफ फसल के बारे में, तो सबसे पहले हमारे किसान भाई को बताएं कि खरीफ फसलें क्या होती हैं, इनका महत्व क्या है।
1: खरीफ फसलें वे फसलें हैं जो मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और वर्षा ऋतु में बढ़ती हैं, जैसे धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, अरहर आदि। भारत में खरीफ फसलें खाद्य सुरक्षा और किसान के आय का मुख्य आधार है, इसीलिए इनके लिए सही भूमि एवं जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है।
0: आप बताएं कि झारखंड में खरीफ मौसम में कौन कौन सी फसलें प्रमुख हैं।
1: झारखंड में खरीफ मौसम के मुख्य फसलें धान है, मक्का है, अरहर, उड़द एवं मूंग, रागी एवं बाजरा, सोयाबीन और सब्जियों में जैसे भिंडी, मिर्च, टमाटर और लौकी जैसे फसलें हैं। इसमें धान सबसे प्रमुख फसल है, विशेषकर निचली भूमि क्षेत्रों में।
0: अच्छा, खरीफ फसल के जितने सारे बात बताएं कि सभी के लिए भूमि अलग जरूरत है कि सबका भूमि एक तरह का होना चाहिए।
1: भूमि समान होना चाहिए, बट जब जो निचली क्षेत्र है और जो ऊपर के क्षेत्र है उनमें फसल अलग अलग तरीके से बोने जाने से बेटर है।
0: खरीफ मौसम में भूमि प्रबंधन क्यों जरूरी होता है।
1: देखिए, झारखंड की खेती मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है। यहाँ औसतन 1000 से 1400 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन वर्षा का वितरण समान नहीं रहता। राज्य में अधिकतर भूमि ऊंची नीची एवं ढालदार तथा लाल बालुई मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है, इसीलिए भूमि एवं जल प्रबंधन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खरीफ मौसम में अधिक वर्षा होने से मिट्टी का कटाव, जल भराव और पोषक तत्व का नुकसान होता है। यदि भूमि का सही प्रबंधन किया जाए तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, नमी संरक्षित रहती है और फसल उत्पादन बढ़ता है।
0: अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड की मिट्टी में भूमि प्रबंधन कैसे किया जा सकता है।
1: झारखंड की अधिकांश मिट्टियाँ अम्लीय एवं हल्की बनावट वाली हैं, तो इसके लिए मेड़बंदी करना जिसमें वर्षा जल खेत में रुकता है, समुच्च जुताई यानी कंटूर फार्मिंग, ढालदार क्षेत्रों में मिट्टी कटाव कम होता है, जैविक खाद का प्रयोग जैसे कि गोबर खाद, कंपोस्ट एवं हरी खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, चूना का प्रयोग, अम्लीय मिट्टी में संतुलित मात्रा में चूना डालना लाभदायक होता है और फसल चक्र अपनाना, धान के साथ साथ दलहनी फसलें लेने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है।
0: झारखंड में वर्षा जल संरक्षण के कौन कौन से उपाय उपयोगी हैं।
1: झारखंड में वर्षा जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर वर्षा का पानी बहकर निकल जाता है, क्योंकि मिट्टी उसकी बालू एवं लैटेराइट मिट्टियां हैं, तो उससे पानी रुकता नहीं है। इसीलिए खेत तालाब निर्माण करना, डोभा निर्माण करना, कंटूर बंडिंग, चेकडैम एवं छोटी जल संरचनाएं, खेत की मजबूत मेड़बंदी, मल्चिंग तकनीक, इन उपायों से खेत में नमी बनी रहती है और रबी फसलें के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकता है। धान झारखंड की प्रमुख फसल है, लेकिन पारंपरिक पद्धति में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जैसे ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग तकनीक अपनाएं, खेत में 2 से 5 सेंटीमीटर से अधिक जल भराव लगातार ना रखें, सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन पद्धति अपनाने से 20 से 30% तक पानी की बचत हो सकती है, लेजर लैंड लेवलिंग सिंचाई दक्षता बढ़ाती है, जैसे नर्सरी एवं मुख्य खेत की समय पर तैयारी आवश्यक हो जाती है। झारखंड में टाड़ एवं ऊंची भूमि जल तेजी से निकल जाता है, इसलिए वहां मक्का, अरहर और रागी आधारित प्रणाली, दलहनी फसलें, कम अवधि वाली सूखा सहनशील किस्में अधिक उपयुक्त रहती है। साथ ही रिज एंड फरो सिस्टम अपनाने से वर्षा जल संरक्षण एवं जल निकास दोनों में सहायता मिलती है, और कभी कभी जल भराव की समस्याएं भी होती है खेत में, तो जल भराव की समस्याओं के लिए आप खेत में निकास नालियां बनाएं, उचित ढाल बनाए रखें, जल निकासी की नियमित सफाई करें, जल भराव सहनशील धान किस्मों का चयन करें, और आजकल तो आधुनिक तकनीक भी आने लगी है, जैसे आज मौसम आधारित कृषि सलाह, मोबाइल मोबाइल ऐप, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई तथा सेंसर आधारित सिंचाई तकनीकी किसानों की मदद कर रही है। इन तकनीकों से पानी की बचत होती है और उत्पादन लागत कम होती है।
0: खरीफ फसल के लिए जितने सारा जल प्रबंधन के बारे में बताएं, तो सभी फसलों का अलग अलग प्रबंधन जरूरी है कि सबके लिए एक समान होता है?
1: सबके लिए अलग अलग प्रबंधन है, क्योंकि सबका वाटर रिक्वायरमेंट अलग है, तो वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका वाटर मैनेजमेंट होगा, तो सबके लिए अलग अलग होगा।
0: सबके लिए अलग अलग होता है। जैसा कि झारखंड में चाहे हमारे देश में कहें, तो मौसम तो अनिश्चितता होती है, मौसम सही पे आता नहीं है, वर्षा होती नहीं है, तो बाकी मौसम में भी हम लोग जल प्रबंध कर सकते हैं क्या?
1: बिल्कुल, जैसे आजकल तो घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, उस तरह से भी हम वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से आप उसको, जब बारिश नहीं हो रहा है या पानी का तकलीफ हो रहा है, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
0: तो ये तो माली सारे क्षेत्र की बात है, और गांव घर की बात करें तो गांव में हम लोग अगर जल को रोकना चाहे तो उसके लिए क्या क्या बनाना पड़ेगा? कुछ मेड़ वगैरह बनाना पड़ेगा, फिर कुआं खोदना पड़ेगा, किस तरह हम लोग कर सकते हैं?
1: हाँ, जैसे अभी डोभा निर्माण करते हैं, खेत तालाब निर्माण करते हैं, मेड़ अगर आप बना देते हैं तो मेड़ से तो बहुत सारा पानी रिटेन हो जाता है, तो वो धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट होने लगता है।
0: तो अच्छी बात है किसान भाइयों की अपने खेतों की रक्षा जरूरी है, और साथ में जल प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड बहुत सारे से खरीफ फसल है जिसमें जल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो अंत में हमारे किसान भाई को ये बता दें कि कुछ खास ऐसा सुझाव है या कुछ ऐसा संदेश है जो कि किसान भाइयों के लिए फायदेमंद हो।
1: हाँ, झारखंड में टिकाऊ एवं लाभकारी खरीफ खेती के लिए भूमि एवं जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। यदि किसान वैज्ञानिक तकनीकों जैसे मेड़बंदी, वर्षा जल संचयन

0: सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग एवं संतुलित पोषण प्रबंधन का को अपनाएं तो कम संसाधनों में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
1: तो ये आपका अच्छी सुझाव है और किसान भाई इसको फ़ायदा उठाना चाहिए। और किसान भाई जितने भी बारे सुन रहे हैं, हम लोग भी अक्सर हमारे रेडियो से चाहे पेपरों से बहुत सारे सुझाव देते रहते हैं। हमेशा आप लोग रेडियो सुने और पेपर और देखते रहें और समाचार देखते रहें, और आपदा प्रबंधन से बहुत सारे ऐसे समाचार मिलते रहते हैं, उसको भी आप सुन के और देख के अपने खेतों में लागू कर सकते हैं। हमारे किसान भाई को बताएं कि आधुनिक तकनीक से यहाँ के किसानों को किस तरह का फ़ायदा मिल सकता है।
0: आधुनिक तकनीक तो आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ पे है। जैसे हम मोबाइल ऐप के थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन सा डिसीज़ अगर आपके क्रॉप में है तो वो डिसीज़ कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर क्रॉप्स का कर्लिंग हो रहा है या फिर येलोइंग हो रहा है तो वो कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कलर से। अगर हमको वाटर मैनेज करना है तो हम फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ये देख सकते हैं अगर हमने सेंसर्स इंस्टॉल कर दिए हैं अपने फील्ड पे, जहाँ पे हमारा खेत है वहाँ पे, तो वो सेंसर हमें बता देगा कि कितना आपके खेत में पानी अवेलेबल है, कितना मॉइस्चर उसमें अभी है। अगर मॉइस्चर कम है तो हम ऑटोमेटिकली घर पे बैठे बैठे उसको इरिगेट कर सकते हैं जो उसका फील्ड कैपेसिटी है वहाँ तक के। आजकल अभी हम सॉइल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, सॉइल सेंसर्स लगा के उसका टेम्परेचर देख के, ह्यूमिडिटी देख के, वो सारी चीज़ें आजकल तो ये हम AI के थ्रू भी कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हम डेटा पहले से जो जैसे आपके पास 10 साल का डेटा है तो वो 10 साल के डेटा को अगर हमने मॉडल को रन करा दिया तो उसके हिसाब से हम फिर वो जब फार्मर्स को जब वो ऐप देते हैं तो वो उससे वो डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा डिसीजन उनके लिए बेटर होगा, कौन सा क्रॉप लगाना है और कितना वाटर मैनेज करना है उसमें। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं।
1: सही बात है किसान भाई, आज का युग आधुनिक युग है और आधुनिक युग में हमें मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें, जानकारी हमें मिलती हैं, उसका इस्तेमाल हमको ज़रूर करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना खरीफ फसलों के लिए भूमि और जल प्रबंधन के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर रश्मि यादव। रश्मि यादव जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार, जोहार।
1: तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, दूसरे दिन फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जोहार।
2: तो इखन हमरे मन जानकारी कर ली खरीफ फसल के लिए भूमि और इकर जल प्रबंधन कातिर करल जाएला। इकर बारे में बड़ा नगद जानकारी दिला डॉक्टर रश्मि यादव, और इनकर से बातचीत करना है हमरे कशंगी मनोज कुमार।
1: और देखो जुगनी बहन, अखन गर्मी का मौसम चलत है और गर्मी का मौसम में हमरे मन अपन ख्याल तो रखी ला, संगे संगे मवेशी मन कर भी हमरे मन के ख्याल रखे चाहिए। कल के देखो मन तो कोनो बोलबे नहीं करे तो हमरे मन के है, तो पानी कर व्यवस्था होगी, चाहे धूप छाँव कर व्यवस्था होगी, ऐसा बहुत सारा चीज ऐसा है कि जैसे हमारे मन के व्यवस्था करे के है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और देखो गर्मी का दिन है के तो पशु मन का रख रखाव हमरे के तो ध्यान देवे के बहुत जरूरी है। काले कि हमारे पशु के पशु अगर हमारे पाली ला और उकर से हमारे मन के फायदा है तो हमारे के उकर रख रखाव कर ध्यान देवे के है। तो इकरे बारे में आज हमारे जानकारी देवे डॉक्टर भरत महतो, और इनकर से गुठिया है अनिता तिर्की।
3: डॉक्टर भरत महतो, वैज्ञानिक दिव्यान कृषि विज्ञान केंद्र मोरहाबादी रांची, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार किसान भाई।
3: आप हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को बताएं कि गर्मियों की जब हम बात करते हैं तो गर्मी के दिन में पशुओं की जब हम बात करें तो विशेष देख रेख की आवश्यकता होती है इनको भी, तो पहले ये बताएं कि किस तरह से हम अपने पशुओं की देख रेख करेंगे कि उन्हें गर्मी ना लगे या गर्मी से बचाएंगे कह लें।
4: जी हाँ किसान भाइयों, अभी आप पशुपालन में जो भी काम कर रहे होंगे, जैसे दूध उत्पादन के क्षेत्र में गाय भैंस रखे होंगे या मांस उत्पादन के लिए मुर्गी बत्तख या भेड़ बकरियां रखे होंगे, तो इन सभी को अभी जो गर्मी का मैंने बढ़ा हुआ तापमान का जो असर है ये निश्चित तौर पे उसके उत्पादन पर पड़ता है और उसके नस्लीय क्षमता के अनुसार हम लोग उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो अभी जैसे पशुओं में बहुत सारे पशुओं पे थोड़ी बहुत गर्मी का असर है या तापमान का जो परिवर्तन है उसको सहने की ताकत होती है, पर कहें जो संकर नस्ल की पशुएं हैं, विशेष करके जो दुधारू गायों में जर्सी या HF जैसे संकर नस्लें हैं, या मुर्गियों में जो हाई यील्डिंग अधिक उत्पादन देने वाली अंडे देने और उत्पादन करने वाली या ब्रॉयलर मुर्गियां हैं या सुकरों में भी जो विदेशी संकर नस्ल की सुकरें हैं उन सबों में इस तरह से तापमान सहने की क्षमता बहुत कम

0: कम होती है, जिसके कारण उनकी उत्पादन क्षमता में काफी गिरावट देखी जाती है। तो किसान भाइयों, उसके जो अभी गर्म हवा जो लू चल रही है, इससे बचाव के लिए हम उपाय तो सुझाएंगे, पहले उसको पहचाना भी बहुत आवश्यक होता है।
1: तो किस तरह से पहचान करेंगे कि इन्हें गर्मी लग गया है या लू लग गया है?
0: जी हाँ किसान भाई, इसमें आप सभी अलग अलग पशुओं में हम लोग अलग अलग तरह से समझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि दुधारू पशुओं में अगर आप आए, तो खासतौर से अगर आप संकर नस्ल के पशुएं रखे हैं या देसी भी रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी पशु को लू लग जाता है, वैसा स्थिति में आप देखेंगे कि उनकी खाने पीने की जो रुचि है ये काफी कम होते जाता है धीरे धीरे। शरीर तापमान में थोड़ी वृद्धि दिखाई पड़ती है, मुंह से हल्का लार आने लगता है, बॉडी में एक तरह का जो शरीर का जो रोएं होते हैं उन सबों में एक तरह का सेरन दिखाई पड़ता है। दूध उत्पादन के लिए हम रखे हुए थे, दूध उत्पादन में अचानक गिरावट देखी जाती है। पशु काफी सुस्त रहते हैं, बैठे रहना पसंद करते हैं, तो ये सभी लक्षण आपको लू लगने के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और रही बात जैसे मुर्गियों में भी है, क्योंकि ये मुर्गी का पशुपालन, मुर्गी पालन भी एक उद्योग का धंधा ले चुका है और हमारे बहुत सारे किसान भाई अभी ब्रॉयलर मुर्गी या लेयर भी पालने लगे हैं, देसी मुर्गियों में भी इसका असर काफी दिखाई पड़ता है। तो किसान भाइयों, जैसे ही मुर्गियों में लू लगने के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, देखेंगे आप वो मुंह खोल के सांस लेने लगते हैं, थोड़े मुंह खुला पेंटिंग जिसको कहते हैं, उस तरह की पेंटिंग करने लगते हैं। दिन में जो दाना देते हैं वो दाना जितना खाना चाहिए वो नहीं खा पाते हैं, पानी के प्रति उनकी रुझान अधिक हो जाती है, पानी अधिक पीते हैं, मृत्यु दर में वृद्धि होने लगती है। अनायास ही कोई बीमारी नहीं है, फिर भी देखते हैं कि कभी कभी मृत्यु दर काफी बढ़ी हुई रहती है। खाने पीने में तो कमी होती है, साथ साथ में उसकी जो फीड कन्वर्सन रेशियो का है, जो दाना को मांस में परिवर्तित करने की या अंडा में परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है, इसमें भी काफी गिरावट देखा जाता है। अंडे देने वाली मुर्गियों में जो अंडे के सेल होते हैं वो काफी कमजोर होते हैं, जिसके कारण टूटे हुए अंडों की संख्या बढ़ जाती है। और इसके साथ कहें, जैसे जो बीमारी अभी आप फार्म को बहुत अच्छा प्रबंधन करने के बाद भी कुछ बीमारियां अनायास गर्मी के चपेट में आने के कारण उनकी जो शरीर के रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है ये काफी कम हो जाती है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां जैसे ई कोलाई, रानीखेत, गमरो, सीआरडी, ये सब की आने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसा लक्षण अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो आप समझें कि आपके जो पशुपालन जैसे मुर्गियां या जो अन्य पशु हैं वो कहीं ना कहीं ये जो गर्मी की लहर है इसके चपेट में आ रहे हैं।
1: जी जी, तो इसका बचाव कैसे करेंगे?
0: सबसे पहले तो आप पशु आवास के जो तापमान है उसको कोशिश करना है कि अंदर जो गर्म हवा के जो झोंके चल रहे हैं, जो लू चल रहे हैं, ये कोशिश करना है, चाहे कोई भी पशु आप रखे हो
1: जी जी,
0: उसमें गर्म हवा के झोंके पशु को डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पे उसके शरीर को न छू पाए, इसकी प्रबंधन आपको करना है। इसके लिए आपके पास जो भी सीमित संसाधन है, जैसे खिड़की दरवाजे जो आप हवा के लिए रखे उन सबों में फटे पुराने बोरे का, जो जूट के
1: बोरे
0: का पर्दा के जैसा प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई पत्तों का बना हुआ उस तरह का सीट भी बहुत जगह पे अवेलेबल रहता है, अगर वैसे हैं तो उन सबको भी आप लगा सकते हैं। थोड़ी और अगर आपकी प्रबंधन अच्छी है तो अंदर में कूलर वगैरह का भी व्यवस्था कर सकते हैं, वेंटिलेशन की काफी अच्छी व्यवस्था करें। पशु आवास के अंदर का जो तापमान है इसको हम थोड़ी कम कर सकते हैं, इसमें काफी मदद मिलती है। इसके साथ साथ अगर आप बड़े पशु रखे हुए हैं, जैसे आप गाय भैंसों का व्यवसाय कर रहे हैं, तो गाय भैंस आपके पास है तो दिन में कम से कम 3 बार ठंडे पानी का छिड़काव करें, मतलब धोएं अच्छी तरह से, पशुओं को हम धो सकते हैं, तो इससे भी उसके शरीर में जो तापमान से लड़ने की क्षमता है ना, इसमें थोड़ी वृद्धि होती है। बकरियों के लिए रखें, अगर बकरियों में भी इस तरह की श्वास दिख रही है बहुत ज्यादा, अगर हांफ रहे हो तो आप जैसे फव्वारा टाइप के होते हैं ना, फुहारा टाइप के जो होते हैं उन सबों को कर सकते हैं। खिड़की दरवाजा में आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे अंदर का वातावरण थोड़ा सा ठंडा हो जाए। पीने के पानी में आप कम से कम दिन में 3 बार बदलने की कोशिश कीजिए, जो ठंडा पानी गर्म ऐसे टंकी के भी पानी दे रहे हैं तो वो काफी गर्म हो जाता है, कोई बर्तन में भी पानी रखे हैं तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, तो उसको आप बदलें, अगर दिन में 3 बार बदलें तो ज्यादा अच्छा है। किसान भाइयों, अगर मुर्गी के व्यवसाय से आप हैं तो पीने के जो बर्तन की संख्या है इसको आपको बढ़ानी होगी। जनरली हम लोग 300 मुर्गी में 3 से 4 रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पीने के जो बर्तन है उसको 5 से 6 कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो हो सकता है। इसके अलावा पोषण में भी थोड़ा सा,
1: मैं वही पूछना चाह रही थी कि उनके आहार को किस तरह से हम रखेंगे।
0: आहार से भी हम इसको प्रबंधन को हम बढ़ावा सकते हैं। जैसे अगर आप बड़े पशु रखे हैं तो उनको आप कोशिश करें थोड़े उनकी जो दाना मिश्रण की गुणवत्ता है इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वगैरह इनरिच करना, उसका डेंसिटी जो है पोषक तत्वों की उसको हम बढ़ा दें, चूंकि कम खाना लेते हैं तो कम खाना में ही वो पूर्ति हो जाए, ऐसा ध्यान रखने का। अधिक से अधिक खाना हम रात के समय दें या शाम के बाद दें, दिन में जब तापमान चढ़ा हुआ रहता है उसमें हम कम से कम खाना दें। थोड़ा रफेजेस की भी जो रेशेदार खाना हम लोग देते हैं, जो चारा देते हैं, उनकी मात्रा भी कम कर सकते हैं। अगर हरा चारा कहीं उपलब्ध है तो हरा चारा का अधिक से अधिक हम लोग उपयोग करें तो अधिक है। मुर्गियों में भी यही हम कहेंगे कि आप जो ब्रॉयलर वगैरह रखे हैं या लेयर भी रखे हुए हैं तो रात में अधिक से अधिक खाना की प्रैक्टिस कराएं और एक निश्चित समय पे खाना देने की कोशिश करें। जैसे आप अगर सुबह 6 बजे दे रहे हैं तो रोजाना सुबह 6 बजे दें, शाम को दे रहे हैं तो उस तरह का एक निश्चित अवधि पर खाना दें तो ज्यादा अच्छा है। इसके साथ किसान भाइयों, सभी पशुओं के लिए आप इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा को बढ़ाना है, जो खनिज पदार्थों की मात्रा है और विटामिन की मात्रा है, सामान्य दिनों में जितना हम देते हैं उससे कम से कम 1.5 से 2 गुना करने की जरूरत है, ताकि उसमें जो मिनरल्स हैं उससे पशुएं इस तनाव के कारण, जो गर्मी के तनाव है, उससे अच्छी तरह से लड़ पाए।
1: और कोशिश ये भी करनी चाहिए कि जब धूप हो जाता है जैसे 11 बजे से 4 बजे तक, तो उन्हें छाया जगह पे ही रखना है।
0: जी किसान भाइयों, ये भी ध्यान देने की है, अगर आप पशु को चराने ले जाते हैं, जैसे बकरी व्यवसाय में जो किसान भाई जुड़े हुए हैं या गांव में देखिएगा जो उत्पादन वाले भी पशु हैं उनको भी ले जाते हैं, पेट भरते हैं, तो यहाँ पर आपको कराना क्या है कि सुबह को जल्दी आप चराने ले जाएं, जैसे ही धूप ज्यादा बढ़ने लगता है तो आप उसको वापस ले आएं। शाम को भी अगर थोड़ा लेट से हुए, जैसे 4 से 5 बजे तक धूप की किरणें थोड़ी कम हो जाती है उस समय आप चराने ले जाएं और थोड़ा लेट तक चरा सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। इस मौसम में कोई टीकाकरण बाकी रह गया है तो दिन में पशुएं काफी तनाव पे रहते हैं, तो जो टीकाकरण करना है या तो आप सुबह करें या शाम को करें। जैसे बड़े पशुओं में अभी HSBQ या FMD का टीकाकरण कराना हो तो आप सुबह पे टीकाकरण करें या शाम को टीकाकरण करें। मुर्गियों में भी या तो फिर रात में टीकाकरण करें या अर्ली मॉर्निंग टीकाकरण करें, तो टीका की क्षमता जो है आपको बना रहेगा और उनके शरीर में रोगरोधी क्षमता जिसको आप मेंटेन करना चाहते हैं वो भी अच्छी तरह से मेंटेन रहेगी।
1: आपने हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को बहुत बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सुनली की गर्मी के मौसम में हम अभी उनकर प्रबंधन के बारे में और हमरे के जानकारी दिले डॉक्टर भरत महतो, इनकर से गुठिया लें अनिता तिर्की बहिन। तो एक संग आज कर किसान वाणी कर बेरा सिरा थे, कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
3: और प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल केर।

0: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
1: हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनवाइया भाई बहन मन के जुगनी बहन दन से जोहार, और मनोज भाई और के भी हमार दन से जोहार।
0: जोहार बहन और सब सुनवाइया मन के मनोज भाई दन से जोहार। और संगे संग देखो आज गुरुवार कर दिन है के, तो आज छुआ सभा कर दिन भी है के, तो छुआ मन के जोहार और उमन का दुलार प्यार। और संगे संगे देखो आज बकरीद कर त्यौहार भी है, तो सब जितना भी सुनवाइए हैं सबके मुबारक हो। और भाई देखो हमने जैसे कहले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहे का मतलब है कि बेटी मन के हमारे मन के बचाएक है और उके आगे तक दूर ले जाके पढ़ाएक भी है। क्या विचार है भाई?
1: बिल्कुल, देखो बेटी छुआ मन के हमरे के बढ़िया शिक्षा देव, अब तो उमने हमरे के हर काम में मदद करवाए, और हमरे कर देखो बेटा छुआ नियर कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ पाए हैं कि नहीं। तो हमरे के बेटी छुआ मन के पढ़ाई लिखाई में ध्यान देवे के, उमन के उच्च शिक्षा ले हमरे के जागरूक होए के और आगे बढ़े के।
0: सही बात कहली भाई। और देखो पहले का युग कर बात ना खेख है, नवा युग आए जाए तो नवा युग में हमारे मन के नवा नवा तकनीक से भी छो मन के पढ़ाए के लिखाए के आगे बढ़ाए के। और संगे संग देखो ना आजकल कितना छो मन देखो जो बहन छुआ है वो बड़ हो के और कहाँ कहाँ से दूर तो चल जाते हैं, चाहे खेल हो चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी क्षेत्र में देखो अपनी तो बहुत आगे तक जाते हैं, है कि नहीं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो इकर में हमरे के ध्यान देवे के है कि अगर हमरे मन बेटी छुआ की उचित शिक्षा देवीला तो छुआ मन जरूर आगे बढ़वाए और देश का रोशन करवाए है कि नहीं।
0: और देखो भाई ऐसा बात है बेटी छुआ कर बात कर लेकिन संगे संगे देखो बेटा के छुआ के भी हमारे मन के ध्यान देवे के, खाली के बेटी के छुआ के ध्यान दे ली और बेटा के छोड़े के उसनो करे के नहीं, दुयो के संगे संगे लेके हमारे मन के चले के है कि नहीं?
1: एकदम एकदम, हमरे के दोनों के बढ़िया से पालन पालन पोषण करे के और दोनों का शिक्षा दीक्षा कर बढ़िया से ध्यान देवे खे, तो सब माय मने अपन बेटा बेटा और हो या बेटी हो उनका रख रखाव बढ़िया से करे खे, उनका ध्यान देवे खे और उमन के शिक्षा दीक्षा बढ़िया से देवे खे, जहाँ तक हो सके तो उमन के बढ़िया शिक्षा देवे खे और उमन के साथ देवे खे।
0: और देखो नहीं हमारे कर एक बढ़िया से जो एक ठो कलाकार है मुन्द्रजीत महली, गीत कर माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश भी देवत हैं, चलो सुनी लें।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: तो अब भाई देखो, अब जानकारी की बात है। देखो, आज का युग तकनीक का युग है, और तकनीकी युग में हमारे मन के नवा नवा तकनीक का इस्तेमाल करे के चाहिए। और संगे संगे देखो, जितना विज्ञान कहे ना कि फायदा है, उतना हमारे का नुकसान भी है कि नहीं?
7: बिल्कुल बिल्कुल।
6: तो दुयो के हमारे मन के लेके चले के। और आजकल देखो, सबसे खास चीज बात है कि बहुत कॉमन नहीं हो जाए, कॉमन तय के हो जाए, AI कहे ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहे ना, उसका मतलब है कि आजकल ऐसा चीज़ है कि अपने आप सब कुछ करत है। तो हमारे मन के कहब तो समय कर बचत भी होते है कि नहीं?
7: तो नवा तकनीक जी की अभी बहुत ही कोनो काम के आसान कर दे है कि नहीं? तो हमारे इकरे बारे में जानकारी करब और इनकर बारे में हमारे के बताबाए कोमल कुमारी।
6: चलो तो सुनील।
8: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक जो कंप्यूटर और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और काम करने की क्षमता देती है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सिर्फ तकनीक नहीं रही, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। सुबह की अलार्म से लेकर रात के नेटफ्लिक्स से फ्रेज तक AI चुपचाप हमारे फैसलों को आकार दे रहा है। 2026 में म्यूज जैसे मॉडल के आने के बाद तो AI की समझ और रचनात्मक ने एक नई छलांगे लगाई है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। AI शिक्षा और अनुशासन साधन। AI छात्रों की सीखने की क्षमता और गति के अनुसार निजीकृत शिक्षा प्रदान कर रहा है, जिसके साथ ही यह कठिन विषयों का आसान बनाने में शिक्षकों की मदद कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर, एक्सरे और MRI स्कैन की सटीकता से जांच करके बीमारियों की जल्द पहचान करने में AI मदद कर रहा है। यह नई दवाओं की खोज, ड्रग्स डिस्कवरी और इलाज के बेहतर तरीके खोजने में भी क्रांति ला रहा है। बैंकिंग और विद फाइनेंस सेक्टर। ऑनलाइन लेन देन और बैंकिंग सेक्टर में AI का उपयोग धोखाधड़ी, फ्रॉड और साइबर हमलों को वास्तविक समय रियल टाइम में रोकने के लिए किया जा रहा है। व्यवसाय और कार्य क्षेत्र, बिजनेस, ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्विस के लिए AI संचालित चैटबॉक्स का उपयोग बढ़ गया है। यह इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मार्केटिंग और डिजिटल असिस्टेंट के रूप में कार्य क्षमता को बढ़ाता है। कृषि एग्रीकल्चर AI ड्रोन्स के सेंसर के माध्यम से मिट्टी की नमी, मौसम और फसलों की स्थिति का अनुमान लगाकर किसानों को सटीक निर्णय लेने में मदद करता है। AI के फायदे। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख फायदे हैं जो हमारे काम और जीवन को बेहतर बना रहे हैं। गति और सटीकता, स्पीड एंड एक्यूरेसी। बिना गलती के काम इंसानों से टाइपिंग या कैजुअलेशन में गलती हो सकती है, लेकिन AI बिना थके बिल्कुल सटीक, एरर फ्री काम करता है। सुपर फास्ट प्रोसेसिंग, जो डेटा एनालिसिस से करने में इंसानों को

0: कई दिन लग सकते हैं, एआई उसे कुछ सेकंड में पूरा करता है। 24/7 उपलब्धता, ऑलवेज अवेलेबल, कोई छुट्टी नहीं। इंसान दिन में 8-9 घंटे काम करते हैं और उन्हें आराम की ज़रूरत होती है, जबकि एआई बिना रुके 24 घंटे और 365 दिन काम कर सकता है। तुरंत कस्टमर सपोर्ट, बैंक, कंपनियां आधी रात को भी एआई चैट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को तुरंत जवाब दे पाती हैं। यातायात परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, यह रूट को ऑप्टिमाइज करके ईंधन की बचत करने में मदद करता है। इसके अलावा स्वचालित कारों और रोबो टैक्सी का चालन भी बढ़ रहा है। रोजगार पर प्रभाव, एम्प्लॉयमेंट, एआई के कारण मैनुअल और रूटीन कार्यों का स्वचालन हुआ है, जिससे कुछ पारंपरिक नौकरियां में कटौती का जोखिम बढ़ गया है। वह दूसरी ओर एआई से जुड़े नए अवसर जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस में नौकरियां बढ़ रही हैं। मनोरंजन एंड क्रिएविटी फील्ड्स, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और स्पॉटिफाई आपके मूड के हिसाब से फिल्में और गाने सजेस्ट करते हैं। और जैसे जैसे एआई टूल्स महज कुछ कमांड्स से शानदार तस्वीरें और ग्राफिक बना रहे हैं, फिल्में में वैक्स और वीडियो गेम्स के किरदारों की अधिक रियलिटी स्टिक बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है। दोहराव वाले कामों में मुक्ति, ऑटोमेटिक्स एज रिक्वेस्ट जॉब, बोरिंग कामों से आज़ादी, डेटा एंट्री, ईमेल्स भेजना या कंपनियां चेक करने जैसे बार बार दोहराए जाने वाले काम एआई खुद संभाल लेता है। क्रिएटिविटी के लिए समय, इससे इंसानों का समय बचता है, वे अधिक महत्वपूर्ण और रचनात्मक कामों पर ध्यान दे पाते हैं। कठिन निर्णय लेने में मददगार, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, डेटा आधारित फैसले, एआई पुराने डेटा और ट्रेंड्स को देखकर बिजनेस और सरकारों को सही एआई पुराने डेटा और ट्रेंड्स को देखकर बिजनेस और सरकारों को सही फैसले लेने में मदद करता है। मौसम और आपदा के अनुमान, चक्रवात, बाढ़ या भारी बारिश का सटीक अनुमान लगाकर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समय रहते लोगों की जान बचाने में मदद करता है। एआई झारखंड के लिए खास क्यों है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस झारखंड के लिए खास इसीलिए है क्योंकि इससे कई क्षेत्रों में काम आसान और तेज हो सकता है। जैसे शिक्षा में बच्चों को स्मार्ट तरीके से पढ़ाने में मदद मिलती है, खेतों में किसानों को मौसम और फसल की जानकारी मिल सकती है, स्वास्थ्य में गाँवों तक बेहतर इलाज और जाँच की सुविधा पहुँच सकती है, रोजगार में नए टेक्नोलॉजी आधारित काम और रिक्स सीखने के मौके बढ़ते हैं, सरकारी काम, योजनाओं और सेवाओं को जल्दी और सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे झारखंड का और विकास होगा। भाषा की क्रांति, नागपुरी, स्थली, कुरुख में एआई बोलने समझने लगा है। एमएसएमई को बूस्ट, छोटे दुकानदार भी एआई से पोस्टर, बिल, विज्ञापन अपनी मार्केटिंग के लिए बना ले रहे हैं। डेटा की जासूसी, एआई मॉडर्न के ट्रेंड करने के लिए हमारे पर्सनल डेटा, सर्च हिंट्स और चैट्स का इस्तेमाल होता है, जिससे प्राइवेसी खत्म हो रही है। एडवांस साइबर हमले, हैकर्स अब और भी अधिक खतरनाक वायरस को फिनिशिंग लिंक बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसानी निर्भरता और दिमागी आलस, ह्यूमन डिपेंडेंसी, सोचने की क्षमता में कभी हर छोटे काम जैसे ईमेल्स लिखने या होमवर्क करने के लिए एआई पर निर्भर रहने से इंसानों की अपनी रचनात्मकता और क्रिटिकल थिंकिंग कमज़ोर हो रही है। गलत जानकारी पर भरोसा, एआई कभी कभी पूरी तरह गलत जानकारी या मनगढ़ंत कहानियां, तथ्य पेश करता है, जिसे एआई हेलुवेकेशंस कहते हैं, जिसे लोग सच मान लेते हैं। आगे का रास्ता, डरे नहीं समझदारी से अपनाई। यदि एआई का गलत उपयोग किया जाए तो यह समाज के लिए हानिकारक बन सकती है। कई लोग डरते हैं कि मशीनें रोजगार कम कर देंगी एआई।
1: भाकपा माओवादी के भाई और बहनों, सरकार आपके पुनर्वास के लिए लगातार प्रयासरत है, अतः आपसे आग्रह है कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए सही निर्णय लेकर मुख्यधारा में लौट आइए। भयमुक्त जीवन का आनंद अपने परिवार के साथ लीजिए। साथियों, समय रहते विचार कीजिए और मुख्यधारा में लौट आइए। साथियों, आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जल, जंगल, जमीन की रक्षा मात्र हिंसा से ही हो सकती है? इतने सालों की प्रयास के बाद क्या हमारा आदिवासी समाज सुरक्षित हो पाया? आज सैकड़ों पूर्व माओवादी साथी हिंसा को पीछे छोड़कर समाज के बीच एक अत्यंत गरिमापूर्ण और कुशल जीवन बिता रहे हैं। प्रशासन आपकी सुरक्षा और गोपनीयता की 100% गारंटी देता है। हिंसा और कठिनाइयों का जीवन छोड़े और अपनों के पास लौट आए। मुख्यधारा में आने के उपरांत आपको पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको जेल जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी और आपकी सहायता की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्वरोजगार के लिए भी आपको उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। पुनर्वास हेतु कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9863475217। नंबर एक बार फिर नोट करें 9863475217।
2: और भाई बहन देखो, अब जाते जाते एक ठुग्गी सुनी मिला सुभाष कुरियर संगे मनकर गावल गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण किया जाएगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर घर

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत 9 राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी जुटाने के प्रयास तेज। आईआईटी आईएसएम धनबाद में बीसीसीएल के सीएसआर पहल के तहत छात्रों के लिए स्टेम शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन प्रमंडल की ओर से आज हाथी पीड़ित ग्रामीणों के बीच 22 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा राशि भी किया गया वितरण। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपने सिफारिशों से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। और राज्य के 3 पहलवान एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए रांची से हुए रवाना। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है। ये झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य परिचालनशील राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी जुटाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। आज गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने यह बात कही। श्री शाह ने कहा कि सरकार सीमाओं की सुरक्षा और देश में अवैध अप्रवासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: आईआईटी आईएसएम धनबाद के पेनमैन ऑडिटोरियम में बीसीसीएल के सीएसआर पहल के तहत अंडर प्रिविलिजेंट और प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन छात्रों के लिए स्टेम शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य बीसीसीएल क्षेत्र के जरूरतमंद और परियोजना प्रभावित छात्रों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल और वैज्ञानिक शिक्षा बेहतर जरूरी है और ऐसे कार्यक्रम बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और तकनीकी समझ विकसित करने में सहायक साबित होंगे।
2: स्टेम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे स्कूल में इसकी पढ़ाई थी, लेकिन ये आईएसएम आईटी ऐतिहासिक इंस्टीट्यूट और बीसीसीएल का भी इसमें कुछ अल्प योगदान रहा। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल जानकारी स्कूलों में जाकर मैंने उनको ये भी थोड़ा सा इनसे आग्रह किया।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन प्रमंडल की ओर से आज हाथी पीड़ित ग्रामीणों के बीच मुआवजा राशि का वितरण किया गया। डीएफओ अविरूप सिंह सिन्हा ने के नेतृत्व में संसगदा रेंज अंतर्गत भनगांव और नवागांव के ग्रामीणों को सहायता राशि प्रदान की गई। यह कार्यक्रम ससंगदा रेंज कार्यालय में आयोजित हुआ, जहां हाथियों के हमले में घर टूटने, फसल बर्बाद होने और जानमाल की क्षति झेलने वाले ग्रामीणों को मुखिया लिपि मुंडा की मौजूदगी में वन विभाग के अधिकारियों ने चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया। वन विभाग के अनुसार हाथी प्रभावित ग्रामीणों को कुल 22,53,397 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। यह रिपोर्ट व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य देश भर में मुस्लिम महिलाओं के कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करना है। आयोग ने कहा कि हाल के कानूनी सुधारों से महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिली है, लेकिन कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुंच को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में आज ईद उल अजहा शांतिपूर्वक मनाया गया है। इस मौके पर राज्य के विभिन्न मस्जिद और ईदगाह में नमाज की विशेष व्यवस्था की गई। ईद उल अजहा को लेकर प्रशासन भी सतर्क रहा और शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद मनाने को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। बकरीद पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के प्रति दिखाए गए अटूट विश्वास, त्याग और समर्पण की याद में मनाई जाती है। इस दौरान राजधानी रांची समेत राज्य भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिखी प्रशासन की तत्परता। रांची जिले के चान्हो प्रखंड के कदम टोली में एक वर्ग विशेष द्वारा गांव के एक परिवार के महिला पुरुष और 3 साल के मासूम बच्चे के साथ मारपीट की घटना को भारतीय जनता पार्टी में निंदनीय बताया है। घटना के 4 दिन हो जाने के बाद भी अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं होने पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
3: कहते तो है कि अगुआ सरकार, लेकिन इस अगुआ सरकार में जिसमें कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है, यहाँ के लोगों के हित में और यहाँ के लोगों के साथ ये नहीं चाहती है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग रहे। कि इस तरह क्यों होता है इस झारखंड प्रदेश में और इस सरकार में?
0: जमशेदपुर में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने रात्रि गश्ती और टेंगू मोबाइल की निगरानी तेज कर दी है। इसी अभियान के तहत टेलको थाना पुलिस ने बंद घर में चोरी की कोशिश कर रहे एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस की को सूचना मिली थी कि LFS स्कूल के सामने एक बंद क्वार्टर में चोरी का प्रयास कर रहे 2 युवकों को पकड़ा गया है। पूछताछ में इन्होंने कई थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात कबूल की।
4: इनके पास से कुल 15 लाख रुपए कीमत के सोने और चांदी जैसा जो पदार्थ है, जिसकी अभी पुष्टि हो जाएगी, एक ताला काटने का सामान जो हम बता रहे थे वैसा, नगद राशि 58,130 रुपए बरामद हुए हैं। एक जो स्प्लेंडर बाइक जो घर के बाहर खड़ी थी वो भी हमने सीज किया है।
0: माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य और विपक्ष के नेता पिनराई विजयन के प्रति प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की वाम दलों ने आलोचना की है। इस संबंध में वाम दलों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ईडी की कथित रूप से हो रहे दुरुपयोग के खिलाफ वाम दल 29 मई से 1 जून तक राज्य भर में प्रदर्शन करेंगे। पार्टी की ओर से कहा गया है कि पिनराई विजयन के घर पर की गई छापेमारी राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। माकपा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आरोप लगाया गया है, पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को हथियार बनाया जा रहा है। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के बटसारा में कुटी काटने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। आज सुबह बटसारा गांव के एक खलिहान में ट्रैक्टर में लगी कुटी मशीन से पुआल काटने के दौरान उनका हाथ अंदर मशीन में चला गया और अधिक खून बह जाने से उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। पड़वा थाना की पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया। राज्य के 3 पहलवान एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए रांची से रवाना हुए हैं। रिया कुमारी, अमित गोप और अभिषेक कुमार दिल्ली और लखनऊ में आयोजित ट्रायल में भाग लेकर भारतीय कुश्ती टीम में जगह बनाने का प्रयास करेंगे। झारखंड राज्य कुश्ती संघ ने इसे राज्य के खेल इतिहास के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए खिलाड़ियों की मेहनत और खेल विभाग के सहयोग की सराहना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत 9 राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी जुटाने के प्रयास तेज। IIT ISM धनबाद में BCCL के CSR पहल के तहत छात्रों के लिए स्टेम शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडावन प्रमंडल की ओर से आज हाथी पीड़ित ग्रामीणों के बीच 22 लाख रुपए से अधिक की मुआवजा राशि का किया गया वितरण। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। और राज्य के 3 पहलवान एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए रांची से हुए रवाना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
1: दुमका जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण गर्मी में भी लगातार बिगड़ती बिजली व्यवस्था से लोग परेशान हैं। आए दिन लोग जगह जगह एकजुट होकर विरोध जता रहे हैं, लोग सड़क जाम कर रहे हैं और बिजली विभाग एवं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। पिछले दिनों सांसद नलिन सोरेन के मोहल्ले के लोगों ने स्टेशन रोड को जाम किया और गुस्सा जताया। जाम में सांसद भी फंसे। लोगों ने सांसद को अपनी समस्याएं सुनाई।
2: हम लोग जो है लाइन के लिए त्रस्त है, एक बूंद पानी टंकी में नहीं चढ़ रहा है, यहाँ का सिस्टम फेल है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग जोड़ता है उड़ जाता है, लोड नहीं ले रहा है, इसमें जो है और ट्रांसफार्मर बढ़ाना होगा।
1: ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अनियमित बिजली आपूर्ति की समस्या से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि
3: इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो रहा, पानी का समस्या, पानी तो आ ही नहीं रहा है, सप्लाई पानी भी बंद है इधर।
1: दुमका जिले में कम पानी में वैज्ञानिक तरीके से खरीफ की खेती करने के लिए किसानों को तकनीकी रूप से तैयार किया जा रहा है। इसके तहत कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से कन्वेंशन सेंटर में जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन किया गया। कर्मशाला में जिले भर से पहुंचे किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों के बीच खरीफ खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं। जिला कृषि पदाधिकारी निशा कुल्लू ने बताया कि इस वर्ष मानसून के दौरान 20 से 30 प्रतिशत तक कम वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए किसानों को वैकल्पिक खेती अपनाने की सलाह दी गई है। किसानों को ऊंचे क्षेत्र में धान की खेती कम करने और नीचे और गड्ढे वाले क्षेत्र में धान की फसल लगाने की सलाह दी गई है। वहीं वैकल्पिक खेती के रूप में मड़ुआ, तिलहन और दलहन की खेती अधिक से अधिक करने की भी सलाह दी गई है।
4: ऐसे कि अपलैंड में हम लोग ऐसे धान लगाते हैं, फिर उनका हम लोग धान को डिस्कार्ड करें, इसके अलावा हम लोग उसके जगह पर लगनी फसल ली और मड़ुआ की खेती करें, मिलेट्स लगाए, जो कि इसमें कम पानी की आवश्यकता होगी, रीजनली अगर हम बोलते हैं उसको उसके साथ कर सकते।
1: उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि इस वर्ष मानसून में कम वर्षा होने की संभावना को देखते हुए किसानों को उन तकनीकों को अपनाना चाहिए जिसके माध्यम से कम वर्षा में भी अच्छी से अच्छी खेती की जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
5: एलिनो मतलब जो एलिनो आता है, 150 साल में सबसे स्ट्रॉन्ग आने वाला है। जो एलिनो आता है तो यहाँ इंडिया में मानसून बहुत कम हो जाता है, लेकिन इंडिया में उसमें
1: दुमका सहित पूरे संताल परगना में गर्मी बढ़ने के साथ ही सर्पदंश की घटनाएं बढ़ी हैं। मई माह में 26 दिनों में पूरे संताल परगना में सर्पदंश के 151 मामले सामने आए, जिनमें 6 की मौत हुई। सबसे अधिक घटनाएं दुमका, पाकुड़ और जामताड़ा की हैं। दुमका जिले में 26 दिनों में सर्पदंश की 31 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने सांप काटने पर तुरंत व्यक्ति को निकटतम अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराने और झाड़ फूंक करने से बचने की सलाह दी है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
0: अभी आप सुन रहे थे दुमका जिले की
6: ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म विवाह के इस गीत के साथ।

0: सबको सोम सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे। काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे।
1: ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई? ला, मैं बनाता हूँ मिठाई।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: आइए संतराल के बाद सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। अब जिस गीत को सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म धुरंधर से। गायक हैं अरिजीत सिंह और अरमान खान, बोल इरशाद कामिल के हैं और संगीत है आदर्श विश्वकर्मा का।

0: ये गीत है फिल्म यस बॉस से और इसे गाया है अभिजीत ने।
1: Action formula starts working in just

फिल्म यस बॉस के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं फिल्म डेढ़ इश्किया का ये गीत। इसे गाया है रेखा भारद्वाज ने, बोल हैं गुलजार के और संगीत दिया है विशाल भारद्वाज ने।

0: इस गीत के साथ ही हमारा आज का रजनीगंधा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, चुनावी पारदर्शिता की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन।
3: सर्वोच्च न्यायालय के कल के अहम फैसले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR को पूरी तरह वैध ठहराया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास SIR करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद विपक्षी पार्टियों के SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाने पर पूरी तरह विराम लग गया। विपक्ष के इन सवालों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को आसान शब्दों में समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चुनाव आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत जी, स्वागत है आपका।
4: नमस्कार।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम को शुरू करने के पहले आइए हम सुनते हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है।
3: आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा, ये जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी की हम बात करते हैं, जो स्वच्छता की बात करते हैं इलेक्टोरल रोल की, इसमें SIR का कितना महत्व रहता है?
4: बहुत ही महत्व रहता है क्योंकि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी जो है शुरू होता है इलेक्टोरल रोल से। कोई भी देश का, खाली भारत का नहीं, कोई भी देश का इलेक्टोरल रोल जो है वो अगर सही हो तो फिर इलेक्शन साफ होता है, फ्री फेयर होता है और इलेक्शन के नतीजे लोगों का विल को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए सारी चीज का शुरुआत है वोटर लिस्ट से, जिसको इलेक्टोरल रोल बोला जाता है। और भारत के इलेक्टोरल रोल जैसे है कि करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंचने वाला था, दुनिया की सबसे बड़ा इलेक्टोरल रोल है, शायद बहुत सारे कंट्री का पॉपुलेशन मिलाकर भी 100 करोड़ नहीं होगा, लेकिन वो 100 करोड़ में अभी एक पॉज लग गया है SIR के जरिए। अभी थोड़ा सा रिवर्स होगा, कुछ नंबर्स घटेंगे और घटेंगे क्यों, अच्छे कारण से घटेंगे। अच्छे कारण से इसलिए घटेंगे क्योंकि सब घोस्ट नेम्स थे, ये नेम का कोई महात्म्य नहीं था। जो इलेक्टोरल रोल में जो मरे हुए लोगों का नाम हो या जो चले गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़कर उन लोगों का नाम हो या जो लोगों का नाम दो तीन जगह में हो उनका नाम हो तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस सब को साफ करने के लिए और जो लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं रहना चाहिए उनको नाम को निकालने के लिए और खास करके आर्टिकल 326 के अनुसार कौन कौन एलिजिबिलिटी है हमारा भारत की इलेक्टोरल रोल में रहने के लिए, नागरिक होना चाहिए, 18 साल के होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए, ये सब तो देखना होगा ना। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ये सब चीज को अच्छी तरह देखा गया, क्योंकि उसमें एन्यूमरेशन होता है फ्रेश। एक बार मान लीजिए कि एक बार एक फ्रेश लिस्ट जैसे बनता है वो बात है, क्योंकि हर साल जो होता है समरी रिवीजन उसमें क्या है कि उसी लिस्ट के ऊपर करेक्शंस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं। इसमें लेकिन मान लीजिए कि पूरा एक बार एक समूचा नया इलेक्ट्रोल रोल आपके सामने रखा गया है और जो लोग रहना चाहिए वो रहते हैं, जो लोगों को नहीं रहना है उनको निकाला जाता है, मतलब वो नाम को, लोगों को नहीं उस नाम को, और 20-22 साल के बाद हो रहा है। तो इससे लगता है कि अगर प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोल रोल अगर इलेक्शन कमीशन का एक दायित्व है आर्टिकल 324 के तहत, तो वो काम जो 20-22 साल के बाद एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से वो काम दुरुस्त तरीके से होता है, तो इसलिए होना चाहिए।
3: जो प्रक्रिया हुई, जो बिहार से शुरू हुई और बाद में फिर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया सेकेंड फेज में, और थर्ड फेज का काम अभी चल रहा है, इस बीच में एक विवाद खड़ा हो गया SIR को लेकर, तो इन सबको आप कैसे देखते हैं, ये जो पूरा विवाद रहा सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग आने के पहले?
4: देखिए, जितने अथॉरिटीज होते हैं देश में, या मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्निंग एजेंसीज होते हैं, ये सबसे इलेक्शन कमीशन थोड़ा अलग तरह के है। इनका काम ही एक हिसाब से पॉलिटिकल लोगों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, कैंडिडेट के साथ, रोज काम इन्हीं के साथ ही होता है। इनका पंजीकरण करना, इनका कैंपेन को रेगुलेट करना, इनका इलेक्शन कंडक्ट करना, इनका नतीजे निकालना, ये सब इलेक्शन कमीशन काम है, सिम्बल्स देना, ये सब काम है। तो ये पॉलिटिक्स से अलग नहीं रह सकता है एक हिसाब से। तो उसका मतलब नहीं है कि जरूर विवाद हो, उसका मतलब नहीं है कि जरूर पॉलिटिकल एक्यूजेशंस हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। सवाल जरूर होना चाहिए, क्वेश्चंस होना चाहिए और ट्रांसपेरेंस होना चाहिए। पूछा जाना चाहिए कि भाई SIR क्यों कर रहे हो, पूछा जाना चाहिए कि भाई SIR इस तरीके से क्यों कर रहे हो, पूछा जाना चाहिए कि हाँ भाई ये जो है लोगों को तकलीफ देता है इस तरह से नहीं करके ऐसे करना चाहिए, समय इतना लगना चाहिए, जो प्रोसीज्योर एलिमेंट है उस पर बार बार सुझाव आना चाहिए और बार बार प्रश्न भी हो सकते। इलेक्शन कमीशन का दायित्व बनता है वो सुझाव को लेके कुछ परिवर्तन करना है, कुछ मॉडिफिकेशन, करेक्शन, कोर्स करेक्शन करना है, किया भी है इलेक्शन कमीशन, कुछ अपने आप में किया है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर किया है। 60 करोड़ लोगों का SIR हो चुका है, करीब 40 करोड़ लोगों का होना बाकी है, बड़े बड़े स्टेट्स में जनरली हो चुका है। तो इसमें जो सवाल आए लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों का जो मार्जिनल पॉपुलेशन है, जैसे अर्बन नहीं है, जो लिखा पढ़ी में बहुत ज्यादा नहीं है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से होता नहीं है और वो जाके पेपर के पीछे भाग रहे हैं या कहां अपील करने के लिए भाग रहे हैं, तो वो डिफिकल्टीज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा और कुछ हद तक एड्रेस भी हुआ है। लेकिन उसका राजनीतिकरण एक अलग बात है। वो राजनीतिकरण जब हो जाता है उसका मतलब ये है कि आपका पॉलिटिकल आउटकम को नजर में रखते हुए आप किसको काठगड़े में खड़ा कर सकते हो, जैसे कि आप इलेक्शन कमीशन को आरोप लगा सकते हो और कुछ कर सकते हो, वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत बढ़िया बात है ही नहीं। आप देखिए, एक तरफ बात चल रहा है कि भाई इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठियों को निकालना है, एक तरफ बात चल रहा है कि लोगों का अधिकार से वंचित नहीं करा जाना चाहिए, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट लोगों का हो रहा है। मुझे लग रहा है ये सब है राजनीतिक अल्फाज, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो अल्फाज है वो है दो चीज। एक है कि भाई जो डेड हैं, जो डुप्लीकेट हैं, जो माइग्रेटेड हैं, इनका नाम को जरूर निकालना है ASD वोटर्स, और बाकी जो 326 में जो वोटर लिस्ट में जिनका होना चाहिए लोगों का एलिजिबिलिटी उनके हिसाब से, उनको अगर नहीं है तो उनको निकालना चाहिए, बाकी लोग जो एलिजिबल है उनको जोड़ना चाहिए। नो वन एलिजिबल शुड बी लेफ्ट आउट, नो वन इनएलिजिबल शुड बी इन। इस तरह का बात अगर हो तो तरीके की बात चलता है, फिर ये लोकतांत्रिक होता है, संवैधानिक बात होता है। राजनीति को एक बार छोड़ देना चाहिए, लेकिन राजनीति जैसे आप और हम जानते हैं और देखे भी हैं इस सिलसिले में, राजनीति बहुत हद तक इसके अंदर आ गया और राजनीतिक सवाले आए और उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा, तो आरोप तो किसी के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। वो सब थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, जैसे अंग्रेज में कहावत है ना, टू थ्रो दी बेबी टूगेदर विद बाथ वाटर, अब बाथ वाटर को आप निपटाइए लेकिन उसका मतलब बच्चा को भी फेंक देंगे क्या? तो ये जो है मुझे लग रहा है कि ये अवॉइडेबल था, लेकिन आज की तारीख में खास करके आपने अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का मोहर लगाया है उसके बाद विवाद अंत होना चाहिए और पीसफुल स्मूथ तरीके से सबका कोऑपरेशन के साथ बाकी SIR के जितना प्रक्रिया है, ये वाली और आने वाली कभी भी SIR होगा, वो ठीक से हो जाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी जिम्मेवारी बनता है जो जो सवाल करें सुझाव दें सुने, जो सवाल करें उसके जवाब दें।
3: सुप्रीम कोर्ट के ओवरऑल जजमेंट को कैसे व्यू करते हैं?
4: एक तो है कि आप आर्टिकल 326 में जो वोटर इंडिया में इलेक्टेड होने के लिए जो एलिजिबिलिटी है आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसमें एक है कि वो सिटीजन होना चाहिए, तो भारत की सिटीजन को ही खाली वोटर लिस्ट में डाल सकता है कौन? डालेगा इलेक्शन कमीशन, डालेगा तो इलेक्शन कमीशन रख सकता है, हाँ भाई ये सिटीजन है इसलिए वोटर लिस्ट में है, ये सिटीजन नहीं है इसलिए वोटर लिस्ट में नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन का एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बोला है बहुत सही बोला है, क्योंकि SIR सिटीजनशिप या घुसपैठिया या इन्फिल्ट्रेटर बाहर के नागरिक, ये चीजों का सोल्यूशन नहीं है। SIR सोल्यूशन नहीं है ना। नागरिकता किसका है नहीं है उसका पुलिसिंग करना इलेक्शन कमीशन का काम है। सिटीजनशिप एक्ट अलग है, उसका अथॉरिटीज अलग है, और वो जो अथॉरिटीज हैं वो देखें कैसे लोगों को बाहर देश के लोग हमारे यहाँ आके नहीं रहे, यहाँ के नागरिक नहीं बने, या नागरिक को जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिले, ये सब देखने का काम अलग है, सिटीजनशिप एक्ट है।

0: है या नहीं है उसको डिसाइड करेगा सिटीजनशिप एक्ट, इलेक्शन कमीशन का नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अगर लगा कि किसका सिटीजनशिप का वैलिडिटी नहीं है वोटर लिस्ट में होने के लिए, तो वो वोटर लिस्ट से उसको निकाल सकता है। वो एक लिमिटेड पर्पस, अगर माने लिमिटेड पर्पस है, लेकिन उसका सिटीजनशिप का जो समूचा पर्सनालिटी है एक सिटीजन का, वो डिसाइड करेगा। उसके लिए एक्ट है, अथॉरिटीज अलग है। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग करके दिखाया है और ये भी सही है। पहले भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन आया है और ये भी सही है।
1: सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने के बाद इशू सेटल्ड माना जाए?
0: मैं तो सोच रहा हूँ बिल्कुल सेटल्ड है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई सेंसिटिवनेस था वो बॉर्डर स्टेट ऑफ जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में, ये सब स्थिति ज्यादा था। एक तो पॉलिटिकल साइड से, एक बार रियल टोपोग्राफिकल या ज्योग्राफिकल सेंस में या हिस्टोरिकल सेंस में या सोशियोलॉजिकल सेंस में, वहां इस इशू का ज्यादा एक रिलीवेंस था, वैलिडिटी था और पॉलिटिसाइज तो था ही। तो इसीलिए वहां से अगर निकल गया है, और अभी मैंने जैसे कहा ना 60% आबादी जो है, वोटर्स आबादी जो है 100 करोड़ मान लो रफली थे 2024 में, शायद वही था, करीब 100 करोड़ वोटर होने वाले थे, और उसमें से अगर 60 करोड़ का हो गया 40 करोड़ का, तो हो जाने का तो कोई नहीं होने का मुझे नहीं लग रहा है। और खास करके सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल मोहर लगा दिया तब तो ये सब कुछ क्लियर क्लियर क्लियर हो गया, तो उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा आपको और आपके श्रोताओं को कि इलेक्शन कमीशन पिछले 10-15 साल से एक बड़ा मुहिम में जुड़ा हुआ था। उसका है कि जो जो लोग हैं एलिजिबल सब पंजीकृत हो और जो पंजीकृत हैं सब वोट दें। तो लोगों का भागीदारी बढ़ाने के लिए लोकतंत्र में बहुत बड़ा मुहिम चला है और उसका नाम एक आप स्वीप जानते हैं, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। बहुत अच्छे नतीजे आया था, जो टर्नआउट में जो लास्ट 10-15 साल में इजाफा हुआ है रजिस्ट्रेशन में भी, वो इसी का कारण से ये एक इलेक्शन कमीशन का मुहिम था। मुझे लग रहा है कि इस SIR ने जो लोग एलिजिबल नहीं है उनको निकालने का जो एक कैरेक्टर बन के उभरा है, यही उसका कैरेक्टर है बेसिकली, क्योंकि जो नहीं है उनको निकालो, लेकिन जो एलिजिबल हैं देश में उनको जोड़ो, वो भी इसका एक पर्पस है। लेकिन जो देखा लोगों ने, इस चीज ज्यादा उभर कर आया कि भाई नाम लोगों का निकल जा रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार और वो माहौल बनना चाहिए, कैंपेन बनना चाहिए कि जो जो लोग देश में जहां जहां हैं जो एलिजिबल हैं आर्टिकल 326 के अंदर, तो उनको सबको जोड़ा जाए। फिर जोड़ने का मुहिम अच्छी तरह हो पंजीकरण और वोटिंग में, तो फिर डेमोक्रेसी में थोड़ा भागीदारी का और एक परिवेश या माहौल बनेगा और अच्छा रहेगा। लेकिन SIR के ऊपर मुझे लग रहा है कि डिबेट जो है अंत है और उसके हमें आगे बढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को, सिटीजन्स को, वोटर्स को और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबको आगे बढ़ना चाहिए अभी।
2: धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, चुनावी पारदर्शिता की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी

0: के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारण ये कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करें।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर के लिए बधाई। मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गयी। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहाँ वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता राय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साह ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। कुवार केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्तगंडी के सीआरआई औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ा।
1: जारी
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 of 2020। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.co.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी पूरे हो चुके हैं। राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास 100% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय आवासीय खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। area.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: विकसित भारत की तैयारी है अपना प्रयास जनगण।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेव यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी।

0: देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
2: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने 4 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
1: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
2: ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
1: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
0: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना के कारण लोगों को भीषण लू से राहत 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
3: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीटवेव कंडीशन।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मीहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप। एक बार फिर गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2 भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अमित शाह ने मुल्क में हर भेजने के सरकार के पुख्ता अहद को दोहराया है। वो आज रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत
0: कर्नाटक में सबसे तवील अरसे तक वजीर आला के ओहदे पर फायज रहने वाले सिद्धारमैया ने आज बेंगलुरु में गवर्नर के दफ्तर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इससे कबल उन्होंने अपने काबीना साथियों के साथ नाश्ते पर मीटिंग की थी। बाद में नामानिकारों से खिताब करते हुए डीके शिवकुमार का नाम लिए बगैर उन्होंने गवर्नर मौसूफ से कहा कि रियासत में वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के लिए नामजद वजीर आला को मदु किया जाए। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: दो मरतबा के वजीर आला और दो मरतबा के अपोजिशन रहनुमा सिद्धारमैया ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 17 रियासती बजट पेश किए थे। उन्होंने रियासत में अहिंदा तहरीक शुरू की थी जो पसमानदा तबकों और अकलियतों की नुमाइंदा थी। सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान की मर्जी के मुताबिक इस्तीफा दिया है। आज अहिंदा ग्रुपों की तरफ से इस्तीफे के खिलाफ रियासत के बहुत से इलाकों में मुजाहरे किए गए। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के हामियों ने खुशी मनाई। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही कानून साज पार्टी के एक नए रहनुमा को चुनने और काबीना में इम्कानी रद्दोबदल के मजीद इकदाम पर बातचीत के लिए दिल्ली आ रहे हैं। बेंगलुरु से सुदिंद्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने इस बात को यकीनी बनाने का तहैया कर रखा है कि मुल्क में कोई भी गरीब आदमी कच्चे मकान में न रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,91,00,000 मकानों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है जबकि निशाना 4,95,00,000 मकानों का है। जनाब चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा मकानों की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी सरकार बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों को मरबूत करके देही इलाकों के कुनबों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। खवातीन को बाख्तियार बनाने को उजागर करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورس پر زور دیا ہے کہ وہ کمزور طبقوں، خاص طور پر خواتین، غریبوں اور بچوں کے معاملات سے نمٹتے وقت حساس اور ایسا رویہ اختیار کرے جس سے شہریوں کو اور زیادہ مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ محترمہ دروپدی مرمو آج صبح گینگٹاک میں النکرن پریڈ کے دوران سکم پولیس کو صدر جمہوریہ کے پولیس پرچم سے سرفراز کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہی تھیں۔ انہوں نے امن و قانون برقرار رکھنے اور قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے میں سکم پولیس کے رول کی ستائش بھی کی۔
3: پولیس ویوستھا کو ادھک سٹیزن فرینڈلی بنایا جانا چاہیے تاکہ سامان لوگ بنا بھائی کے اپنی سمسیا درج کرا سکے، مہیلاؤں، بچوں اور کمزور ورگوں کے پرتی چاہیے۔ سائبر کرائم، آن لائن فراڈ، ہیک

0: टेस्टिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: इधर सिक्किम को उल्लास पहल के तहत मुकम्मल तौर पर खानदान रियासत होने का नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन कल से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। वो कल बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग में शिरकत करेंगे। बाद में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवनगिरी में बीडीटी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लैटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। हफ्ते के रोज जनाब राधाकृष्णन पनाजी में गोवा के यौम तासीस की तकरीबात में शामिल होंगे और समंदरी उलूम के सीएसआईआर कौमी इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। नायब सदर करेंगे और श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंजूनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कहा है कि जमहूरियत मुजाकरात, बहस मुबासे, इतफाक राय और इख्तलाफी राय की इजाजत देती है। उन्होंने ये बात दिल्ली कानून साज असम्बली में 1930 तक मरकजी कानून साज असम्बली की सभी 407 नशिस्तों की कार्रवाईयों पर मुश्तमिल मुनफरिद 89 जिल्दों का इजरा करते हुए कही। जनाब बिल्ला ने कहा कि इस मजमुए से आने वाली नस्लों और जमहूरी इदारों के लिए एक बेशबहा रहनुमाई फराहम होगी। उन्होंने कहा कि यह हुकूमतों का फर्ज है कि वो तारीख, विरासत और उन रहनुमाओं की रिकॉर्ड की हुई तकारीर का तहफ्फुज़ करें जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए जद्दोजहद की थी। लोकसभा के स्पीकर ने दिल्ली कानूनसाज पार्टी के विधान चेतना नाम के एक पहले सैमाही जरीदे का भी आगाज किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू, दिल्ली काबीना वजीर परवेश साहब सिंह और दिल्ली कानूनसाज असम्बली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी इस तकरीब में शिरकत की। में काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगले 5 साल में 200 इंटरसिटी रेलगाड़ियां बनाएगा। इन ट्रेनों को कम दूरी के सफर के लिए पूरे मुल्क में लगाया जाएगा। जनाब वैष्णो ने रेलवे के वजीर ममलिकत रवनीत सिंह बिट्टू और आला एहलकारों के साथ मीटिंग में काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अमली शक्ल देने के मंसूबों का जायजा लिया। ये रेलगाड़ियां तकरीबन 300 किलोमीटर तक चलेंगी और हर ट्रिप में ये कई जगह रूकेगी ताकि लोग कस्बों और शहरों के दरमियान आसानी के साथ सफर कर सकें। इस तरह इन ट्रेनों के जरिए लोगों को नया कम खर्च मुतबादिल मिल जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो ने ट्विश शर्मा की सास गिरी बाला सिंह को भोपाल में गिरफ्तार कर लिया है जो एक मुतालिक केस में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम ने उनकी रिहायशगाह पर सुबह तकरीबन 10:30 बजे पहुंचकर तलाशी ली और उनसे तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद उन्हें सपहर 5:10 पर गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें सीबीआई की एक अदालत में पेश किया गया और इससे पहले उनकी तिब्बी जांच की गई। ये गिरफ्तारी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से इस केस को तश्वीशनाक बताते हुए और जारी तफ्तीश के पेश नजर उनकी पेशगी जमानत मनसूख किए जाने के एक दिन बाद की गई है। ट्विश शर्मा हालत में मुर्दा पाई गई थी। उनके ससुराल के अफराद ने इसे खुदकुशी का केस बताया था जबकि ट्विशा के कुंबे ने कत्ल का इल्जाम आयद किया था। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने राजौरी के गंभीर मुगला इलाके में डोरीमल के मकाम पर घने जंगलों में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक एक कार्रवाई तेज कर दी है। इस कार्रवाई का ये छठा दिन है। हिफाजती दस्तों ने इस इलाके का मुहासरा कर लिया और यहां दहशतगर्दों के छिपने की मुश्तबा जगहों पर ताजा फायरिंग की और ग्रेनेड लॉन्चर से कई हमले किए। दहशतगर्द यहां छुपे हुए हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों की सूरत हाल अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पेचिंग में भारत चीन सरहदी मामलात पर मुशावरत और तालमेल से मुतालिक वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग के दौरान यह तबादला ख्याल किया गया। तरफेन ने हदबंदी, सरहदी बंदोबस्त, तरीकेकार तय करने और आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू शायर और अदबी शख्सियत बशीर बद्र का आज भोपाल में इंतकाल हो गया। वो 91 बरस के थे। उनके कुनबे के अफराद ने बताया कि वो एक तवील अलालत के बाद आज दोपहर दुनिया से चल बसे। उनकी तदफीन भोपाल टॉकीज के नजदीक कब्रिस्तान

0: Copyright.
1: सूरज जो जीवन का प्रतीक है, आज वही आग उगलता महसूस हो रहा है। धरती तप रही है, सड़कें जल रही हैं, हवाओं में ठंडक नहीं तपिश बह रही है। मई और जून की दोपहर अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक चेतावनी आकाशवाणी के है। बढ़ता तापमान, बढ़ती चुनौती, हीट वेव। पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव ने
2: प्रभावित किया है, उसने स्वास्थ्य, कामकाज, खेती,

0: बच्चों और बुजुर्गों सबके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम इसके खतरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम उन लक्षणों को समझते हैं जो शरीर हमें समय रहते संकेत के रूप में देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस भीषण गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर प्रोफेसर और मेडिसिन विभाग के प्रमुख लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर अनुपम प्रकाश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी को नमस्कार, श्रोताओं को भी।
0: किन लोगों को हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा होता है, बच्चे, बुजुर्ग या बाहर काम करने वाले लोग?
1: जो ये ग्रीष्म लहर है या गर्मी की लहर है या हीट वेव जिसको आप कह रहे हैं, इस समय जैसे ही तापमान बिल्कुल चरम सीमा पर है, इस समय सभी को ध्यान रखने की बात है। कोई अपने को ये नहीं समझे कि वो बच जाएगा, तो सभी को ध्यान रखना जरूरी है। जो कोई भी दोपहर में बाहर जाते हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और दोपहर के अलावा भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जैसे कि बच्चे हैं बिल्कुल खासतौर से कम उम्र के बच्चे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने ज्यादा अत्यधिक उम्र के लोग होंगे और जो लोग बाहर काम करते हैं, खासतौर से जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और समझ बूझ के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो इसमें अपने को समझे कि वो इम्यून हैं, उन्हें दिक्कत नहीं हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी जन लोग हैं, इवन जीव जंतु जो हैं, उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, गर्मियों में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हम बाहर से आते हैं, हमें लगता है कि धूप बहुत ज्यादा थी, ये उसके कारण हो सकता है, कल मैंने कुछ ऐसा खा लिया, हो सकता है कि उसी की वजह से हो रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
1: इसमें कई बार हमें पता नहीं चलता है कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी से जाकर के बाहर से आने में आमतौर पे सभी को जो है गर्मी लगती है, पसीना आता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो सकता है या थकान लग सकती है। लेकिन कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर अत्यधिक पसीना आए, क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि जब भी आपका गर्मी होगी तो पसीना ज्यादा आता है, इससे शरीर को ठंडा मिलती है। लेकिन आपको अत्यधिक पसीना आए, वो पसीना आना बंद ही ना हो, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। कमजोरी लगे, उठा ना जाए, चक्कर लगे, सर में दर्द लगे, आपको बदन दर्द लगे, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर लगे और उठने लायक नहीं लगे आपको, अगर उल्टी जैसा लगे आपको और मांसपेशियों में कई बार दर्द होने लगता है, जैसे क्रैम्प्स होने लगता है, वो अगर ये सब चीजें आपको लगती हैं, इसके साथ अगर आप तवज्जो दें कि अगर पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है पेशाब, ये सब लक्षण ऐसे हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं और इनमें दिक्कत होने की संभावना बढ़ सकती है अगर तवज्जो नहीं दी जाए, तो ये बहुत जरूरी है, सबको इनको आगाह रहना चाहिए कि इन सब चीजों में से कुछ भी हो तो फौरन ध्यान रखना चाहिए और अगर आराम नहीं आता है तो परामर्श लें चिकित्सक से।
0: लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़े डॉक्टर साहब, कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या फिर बुखार की समस्या है, या कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत सारे जो हमारे कामकाजी लोग हैं वो बाइक से डिलीवरी करने जाते हैं या बाइक से ऑफिस जाते हैं, ऐसा लगता है कि चक्कर सा आ गया, आंखों के सामने धुंधला सा आ गया, वो ऐसे समय में क्या करें? क्या ये वार्निंग साइन है डॉक्टर के पास जाने का, या घर पर आराम करके राहत मिल सकती है?
1: अगर आराम नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको शुरुआती लक्षण लगते हैं, सर में दर्द लगता है, थकान लगते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि जब तक मजबूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें। लेकिन अगर मजबूरी ही है तो फिर आपको अगर जाना है और आपको ये लक्षण लगते हैं कि सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी आ रही है या मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, चक्कर लग रहा है, तो इन सब चीजों में फौरन आप अपना अगर जा भी रहे हैं कहीं तो वो स्थगित कर दें या रुक जाएं और ठंडी जगह पे जाएं या किसी पेड़ की छांव में रहें और पानी ज्यादा लें। अगर आप संभव हो तो नमक डाल करके, थोड़ा नींबू डाल करके जो है शिकंजी टाइप बना करके आप लें, या ORS का घोल तो हर जगह मिल जाता है, तो ORS का घोल बना करके पानी लें। इसमें नमक लेना जरूरी होता है, क्योंकि नमक जो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक जरूर लें, क्योंकि पसीने में नमक भी काफी लूज कर जाते हैं। आराम करें और जब तक बिल्कुल ठीक ना लगे तब तक ना जाएं। अगर तापमान, जैसा आपने कहा, बुखार हो गया है, बढ़ रहा है, तो ठंडी पट्टी भी रखनी पड़ेगी, और अगर बुखार में राहत नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
0: इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि गर्मी के मौसम में जब तापमान दिल्ली में तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस है और जो श्रोता देश के अलग

0: अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वहां भी तापमान कमोबेश 40 से ऊपर है। ऐसे में खाने पीने की आदतों में क्या बदलाव करना जरूरी है?
1: ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रहन सहन और खान पान पर ध्यान दें। साल भर ही देना जरूरी है, गर्मी के मौसम में और जरूरी है। इसमें जब प्यास लगे तब पानी पीने की जगह हर थोड़ी देर पे पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और सिर्फ पानी नहीं, हल्का सा जैसे मैंने बताया नमक डाल करके, या छाछ है, नमकीन छाछ है या दही है, ये चीजें लें। फल लें, आजकल गर्मियों में बड़े अच्छे फल आते हैं, और जूस वाले फल आते हैं जिनमें रसीले फल होते हैं, जिनमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें आप लें, जिससे कि आपको फायदा रहे, पानी की कमी ना हो और तत्व भी मिले।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जैसे ही गर्मियां आती हैं, चाहे बच्चे हों या युवा हों, वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीने को बहुत आतुर होते हैं। क्या ये शरीर के लिहाज से स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिहाज से सही है?
1: देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स है या कैफिनेटेड बीवरेजेस जिन्हें हम कहते हैं, या चाय, कॉफी, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसमें ऐसे ही मदिरा, ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसमें पानी होता है, लेकिन इन सब चीजों से पेशाब आने की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर पेशाब ज्यादा होगा तो आप पानी ले भी रहे हैं तो वो उसमें निकल जाता है, तो इसलिए उससे आपके शरीर को पानी की आपूर्ति नहीं होती है, तो ऐसी चीजें लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा मीठे पदार्थ हैं, कई लोग फ्रूट जूस लेते हैं, तो भी ऐसी होती है, शुगर होती है, उनके लिए वो फायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। ठंडा जो पानी आप कह रहे हैं, ठंडा पानी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आदमी बाहर से आता है बिल्कुल गर्मी से और एकदम से ठंडे पानी का सेवन करता है, तो कई बार जो है तापमान के बदलने से जुकाम, खांसी, नजला या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बाहर से आए तो 2-3 मिनट वेट करके, 4-5 मिनट वेट करके, उसके बाद जब आपका तापमान बाहर 45 डिग्री से घर के तापमान 30-35 डिग्री के आसपास आ जाए, तो फिर आप थोड़ा ठंडा पानी लेने की सोच सकते हैं।
0: एक और व्यावहारिक सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं देश भर में, और बच्चे छुट्टियां मनाने या तो नानी घर चले जाते हैं या अपने गांव चले जाते हैं, वहां उन बच्चों के साथ जो खेलते हैं उनके नाना नानी, दादा दादी, तो सवाल यह है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, ये बहुत ही जरूरी है, बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर, मतलब यंग लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, डेढ़ उम्र के लोग भी हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलें। जो पीक आवर्स होते हैं, जो कहते हैं 12 से 3 या 12 से 4 का है, उस समय जो है आप बिल्कुल भी धूप से बाहर नहीं निकलें घर से, क्योंकि अगर धूप में नहीं भी जा रहे हैं तो भी बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, और गर्म हवा से ही आपकी जो त्वचा है उसमें से वेपोरेशन, काफी पानी निकल जाता है। दूसरी चीज है, अगर खेलना है या पार्क जाना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रीष्मकालीन के अवकाश में हम लोग भी यही सोचते थे कि जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग, मतलब कि प्रातः सवेरे जल्दी जाएं, सूरज जब तक धीमा है, तो 6-7, 7:30 बजे तक आप घूम करके आए, या शाम को भी 6-7 बजे के बाद आप जाए। धूप रहते, मतलब रोशनी रहती है शाम को भी 7 बजे तक, तो आप 6 बजे के बाद आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जाएं तो साथ में पानी जरूर रखें और कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के जाएं। अगर धूप है उस समय तो छतरी का लें, जिससे कि आप डायरेक्ट सनशाइन से कम सूरज की रोशनी से बच सके।
0: बहुत सारे लोग घरों में हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, या फिर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जिन्हें हर 10-15 दिन के पास डॉक्टर्स के पास जाना होता है। हीट वेव और बढ़ते तापमान के बीच कई बार उनके मन में ये सोच आती है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इस बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, अगली बार जाएंगे वही दवाई कंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका?
1: देखिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जैसे आप बता रहे हैं गुर्दा रोग के जो मरीज हैं, इनको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी का जो है बहुत ज्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं, और अगर सेवन करते हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें दिल की बीमारी नहीं है या किडनी की रोग नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के और शुगर के रोग ले सकते हैं, लेकिन इनको भी वही है, पानी लेंगे तो मीठा नहीं लेना है और नमक डाल के नहीं लेना है, तो इसलिए इनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का। और जो निश्चित नियमित रूप से जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो उसको थोड़ा या तो अप्रैल से पहले रखें और फिर मई में एक बार

0: पे कई दिन ऐसे आते हैं जब बारिश हो जाती है भारतवर्ष में, तो उन दिनों नहीं तो अपॉइंटमेंट लेकर के जाकर के डॉक्टर को जरूर दिखा करके आए।
1: डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल तो ये है कि ऐसे मौसम में वो कौन सी लापरवाहियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए?
0: देखिए, धूप में बिल्कुल भी ना जाएं जहां तक संभव हो। दूसरी चीज, पानी जरूर साथ में लेकर के जाएं, और अगर धूप में जा रहे हैं तो आप जरूर छाता लेकर के जाएं या गमछा या कपड़ा लेकर के जाएं, जिससे कि आप अपने शरीर को ढक सकें। ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, बस 5 मिनट में होकर के आते हैं। वो कब समय बढ़ जाता है या कब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है और हमारा शरीर उसमें जो लपेट में आ जाता है, गर्मी की या लू की लपेट में, वो हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है।
1: और ओवरऑल आप क्या हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है और महानगरों में एसी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच क्या संदेश देंगे?
0: मैं सारे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि जितना भी हो सके, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व स्तर में जो गर्मी हो रही है, तो उसके लिए जो आपको जरूरी है वो ये है कि हरियाली ज्यादा रखें। तो पेड़ ऐसे बोएं और पेड़ों को काटें नहीं जो कि पेड़ आपको छाया देते हैं। तो छायादार वृक्षों का आप जरूर लगाएं, पार्क में या जहां भी जगह मिले उसको आप लगाएं। दूसरी चीज है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं, चाहे पहाड़ों पे या कहीं और भी, तो वहां पे भी अपना जो पर्यावरण से बचाव है या उसको बचाव करने की हमारी क्षमता है, उसको हम ध्यान रखें। घरों में भी हम लोग, जैसे आपने कहा, एसी यूज करते हैं, तो आप उसका तापमान जो है उस हिसाब से रखिए जिसमें कि बहुत ज्यादा बिजली या ऊर्जा नहीं इस्तेमाल हो, और बिजली भी जहां इस्तेमाल नहीं हो रही है वहां बंद करके रखें। ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है। पानी का भी हमें बचाव करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसा आपने कहा आनंद जी, ये हमें बहुत जरूरी है कि हमारे श्रोता इनको ध्यान दें। अगर हम पानी का बचाव कर सकते हैं, कहीं बह रहा है तो उसको रोक सकते हैं, तो इससे पर्यावरण को मदद मिलेगी।
1: जी हाँ, छोटे छोटे बदलाव से ही हम एक समग्र परिवर्तन कर सकते हैं। गर्मी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं रह गया, ये समय है सतर्क रहने का, अपने शरीर की आवाज सुनने का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने का। हीट वेव हमें यही सिखाती है कि छोटी सी सावधानी भी बड़ी सुरक्षा बन सकती है। समय पर पानी पीना, धूप से बचना, लक्षणों को नजर करना, ये छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी बचा सकती हैं। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए हमारे श्रोताओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
1: उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इस बढ़ती गर्मी के बीच खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रह पाएंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Insights. This is Akashwani. In the program Insights, now we bring you a discussion on Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. The participants are Abhijit Deb, senior journalist, and Ramya, anchor.
3: Good evening, listeners. Welcome to the weekly program Insights. Today, we will be discussing about the Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. To shed more light on this, we have with us senior journalist from Assam, Abhijit Deb. Welcome to the program.
4: Thank you.
3: Before we begin the program, let's listen to what Chief Minister Hemant Biswa Sarma said after the passing of the bill.
5: Assam Assembly has adopted Uniform Civil Code 2026. Assam will be the third state after Uttarakhand and Gujarat to adopt Uniform Civil Code. Adoption of Uniform Civil Code was one of our commitments in our election manifesto. We are very happy and delighted that in the first session of Assam Assembly, immediately after the election, we could adopt this historic bill. Now this bill will go for assent of Mahamohim Rashtrapati ji. Once we get the assent, the bill will be implemented in Assam. This process normally takes 3 to 6 months.
3: The Assam legislature

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुनहरी यादें। सुनहरी यादें कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम इस गीत के साथ। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और फिल्म का नाम है परिचय। संगीत आडी बर्मन का है और बोल है गुलजार के।
1: करियर क्यों नहीं इमेजिन करते आप?
2: और बेल आइकन को प्रेस।

0: माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
1: हेलो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। ये गीत है फिल्म जब वी मेट से, गायक हैं उस्ताद राशिद खान, बोल फैज अनवर का है और संगीत है संदेश सांडले का।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का सुनहरी यादें कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 होने को है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित वीजी जोग का वायलिन वादन। पंडित वीजी जोग राग श्याम कल्याण में एक रचना, तबले पर संगत दे रहे हैं श्यामल बोस।

0: इसके साथ ही हमारे
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने

0: कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व। भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।